सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। शक संवत 1948 के वैसाख मास की 16वीं तिथि तदनुसार 7 मई सन 2026 आज दिन गुरुवार है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55 हो रहे हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ तत्व, चिकित्सा उत्पाद, विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई।
1: हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नहान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन

ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के लिए मजबूत और आधुनिक सैन्य क्षमता विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान स्वदेशी तकनीक से विकसित आधुनिक सैन्य प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से 40 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए देशव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच अभियान की शुरुआत करेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद के शपथ लेने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के अभिवादन के साथ आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। प्रभु दर्शन ही एकमात्र जीवन की सरलता है।
1: संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके षड्नित्रंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। यानी पूरी निष्ठा से हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन की भाग दौड़ में जब उम्मीदें थकने लगें, तब गीता का यह संदेश हमें फिर से खड़ा होना सिखा देता है।

गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वह अजर और अमर और शाश्वत है। अर्थात गीता हमें बताती है कि शरीर बदलता है लेकिन आत्मा अनंत यात्रा पर रहती है।

0: भक्ति की शरण आत्मज्ञान की प्राप्ति है। ये थी हमारी आज की प्रातःकालीन वंदना। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: संबंध, एक ऐसा संबंध कि प्रायः हम सब उन संबंधों में रचे बसे हैं। आज वह प्रेम, वह भाव भातृत्व संबंध में भी न रहा जो भातृत्व संबंध में प्रायः आज के 20-25-30 साल पूर्व रहा करता था, कि बड़ा भाई बोले और छोटा भाई चुप होकर के स्वीकार करता था। आज सबको बड़ा बनने की होड़ है। हम रामकथा सुनते तो हैं, रामकथा दर्शन क्या कराती है कभी हमने समझने का प्रयास नहीं किया। अन्यथा राम का चरित्र, लखन का चरित्र, भरत लाल जी का चरित्र और शत्रुघ्न लाल का चरित्र, मुझे लगता है इससे बड़ा प्रमाण हमारे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में नहीं हो सकता, जो प्रमाण हमारे राघवेंद्र सरकार और चारों भाइयों ने इस समाज को दिया है। एक भाई ऐसा है जिसे जब पता चलता है कि मेरे पिताजी से मेरी मैया ने कहा है कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी, राम जी के चेहरे पे शिकन नहीं है, राम जी के चेहरे पे वही लालिमा, वही मुस्कुराहट है, मेरा भाई ही तो बन रहा है। कभी चिंतन करिए उस भातृत्व प्रेम का कि जिस दशरथ जी का शरीर क्षीण पड़ा हुआ है, जो राम राम कह के व्याकुल हैं और वहाँ पे राघवेंद्र सरकार अपनी माँ से आके कहते हैं तो किसी की बुराई नहीं करते, कैकेयी मैया के बारे में भी कुछ नहीं कहते। कौशल्या मैया पूछती हैं क्या हुआ, क्या कारण है, पूरे अयोध्या में हल्ला मचा हुआ है। तो राघवेंद्र सरकार ने कहा कि भरत राजा बनने वाला है, मेरा भाई भरत अयोध्या का राजा बनने वाला है। एक बड़े भाई का कर्तव्य एक छोटे भाई के राजा बनने पर इतनी प्रसन्नता राघवेंद्र सरकार को है। कौशल्या मैया ने कहा आप कहाँ, आपके बारे में क्या सोचा, तो उन्होंने कहा पिताजी ने मुझे उससे भी बड़ा राजा बना दिया, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया, किसी की बुराई नहीं, राघवेंद्र सरकार का त्याग, मेरा भाई भरत राजा बनेगा, इसकी प्रसन्नता साफ चेहरे पे झलक रही थी। कोई सिकन नहीं, कोई कष्ट नहीं, वही माधुर्य, वही प्रेम। और इधर भरत लाल जी महाराज को जब पता चला, भरत लाल जी को जब सूचना मिली और भरत लाल जी जब आए और पता चला कि मेरे कारण मेरे भाई को बन जाना पड़ा। कैकेयी मैया से कहते हैं माँ, हर माँ बालक का चतुर्दिक सम्मान मान बढ़े इसलिए सदैव तत्पर रहती है, लेकिन तू मेरी माँ होकर मुझे तुमने इतने बड़े पाप का कारण बना दिया, मुझे तेरे गर्भ से जन्म ही नहीं लेना चाहिए था, न मैं जन्म लेता और न मुझे अपने भाई को वन में जाने का कारण मैं हूँ। वशिष्ठ जी से कहते हैं कि गुरुदेव मेरे पिताजी इसलिए नहीं मरे कि मेरे भाई राघवेंद्र सरकार बन जा रहे हैं, मेरे पिताजी की मृत्यु इसलिए हो गई कि मैं पापी भरत का मुख कैसे देखूं जिसके कारण उसका बड़ा भाई बन चला गया हो, मेरा मुख मेरे पिता कैसे देखते हैं जिसने अपने माँ को त्याग दिया हो, कि माँ तुमने इस राज सत्ता के कारण मेरे भातृत्व प्रेम में जो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा वह तुमने मांग लिया। एक भाई है लखन लाल जिसने अपने पत्नी तक से पूछने नहीं गए और 14 वर्षों तक वह जंगल में रहे, सहन नहीं की और अपने भाई के रक्षणार्थ खड़े रहे कि मेरा भाई अकेले कैसे जाएगा। अपनी माँ से पूछते हैं क्या करो, माँ ने कहा कि तुम मुझसे पूछने आए हो। लखन लाल जी महाराज माँ का तो आशीर्वाद लेने राम जी के कारण गए लेकिन पत्नी के पास नहीं गए और वो निकल पड़े अपने भाई के साथ वलकल वस्त्र धारण करके। और एक भाई शत्रुघ्न लाल जब देखा कि मेरा एक भाई वन में है और एक भाई उसकी सेवा में है और एक भाई भरत हैं जो नंदीग्राम में जाके तपस्वी जैसा जीवन जी रहे हैं, तो मौन होकर इस अयोध्या का साम्राज्य चलाना है लेकिन यह साम्राज्य का राजा तो मेरे राघवेंद्र सरकार ही हैं। एक चारों भाई की इतने स्नेह और इतने प्रेम का दर्शन करने के बाद भी अगर हम अपने भाइयों में प्रेम न कर पाएँ तो भातृत्व संबंध को समझना इससे सरल नहीं हो सकता।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आज आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर प्रादेशिक लोकगीत संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आचार्य चित्रंजन मिश्र की बातचीत। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने और 7:15 पर आप सुनेंगे स्थानीय सूचना। सात बजकर 10 पर आप सुनेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत प्रादेशिक संगीत पंजाबी लोकगीत। 7 बजे देश हमार।

5:35 पर आप सुनेंगे घर आंगन और 5:05 पर युवा सुन सकेंगे अपना कार्यक्रम युवा वाणी। दोपहर 1:50 पर किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे, कार्यक्रम खेती किसानी। दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम।

दोपहर 12:55 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत और 12:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने। 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

और 10:05 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज का संगीतमय प्रसंग।

श्री राम के युवराज पद पाने की पूर्व संध्या। अयोध्या में बधावे बज रहे हैं और अंतःपुर में रानी कैकेयी को भवन में बैठी राजा दशरथ की गुहार सुन रही हैं। हे सुनैनी, मैं कल प्रातःकाल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, तुम मंगल साज सजो। कपटयुक्त प्रेम दिखाते हुए मुंह मोड़कर हंसती रानी कैकेयी बोली, कभी आपने दो वरदान देने को कहा था, किंतु अब तो उनके मिलने में भी संदेह है। निष्कलुष हृदय राजा ने अपनी तरह से रानी का मर्म समझा, हंसकर बोले, वे दोनों वर तो थाती की तरह तुमने संजो रखे हैं, कभी मांगा ही नहीं। रघुकुल में तो सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। कैकेयी ने वर मांगे, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक का। दूसरा वर भी हे नाथ, मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्षों तक वन में निवास करें।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज का संगीतमय प्रसंग। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं।
4: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार।

0: अथ वार्ताः। भारत वियतनाम देशयोर मध्ये डिजिटल प्रौद्योगिकी दुर्लभ खनिजाः चिकित्सा विनियमनम् सार्वजनिक क्षेत्रस्य लेखा परीक्षा डिजिटल व्यवहारः संस्कृतिः पर्यटनम् इत्यादिषु बहुविध क्षेत्रेषु सन्धयः कृताः। नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अथ वियतनाम राष्ट्रपतिः टोलाम इत्यनयोर मध्ये द्विपक्षीय वार्तायाः अनन्तरं संधि विज्ञप्तिपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतानि। संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमंत्रिणा श्री मोदिना प्रोक्तं यत् व्यापक विमर्शानन्तरं पक्षद्वयेन स्वसंबंधं वर्धित व्यापक रणनीतिक सहयोग पर्यन्तं अग्रे साधयितुं निर्णयः कृतः।
1: कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ह्यः सायं राष्ट्रपति भवने स्वस्य वियतनाम समकक्षस्य टोलाम इत्यस्य स्वागतं कृतवती। आगन्तुकस्य गणमान्यस्य सम्मानार्थं सा भोजमपि आयोजितवती। राष्ट्रपति अवदत् यत् भारत वियतनाम संबंधस्य उन्नत

0: विषयो वर्तते नूतन क्षेत्रेषु सैन्य क्षमता इति। एकस्मिन् उद्वेगकर घटनायां पश्चिम बंगालस्य उत्तर चतुर्विंशतिः परगणमण्डलस्य मध्यग्रामे भाजपा दलस्य नेता सुवेन्दु अधिकारी इत्यस्य निकट सहायकः चन्द्रनाथ रथः अज्ञात आक्रमणकारिभिः भुशुण्डिकया प्रहृतः। समाचारानुसारं गतरात्रौ दोहरिया नगरे मोटरबाइक चालकाः दुष्टाः आततायिनः तस्य कार्यानस्य उपरि यथेच्छं गोलिका प्रहारं कृतवन्तः। चन्द्रनाथं तत्क्षणमेव स्थानीय चिकित्सालये प्रेषितः, परन्तु सः मृतः इति घोषितः। तस्य चालकः बुद्धदेव बेरा अपि गोलिकाभिः बहुधा व्रणितः, अथ गंभीरस्थितौ कोलकाता चिकित्सालये स्थानान्तरितः वर्तते। बिहारस्य मुख्यमंत्री साम्राट चौधरी अद्य तस्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। पटनानगरस्य गांधी मैदानम् इत्यत्र अद्य मध्याह्ने द्वादशवादने आयोजिष्यमाणे शपथग्रहण समारोहे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः, एनडीए इति राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधनस्य अनेके वरिष्ठ नेतारः च भागं गृहीष्यन्ति। अस्माकं संवाददात्रा सूचितं यत् पूर्व सर्वकारे अनुसृतस्य सूत्रस्य आधारेण मंत्रिमंडल विस्तारः क्रियते। प्रायः 15 भाजपा विधायकाः, 14 जेडीयू विधायकाः मंत्रिरूपेण शपथं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः परमाबीरो इत्यत्र तस्य सूरीनाम समकक्षेन मेलविन बोबा इत्यनेन सह मिलितवान्। भारतीय सूरीनाम प्रतिनिधि मंडलानि नवम संयुक्त आयोग सभायां भारत सूरीनाम संबंधानां व्यापक समीक्षायाः आयोजनं कृतवन्तः। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशति क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सनराइजर्स हैदराबाद दलेन पंजाब किंग्स दलं 33 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ सुपर जायंट्स अथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलयोर्मध्ये लखनऊ नगरस्य भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट क्रीडांगणे प्रतिस्पर्धा भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी दुर्लभ तत्व चिकित्सा उत्पाद विनियमन सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई।
2: हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्तों पर आधारित हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के लिए मजबूत और आधुनिक सैन्य क्षमता विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान स्वदेशी तकनीक से विकसित आधुनिक सैन्य प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सूरीनाम के विदेश मंत्री

0: मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए नए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक शक्ति पार्टी, रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हमले में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। फ्रांस ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद हुर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। इसके साथ ही समाचार
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary will expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and several senior NDA leaders will attend the swearing-in ceremony to be held at Gandhi Maidan in Patna at 12:10 p.m. Our correspondent reports that the cabinet expansion is being carried out based on the formula followed in the previous government. Around 15 BJP and 14 JDU MLAs are likely to take oath as ministers. Additionally, 2 ministers from Lok Janashakti Party Ram Vilas and 1 each from Hindustani Awam Morcha and Rashtriya Lok Morcha are expected to be inducted. Most of the positions in the cabinet are likely to be given to familiar faces from BJP and JDU. However, a few new faces may also be included. From JDU, the name of Nishant Kumar is being discussed. In a shocking incident, Chandranath Rath, close aide of BJP leader Shubhendu Adhikari, was shot dead by unidentified assailants in Madhyam Gram, North 24 Parganas district of West Bengal. According to reports, miscreants on motorbikes opened indiscriminate fire at his car in Doharia last night. Chandranath was rushed to a local hospital but was declared dead on arrival. His driver, Buddhadev Behra, also sustained multiple bullet injuries and has been shifted to Kolkata Hospital in critical condition. President Draupadi Murmu received her Vietnamese counterpart Tho Lam at Rashtrapati Bhavan yesterday evening. She also hosted a banquet in the honour of the visiting dignitary. The president said the elevation of India-Vietnam ties to an enhanced comprehensive strategic partnership will not only provide momentum to the bilateral cooperation but also contribute to peace and prosperity in the region. Yesterday, India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments, and culture and tourism.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मिली जुली आवाजों में देश गान। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम के समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा, रक्षा और एयरोस्पेस नीति के माध्यम से निवेशकों को दिया जा रहा है प्रोत्साहन। प्रदेश में आज से शुरू हो रही है स्वगणना की सुविधा। 21 मई तक पोर्टल पर जाकर लोग खुद भर सकेंगे अपना डेटा। 22 मई से शुरू होगी मकानों की गणना। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में प्रदेश के प्रगतिशील निर्यातकों से किया संवाद, कहा, निर्यात से किसानों की आय के साथ बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। और प्रदेश में डिजिटल हुई खतौनी की प्रमाणित नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम की थीम पर आधारित नॉर्थ टेक सिंपोजियम के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रक्षा और एयरोस्पेस नीति के माध्यम से प्रदेश में इच्छुक निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
3: अपने डिफेंस एंड एयरोस्पेस की पॉलिसी के माध्यम से हर उस इन्वेस्टर को जो इस क्षेत्र में कार्य करने का इच्छुक है, उसे हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर इंसेंटिव उपलब्ध करवा रहे हैं, पॉलिसी का लाभ दे रहे हैं, लैंड बैंक में पर्याप्त लैंड उपलब्ध करवा रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि अभी बड़ लोग छोटे हथियारों और रक्षा उपकरणों तथा अन्य सैन्य सामग्रियों के निर्माण के रूप में यह केंद्र उठ रहा है।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि अब युद्ध सिर्फ जल, थल और नभ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन बन चुका है।
3: हमने भी वर्कफोर्स ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी देखा है। आधुनिक युद्ध जल, थल और वायु के साथ साथ साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आदि क्षेत्रों में एक साथ लड़ा जा रहा है। अब कीबोर्ड भी अभियान है। दुश्मन के पावर ग्रिड, बैंकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप करना या अपने नेटवर्क को अवैध बनाना, यह भी एक नई सुरक्षा रेखा बनी है।
2: प्रदेश में आज से स्वगणना शुरू हो रही है। यह सुविधा 21 मई तक दी जाएगी। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि इन 15 दिनों में लोग अपना पूरा ब्यौरा खुद ही ऑनलाइन भर सकेंगे। मुख्य प्रधान अधिकारी ने लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।
4: 15 दिन स्वगणना की विंडो सभी लोगों के पास है कि वो खुद पोर्टल पर जाकर अपने सभी प्रश्नों का आंसर रिकॉर्ड कर सके, तो अधिक से अधिक लोग स्वगणना करें, क्योंकि वो बहुत बार ये शिकायत करते हैं कि एनुमरेटर ने गलत डेटा रिकॉर्ड कर दिया। और आपकी जो भी स्वगणना आईडी है, जब आपका प्रगणक आपके घर आता है उसके साथ साझा करें।
2: जनगणना के पहले चरण में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी, जो 22 जून तक चलेगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में धकेलने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के एक सदस्य को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह विदेशों में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेज रहा था। एक रिपोर्ट।
5: सीबीआई ने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, काशीपुर और उत्तर प्रदेश के गोंडा और सहारनपुर जिलों सहित चार राज्यों में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई व्यापक राष्ट्रव्यापी जांच के बाद की गई, जिसमें पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। एजेंसी ने इस गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए क्रिप्टो करेंसी सहित वित्तीय लेन देन पर भी नजर रखी। इस दौरान उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जिनमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। तस्करी में शामिल होने के आरोप में लखनऊ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह भारतीय नागरिकों को इन धोखाधड़ी केंद्रों में भेजने के लिए एजेंटों को रिश्वत देते थे। सीबीआई ने लोगों को अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले नौकरी के प्रस्तावों, विशेष रूप से सोशल मीडिया या ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से साझा किए गए प्रस्तावों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। सीबीआई ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव खतरनाक हो सकते हैं और गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना चाहती है। इसके लिए सब्जियों और फलों की प्रोसेसिंग तथा ब्रांडिंग के जरिए निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री कल रात लखनऊ में प्रदेश के प्रगतिशील निर्यातकों से संवाद कर रहे थे।
6: उत्पादन में हम अग्रणी हैं कई फलों में, लेकिन एक्सपोर्ट हमारा काफी कम है। हम ये चाहते हैं कि हमारे फल, हमारी सब्जियाँ, उनका निर्यात बढ़े। निर्यात बढ़ेगा तो किसानों की आय भी बढ़ेगी और विदेशी मुद्रा भी हमारे देश में आएगी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
2: कृषि मंत्री आज केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ICAR में राष्ट्रीय फल निर्यात सम्मेलन फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य फल क्षेत्र में नई सोच, नई तकनीक और नए बाजार अवसरों के लिए रास्ते खोलना है। राज्य सरकार ने नागरिकों को राहत देते हुए खतौनी की प्रमाणित नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। एक रिपोर्ट।
7: राजस्व विभाग की इस नई डिजिटल व्यवस्था के तहत विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद खतौनी की नकल विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद जनपद, तहसील और गांव की जानकारी भरकर संबंधित गाटा संख्या चुननी होगी। निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करते ही खतौनी की प्रमाणित प्रति तुरंत डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगी। समाचार कक्ष से रितेश।
2: प्रदेश भर में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकरवाद, उपभोक्ता मामले तथा बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाता है। मेरठ के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नम्रता सिंह ने बताया कि लोक अदालत में लंबित मामलों को सुलह से निस्तारित करने की कोशिश की जाएगी।
8: ऐसे मामले भी हम खत्म कराना चाहते हैं जिससे कि समझौता करके उसे खत्म कराया जाए, जिससे लोगों के खर्च कम हो। और हम इसका लोक अदालत का उद्देश्य भी सस्ता और सुलभ न्याय है, जिससे लोगों को आसानी से न्याय मिल सके।
2: हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के कुतुबपुर पटिया में कल देर शाम यमुना नदी में एक नाव के असंतुलित होकर पलट जाने से 6 लोग नदी में लापता हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंच गईं। DIG बांदा राजेश यस ने बताया कि नाव में कुल 9 लोग सवार थे।
9: सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंच गया है और उस नाव में कुल 9 लोग सवार कर रहे थे, उसमें 3 लोग सुरक्षित तैरकर आ गए हैं और 6 लोग लगभग लापता हैं।
2: नदी में लापता लोगों की तलाश के लिए SDRF के जवानों और गोताखोरों को लगाया गया है। हादसे का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज शाम 7:30 बजे से मैच खेला जाएगा। इस मुकाबले को देखते हुए आज दोपहर 3 बजे से मैच के समाप्त होने तक स्टेडियम के आसपास यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस दौरान वे वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम के समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा रक्षा और एयरोस्पेस नीति के माध्यम से निवेशकों को दिया जा रहा है प्रोत्साहन। प्रदेश में आज से शुरू हो रही है स्वगणना की सुविधा। 21 मई तक पोर्टल पर जाकर लोग खुद भर सकेंगे अपना डेटा। 22 मई से शुरू होगी मकानों की गणना। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में प्रदेश के प्रगतिशील निर्यातकों से किया संवाद, कहा निर्यात से किसानों की आय के साथ बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। और प्रदेश में डिजिटल हुई खतौनी की प्रमाणित नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स तथा FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरवा सुहानी। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत। फिल्म है कयामत से कयामत तक, आवाज़ दी है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। संगीतकार हैं आनंद श्रीवास्तव और गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे यादों की बारात फिल्म से ये गीत। गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने, आवाज़ दी थी आशा भोसले ने और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन।

आइए अब सुनते हैं 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से ये प्यारा सा गीत। गीतकार है जावेद अख्तर, आवाज़ दी है कविता कृष्णमूर्ति ने और संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बजरंगी भाईजान फिल्म से ये गीत। गीतकार है प्रीतम चक्रवर्ती और गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य। आवाज दी है आतिफ असलम।
1: नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं साथिया फिल्म से ये गीत। संगीतकार हैं A.R. रहमान, गीतकार हैं गुलजार। आवाज़ें दी हैं KK, प्रवीण मनी और शान।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरवा सुहानी अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार प्रभात का आज का अंक, अंग्रेजी में मॉर्निंग न्यूज और उर्दू में खबरनामा, हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: और अब मुख्य समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की गोली मारकर हत्या। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। और अब समाचार विस्तार से। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं। यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है और वो फिलहाल चेन्नई में है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फार्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में नई पार्टी को मिले जनादेश का सम्मान करती है और वो ना तो दोबारा चुनाव चाहते हैं और न ही किसी प्रकार का संवैधानिक संकट चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नई सरकार के गठन में बाधा नहीं बनेगी। स्टालिन ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि डीएमके अगली सरकार बनाने के लिए अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम AIADMK से बातचीत कर रही है। पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को

0: कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविंद्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कल राज्य सचिवालय नावन्न में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर समारोह की तैयारियों और चुनाव बाद हिंसा रोकने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी सुनील बंसल, पार्टी नेता सौमित्र खान और ज्योतिमर्य सिंह महतो भी मौजूद रहे। शमिक भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी के नव निर्वाचित विधायक कल अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव करेंगे। शनिवार सुबह 10 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यदि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तब भी समारोह पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
1: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
3: ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, जिसे सैन्य और गैर सैन्य साधनों के संयोजन से अंजाम दिया गया। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भारत ने न केवल इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, बल्कि इसने भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, इन तीनों बलों के बीच समन्वित कार्रवाई और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं का साहस और समर्पण लगातार राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौती का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये 2 दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIEC से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें

0: अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इन हमलों में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। पुलिस महानिदेशक सिद्धिनाथ गुप्ता ने बताया कि घटना में इस्तेमाल वाहन बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। इस बीच उत्तर 24 परगना के बसीरहाट में एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय को भी गोली मारी गई। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारियों के निजी सहायक की हत्या की कड़ी निंदा की है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 3 दिन की भारत यात्रा के दौरान आज मुंबई में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति लाम मुंबई में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे।
1: वियतनाम के अध्यक्ष तो लाम का मुंबई का एक दिवसीय दौरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शुरू होगा, जिसमें अध्यक्ष लाम द्वारा रिंग द बेल सेरेमनी भी शामिल है। इसके बाद वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। बाद में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ भारत वियतनाम व्यापार मंच में भाग लेंगे। इस मंच का आयोजन CII द्वारा और वियतनाम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया जा रहा है। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम लोकभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष की भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई की यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, मुंबई।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास, सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
2: We have a deep and trusted relationship.
3: हमारा रिश्ता गहरा और भरोसेमंद है, क्योंकि यह लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव की नींव पर टिका है। भारत इस बात की सराहना करता है कि सुरीनाम आज अपनी विकास यात्रा में बड़े कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
2: In its developmental journey.
0: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नौसेना ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग नई प्रक्रियाओं के तहत संभव है, हालांकि उसने इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया। इस बीच अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है, जिसने जारी अमेरिका नाकाबंदी की अवहेलना करते हुए एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का प्रयास किया था। लेबनान में इजरायली सेना ने बेरूत में एक लक्ष्य पर हमला किया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह हिजबुल्ला के कुलीन रादवान बल से जुड़ा हुआ था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि व्यक्ति इजरायली सैनिकों और नागरिक क्षेत्रों पर हमलों के लिए जिम्मेदार था। हिजबुल्ला ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए इजरायली ठिकानों पर हमले और इजरायली बलों के हताहत होने की सूचना दी है। ये घटनाक्रम नाजुक सुरक्षा वातावरण को रेखांकित करते हैं, जबकि वार्ता जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: फ्रांस ने होर्मोज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा है कि चार्ल्स डी गॉल विमानवाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतालवी और एक डच युद्धपोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद होर्मोज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की अगली कड़ी में आज हम प्रख्यात लेखिका शिव शंकरी से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: I was a Sanskrit student. I was not a Tamil student. So I never knew I can write nice Tamil grammar. My becoming a writer, the most beautiful, significant, meaningful accident in my life. I went from village to know that language, to know the habits, the rituals.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, केन्या, जमैका और त्रिनिदाद तथा टोबैगो जैसे देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के काना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: फरहत पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे होने पर आज सभी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान लिखता है, शौर्य का 1 वर्ष, जल थल नब में और सशक्त हुई सेना। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, भारत में पहली बार 50,000 जवानों की अलग ड्रोन फोर्स, किसी भी सैन्य हमले में सबसे पहले करेगी प्रहार। पत्र लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल, अजय हिंदुस्तान के वो 88 घंटे जब हमारे प्रहार से घुटनों पर आ गया था पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर ऑपरेशन सिंदूर पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, आज देश इस सैन्य अभियान की सफलता की वर्षगांठ मना रहा है। इसका संदेश यही है कि भारत के पास अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों है। दैनिक जागरण ने अमेरिका ईरान के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद शेयर बाजार में तेजी आने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, अमेरिका ईरान वार्ता में प्रगति से बाजार में उछाल, सेंसेक्स 941 अंक चढ़ा, ट्रंप के नरम रुख से क्रूड की कीमतों में आई गिरावट। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भारी बारिश, महाराष्ट्र में पारा 43.5 डिग्री के तक पहुंचा, अमर उजाला की सुर्खी है।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभाग
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा, द हेडलाइंस। बिहार चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी टू एक्सपैंड हिज कैबिनेट टुडे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अमंग होस्ट ऑफ डिग्निटरीज टू अटेंड स्वेरिंग इन सेरेमनी इन पटना। Newly elected Congress MLAs of Keralam to meet in Thiruvananthapuram today to elect their leader. India marks first anniversary of Operation Sindoor, launched in response to Pahalgam terror attack. Bengal BJP leader Shubhendu Adhikari's close aide shot dead in North Chobis Parganas district of West Bengal. US and Iran closing in on agreement to end war in West Asia. France moves its carrier strike group to Red Sea as part of potential mission to secure Strait of Hormuz. And Delhi to host 2026 Commonwealth Table Tennis Championship. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary will expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and several senior NDA leaders will attend the swearing-in ceremony to be held at Gandhi Maidan in Patna at 12:10 p.m. Our correspondent reports that the cabinet expansion is being carried out based on the formula followed in the previous government. Around 15 BJP and 14 JDU MLAs are likely to take oath as ministers. Additionally, 2 ministers from Lok Janashakti Party Ram Vilas and 1 each from Hindustani Awam Morcha and Rashtriya Lok Morcha are expected to be inducted. The newly elected Congress MLAs of Keralam will meet at Thiruvananthapuram today to elect their leader. Congress-led UDF, which secured 104 out of 140 assembly seats in the state, will approach the governor once he reaches Thiruvananthapuram from Chennai. Kerala Governor Rajendra Vishwanath Arlekar, who is also holding the additional charge of Tamil Nadu, is in Chennai today. More from our correspondent.
8: In Keralam, meeting of the newly elected legislators of Congress will be held today morning at Thiruvananthapuram. In the meantime, AICC observers who reached last night at Thiruvananthapuram will continue discussions with the individual MLAs. On the other hand, informal discussions between various constituents of UDF is also progressing on the ministerialship positions. Congress sources hinted that an immediate decision will be taken regarding the chief ministership and approach the governor to form government.
7: In Tamil Nadu, DMK chief M.K. Stalin has said that his party respects the people's mandate for a new party assuming power in the state, and he does not want another election or a constitutional crisis. He also said that his party will not stay in the way for the formation of a new government. Mr. Stalin also rejected the rumours that DMK is in talks with AIADMK to form the next government. In a shocking incident, Chandranath Rath, close aide of BJP leader Shubhendu Abdhikari, was shot dead by unidentified assailants in Madhyam Gram, North Chobis Parganas district of West Bengal. We have more from our correspondent.
9: Reports say that 8 assailants on 4 motorbikes ambushed Rath's car in Doharia and fired bullets indiscriminately. Rath was rushed to a local hospital but was declared dead on arrival. His driver, Buddhadev Behra, sustained multiple bullet injuries to his chest, abdomen and arm and remains in critical condition at a Kolkata hospital. Hospital authorities confirmed that 2 bullets pierced through Roth's heart and 1 struck his abdomen. Police have seized a 4-wheeler allegedly used in the crime, though its number plate is suspected to be fake. Bullets and cartridges are also recovered from the scene. Soon after the attack, BJP leaders, including Shubhendu Adhikari, rushed to the hospital. Adhikari alleged that Roth's killing was a cold-blooded, premeditated murder and said that his party will take care of deceased family and the injured. The incident has sparked a political storm. BJP leaders and supporters have accused the Trinamool Congress, blaming Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee for the attack. In response, the Trinamool Congress condemned the killing and demanded a court-monitored CBI investigation. Other parties, including the CPIM and Congress, have also denounced the violence, stressing that political killings have no place in a democracy. State Police Director General Siddhinath Gupta visited the hospital and confirmed that an investigation is underway. He declined to share further details, citing the sensitivity of the probe. The brutal killing has once again highlighted the rising tide of political violence in West Bengal, leaving citizens shaken and demanding swift justice. Sandeep Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
7: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India marks the first anniversary of Operation Sindoor today. It was on May the 7th last year, India launched Operation Sindoor, carrying out airstrikes on 9 terror infrastructures in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, eliminating at least 100 terrorists. It was India's befitting response to the barbaric Pakistan-sponsored terrorist attack on the tourists in Pahalgam on the 22nd of April last year. Today, we look at New Delhi's demonstration of zero-terror policy towards terrorism.
10: Operation Sindoor was a significant demonstration of India's military and strategic power executed through a combination of military and non-military means. This multidimensional operation effectively neutralized terrorist threats, deterred Pakistani aggression, and firmly enforced India's zero-tolerance policy towards terrorism. The operation maintained strategic restraint while gaining international support. The operation was conceived to punish perpetrators and planners of terror and aimed to destroy terror infrastructure across the border. The operation spoke volumes, resulting in the destruction of 9 major terror camps, an attack on 11 Pakistani airbases, and the elimination of high-profile terrorists. While the strikes were heavy, India performed them with operational ethics and restraint, neutralizing only terror targets and avoiding civilian harm. Inflicted by this heavy damage, Pakistan was compelled to resort to a ceasefire. Operation Sindoor remains the highlight of India's firm stance against terrorism and a demonstration of its destructive military power. Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
7: The Indian Army today shared a video Marking a year of Operation Sindoor, India's calibrated and precise response to Pakistan's sponsored terrorism. In a social media post, the Indian Army highlighted the country's resolute response and reaffirmed its commitment to safeguarding the country's sovereignty and the citizens.
11: India will identify, track and punish every terrorist and their backer.
12: एक साथ नहीं हो सकते टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता
7: डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह has hailed the valor and sacrifices of the Indian Armed Forces on the anniversary of Operation Sindoor. In a social media post, the Defence Minister underlined that the courage and dedication of the country's armed forces continue to safeguard the nation. He added that their actions during the operation reflected unmatched precision, seamless jointness and deep synergy across services, setting a benchmark for modern military operations. The United States and Iran are inching closer to a preliminary understanding to ease the conflict in West Asia, with regional sources saying a draft memorandum is under active discussion. The reported one-page 14-point framework would open a 30-day window for negotiations towards a wider agreement. Tehran says it is still reviewing the proposal, while US President Donald Trump described the situation as under control but warned that military action could resume if talks fail. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is in consultations with US officials on the progress of the negotiations, according to Israeli sources. Meanwhile, Israel has confirmed a strike in Beirut's southern suburbs, targeting a senior Hezbollah commander, in what marks a notable escalation and the first such strike in the Lebanese capital since the ceasefire. We have more from our correspondent.
13: Tensions remain high across key maritime and conflict zones even as diplomacy advances. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy has stated that safe passage through the Strait of Hormuz is possible under what it described as new procedures, though it did not elaborate. Meanwhile, United States Central Command says it disabled an Iranian-flagged oil tanker in the Gulf of Oman after it attempted to sail towards an Iranian port in defense of an ongoing U.S. blockade. Meanwhile, in Lebanon, Israeli forces struck a target in Beirut believed to be linked to the Hezbollah's allied Radwan force. Israeli officials say the individual targeted was responsible for attacks on Israeli troops and civilian areas. Hezbollah has since claimed retaliatory actions, reporting attacks on Israeli positions and casualties among Israeli forces. These developments underscore the fragile security environment even as negotiations continue. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
7: France has deployed its carrier strike group to Red Sea as part of a potential mission to secure the Strait of Hormuz. In a statement, the French army said that the Charles de Gaulle aircraft carrier group, which is accompanied by an Italian and Dutch warship, is en route to the southern Red Sea. France and Britain have been working on a proposal for several weeks that aims to lay the groundwork for safe transit through the Strait of Hormuz once the situation stabilizes or the conflict is resolved. As part of our series, People's Padma on Akashvani, in our upcoming episode, we speak to Shiva Shankari, an eminent writer. She will be honored with the prestigious Padma Shri.
5: I was a Sanskrit student. I was not a Tamil student. So I never knew I can write nice Tamil grammar. My becoming a writer, the most beautiful, significant, meaningful accident in my life. I went from village to village to know that language, to know the habits, the rituals.
7: To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashvani Gold today at 9:10 a.m. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. Delhi will host Commonwealth Table Tennis Championship 2026 at the Tyagaraja Stadium, with players from more than 35 countries expected to participate. Jointly organized by Delhi government and Table Tennis Federation of India, the championship will be held from July the 27th to August the 2nd. Chief Minister Rekha Gupta announced that Delhi has a long legacy of hosting international sporting events, and the championship will further strengthen the city's position on the global sporting map. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
6: Thank you, Sunil. Vietnamese President Tu Lam's visit to India finds front page mention in dailies today, along with photographs of the visiting premier meeting Prime Minister Modi. India-Vietnam boost ties, ink 13 MOUs, target $25 billion US dollar trade. Headlines The Asian Age. The Tribune leads with a headline, cops suspect ISI plot as twin blasts rock Jalandhar, Amritsar. DGP says IEDs used. The disruptions have come ahead of Operation Sindoor anniversary, writes the paper. In its editorial piece titled Amid Disruptions, a Timely Lifeline, the Indian Express says the government's launch of Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0 is a timely and welcome response to the economic disruptions caused by the West Asia conflict, particularly for MSMEs and airlines facing rising costs and supply chain stress. It argues that the scheme can ease short-term liquidity pressures, but also cautions that if disruptions continue or worsen, further policy support may be required. The editorial concludes that the government must remain alert, flexible, and ready with additional measures. And finally, in news that is sure to make wildlife enthusiasts happy, a rusty spotted cat, one of world's smallest species of wild cats and classified as near threatened, has been sighted along with her tiny offspring in the Aravali scrublands at the doorstep of Delhi, reports the Indian Express. And with that, it's back to you, Sunil.
7: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India marks first anniversary of Operation Sindoor, launched in response to Pehelgam terror attack. Bihar Chief Minister Samraj Chaudhary to expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah among host of dignitaries to attend swearing-in ceremony in Patna. Newly elected Congress MLAs of Kerala to meet in Thiruvananthapuram today to elect their leader. Bengal BJP leader Subhendu Adhikari's close aide shot dead in North Chobbis Parganas district of West Bengal. US and Iran closing in on agreement to end war in West Asia. France moves its carrier strike group to Red Sea as part of potential mission to secure Strait of Hormuz. And Delhi to host 2026 Commonwealth Table Tennis Championship. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
14: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत आज पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का पहला साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह दीगर अहम शख्सियात के साथ पटना में हल्फ बरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। केरलम में नौ मुंतखब कांग्रेस अरकान असेंबली आज अपना पार्टी लीडर मुंतखब करने के लिए तिरुवनंतपुरम में मुलाकात करेंगे। मगरबी बंगाल में बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी के करीबी मुआविन को रियासत के शिमाली 24 परगना जिले में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अमेरिका और ईरान मगरबी एशिया में जंग के खात्मे की गरज से एक समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। फ्रांस ने आबनाए हुरमुज गुजरगाह को महफूज बनाने के मकसद से एक मुमकिन मिशन के हिस्से के तौर पर अपने तैयारा बरदार जंगी जहाज को बहरे अहमर में तैनात कर दिया है। और दिल्ली 2026 की दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब खबरें तफसील से। मुल्क में आज ऑपरेशन सिंदूर का एक साल मुकम्मल हो रहा है। पिछले साल 7 मई को आज ही के दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया था और इसके तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 9 बुनियादी ढांचों को तबाह करने और पाकिस्तान के जेर तसल्लुत कश्मीर में कम से कम 100 दहशतगर्दों को हलाक करने के लिए हवाई हमले किए गए थे। भारत का ऑपरेशन सिंदूर पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में सयाहों पर पाकिस्तान की सरपरस्ती वाले वहशियाना दहशतगर्दाना हमले का मुंह तोड़ जवाब था। तफसील हमारे नामा निगार से।
15: ऑपरेशन सिंदूर भारत की फौजी और स्ट्रेटेजिक ताकत का एक अहम मुजाहरा था, जिसे फौजी और गैर फौजी जराये के इश्तराक से अंजाम दिया गया। इस कसीर जैतिया ऑपरेशन ने दहशतगर्दाना खतरात को असरदार तरीके से नाकारा बना दिया, पाकिस्तानी जारियत पर रोक लगाई और दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी को सख्ती से नाफिज किया। इस ऑपरेशन के दौरान बैन अल-अक़वामी हिमायत हासिल करते हुए स्ट्रेटेजिक तहम्मुल को बरकरार रखा गया। ये ऑपरेशन दहशतगर्दी के मुर्तकिब अफराद और इसका मंसूबा बनाने वालों को सजा देने के लिए चलाया गया था, ताकि सरहद पार दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे

0: को तबाह किया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मुसल्ला फौज ने दहशतगर्दी के मंजरनामे का बारीकबीनी से जायजा लिया और मुतादिद दहशतगर्द कैंपों और तरबियती मकामात की निशानदेही की। ये ऑपरेशन अपनी कामयाबी की खुद गवाही देता है, जिसके नतीजे में दहशतगर्दों के 9 बड़े कैंपों को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के 11 फजाई अड्डों पर हमला किया गया और हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों का खात्मा हुआ। ये हमले बहुत शदीद थे और भारत ने उन्हें पेशा वाराना अकदार और तामुल से अंजाम दिया, जिसमें सिर्फ दहशतगर्दाना अहदाफ को भी निशाना बनाया गया था और आम शहरियों को नुकसान पहुंचाने से गुरेज किया गया। इस भारी नुकसान के बायस पाकिस्तान जंगबंदी पर मजबूर हो गया। नई दिल्ली ने यह ऑपरेशन न सिर्फ कामयाबी के साथ अंजाम दिया, बल्कि इससे भारत की फौजी ताकत और उसकी तीनों अफवाज, भारतीय फजाई फौज, भारतीय बर्री फौज और भारतीय बहरिया की मरबूत कार्रवाई का भी मुजाहरा हुआ। इस ऑपरेशन ने जदीद दिफाई निजामों की बरामद में भारत की बढ़ती हुई सलाहियतों को भी उजागर किया। ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के सख्त मौकिफ और उसकी तबाहकुन फौजी ताकत का इजहार है। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: भारतीय फौज ने आज ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरा होने के मौके पर एक वीडियो साझा की है, जिसमें पाकिस्तान की शह पर होने वाली दहशतगर्दी पर भारत की बरवक्त तो मौसर जवाबी कार्रवाई को पेश किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय फौज ने मुल्क की पुख्ता जवाबी कार्रवाई को उजागर किया है और मुल्क के इक्तदार आला और शहरियों के तहफ्फुज़ के तई अपने अज़्म का इआदा किया है।
2: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के एक साल मुकम्मल होने के मौके पर भारतीय मुसल्ला फौज की बहादुरी, जुरतमंदी और कुर्बानियों की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दिफा ने इस बात का जिक्र किया कि मुल्क की सलामती की खातिर मुसल्ला फौज की जुरतमंदी, हौसला मंदी और लगन जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज की कार्रवाई, बेमिसाल दुरुस्ती, बाहमी हमाहंगी और मुख्तलिफ अस्करी खिदमात के दरमियान गहरे इश्तराक का मुजाहरा किया, जिसने जदीद फौजी कार्रवाइयों के लिए एक नई मिसाल कायम की। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर संजय सरोगी ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन और एनडीए के कई सीनियर लीडरान आज से पहर पटना में गांधी मैदान में होने वाली हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: काबीना में तौसी साबिका हुकूमत में अपनाए गए फार्मूले की बुनियाद पर की जा रही है। उम्मीद है कि तकरीबन बीजेपी के 15 और जेडीयू के 14 असेंबली अरकान वज़रा की हैसियत से हलफ लेंगे। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक एक असेंबली मेंबर को भी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। तवक्को है कि काबीना में बेशतर ओहदे बीजेपी और जेडीयू के जाने पहचाने मेंबरों को दिए जाएंगे। अलबत्ता कुछ नए चेहरे भी काबीना में शामिल किए जा सकते हैं। जेडीयू से निशांत कुमार के नाम पर भी बहस जारी है। पटना से निधिश्री की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: काबीना में मुमकिन तौर पर शामिल किए जाने वालों में एलजेपी रामविलास के संजय सिंह और संजय पासवान का नाम शामिल है, जबकि हिंदुस्तान अवामी मोर्चा से संतोष कुमार सुमन और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एमएलए स्नेह लता को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। केरलम में कांग्रेस के 9 मुंतखब अरकान असेंबली अपना लीडर मुंतखब करने के लिए आज तिरुवनंतपुरम में मीटिंग करेंगे। कांग्रेस की क्यादत वाले यूडीएफ ने रियासत की 140 रुकनी असेंबली में 104 सीटें जीती हैं और ये रियासती गवर्नर के चेन्नई से तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे मुलाकात करेगा। केरला के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, जो तमिलनाडु की इजाफी जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, इस वक्त चेन्नई में हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी बंगाल में शिमाली परगना जिले के मध्यम ग्रम में नामालूम हमलावरों ने बीजेपी के लीडर शुभेंदु अधिकारी के एक करीबी साथी चंद्रनाथ रथ को गोली

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब चलते हैं गीत संगीत के सफर पर और सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं शान अलका याग्निक की आवाज़ों में। ये गीत गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय। फिल्म है कल हो ना हो।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं यस बॉस फिल्म से ये गीत। आवाज दी है कुमार सानू ने और अलका याग्निक ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं जतिन ललित।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com।

इसी भजन के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं। यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उनसे भी मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 14 बिंदुओं वाला ये मसौदा 30 दिन की बातचीत का रास्ता खोल सकता है, ताकि एक व्यापक समझौता

तक पहुंचा जा सके। ईरान ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति को नियंत्रण में बताया, लेकिन चेतावनी दी कि बातचीत असफल होने पर सैन्य कार्रवाई फिर शुरू हो सकती है। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरु मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा कि चार्ल्स डी गॉल विमानवाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतावली और एक डच युद्धपोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते, अब से कुछ ही पलों में।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: सुरों की इस दुनिया में आपका स्वागत है, जिसने पीढ़ियों को जोड़ा, भावनाओं को आवाज दी है और हर दिल में संगीत की लौ जलाए रखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों का वो गौरवशाली सफर, जहाँ रेडियो सिर्फ एक माध्यम ना बनकर हर घर का सदस्य बन गया। कभी खेतों में काम करते किसानों के साथ, तो कभी जवानों के हौसलों के साथ, तो कभी माँ की लोरी में, तो कभी प्रेम के मधुर गीतों में। आकाशवाणी ने फिल्म संगीत को सुनाया ही नहीं, बल्कि उसे जन जन तक पहुंचाया है, भारतीय संस्कृति की धड़कन बना दिया है। तो आइए, आज गुनगुनाते तराने में हम याद करेंगे वो गीत, वो दौर और वो एहसास, जिनमें आकाशवाणी की मधुर गूंज आज भी सुनाई देती है। आइए सुनते हैं ऐसा ही एक खूबसूरत सा तराना। फिल्म है खेल खेल में, संगीत से सजाया है राहुल देव बर्मन ने, गीत के बोल लिखे हैं गुलशन बावरा ने, मखमली आवाज़ है आशा भोसले और किशोर कुमार की।

आकाशवाणी ने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया है। भाषाएं अलग रहें लेकिन सुर एक रहे। रेडियो की यही खूबसूरती है कि ये दिलों को जोड़ देता है। और हम देशभक्ति की बात करें तो देशभक्ति के गीतों की बात ही क्या है। देशभक्ति की गीतों की बात हो और आकाशवाणी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस, रेडियो की आवाज़ ने हर भारतीय के मन में देश प्रेम की ज्योत जगाई है। जब देश कठिन दौर से गुजरा तब आकाशवाणी ने लोगों के मन में उम्मीद जगाई। आपदा हो या युद्ध हो या कोई सामाजिक संदेश, रेडियो हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहता है। आइए सुनते हैं ये एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं चक दे इंडिया फिल्म से ये गीत। इस गीत को सुरों से सजाया है मैरियन डी क्रूज, सलीम मर्चेंट और सुखविंदर सिंह।

एक दौर था जब लोग ट्रांजिस्टर लेकर छतों पर बैठ जाया करते थे और उन्हें इंतज़ार होता था अपने पसंद के गीतों का। और जैसे ही पसंद के गीत आते और बजना शुरू होता रेडियो पे, तो उनके चेहरे खिल उठते थे। आकाशवाणी ने संगीत को इंतज़ार कर मिठास दी है। आइए सुनते हैं ऐसे एक मिठास भरी एक गीत। फिल्म है आराधना। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, आवाज़ दी है किशोर कुमार और संगीत से सजाया है सचिन देव बर्मन ने।

रेडियो की आवाज़ में एक अपनापन होता है जो सीधे दिल तक पहुंचता है। शायद यही वजह है कि आज भी रेडियो सुनना एक भावनात्मक अनुभव लगता है। समय बदल गया, लेकिन संगीत का उत्साह कभी कम नहीं हुआ। नई पीढ़ी आए, नए गीत आए, और आकाशवाणी हर दौर में हर समय सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहा। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। सुर है मोहित चौहान और अरिजीत सिंह के, संगीत दिया है प्रीतम ने, गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने, और फिल्म है ये जवानी है दीवानी।

मौसम बदलते रहे, वक्त बदलता रहा, लेकिन कुछ हमेशा दिल के करीब रहा, और वो है रेडियो। रेडियो की आवाज़ जो कभी सुबह की चाय बनी तो कभी रातों की तन्हाई। फिल्म संगीत को घर घर पहुंचाने में आकाशवाणी का योगदान किसी इबादत से कम नहीं, क्योंकि कई बार लोगों ने फिल्मों से पहले गीतों से ज़्यादा प्यार किया है, और वो गीत रेडियो की बदौलत दिलों तक पहुंच गई है। आइए सुनते हैं ऐसे ही एक प्यारा सा गीत। फिल्म है दबंग, गीतकार हैं फैज़ अनवर, आवाज़ दी है राहत फ़तेह अली खान ने और श्रेया घोसाल ने, संगीतकार हैं साजिद वाजिद।

कुछ गीतों को सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि वो महसूस किए जाते हैं, जैसे सुबह की भोर हो, रात की ठंडी हवा, समुद्र की लहरें हो, जैसे किसी की याद। और जब ऐसे गीत रेडियो पर बजते हैं तो दिल खुद ब खुद मुस्कुरा उठता है। आइए सुनते हैं ऐसा एक प्यारा सा गीत। आवाज़ दी है कुमार शानू ने और अलका याग्निक ने, गीतकार हैं समीर और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। फिल्म है बरसात।

बारिश हो और चाय और रेडियो पर बजता कोई प्यारा सा गीत और चेहरे पर हो मीठी सी मुस्कान जो जिंदगी को सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक हो। आकाशवाणी ने ऐसी न जाने कितनी यादों को जन्म दिया है। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। आवाज़ दी है अमित कुमार, उदित नारायण और आशा भोसले ने। शब्द रचनाकार हैं अनजान और समीर। संगीत से सवारा है बप्पी लहरी ने। फिल्म है अफसाना प्यार का।

90 वर्षों के इस खूबसूरत से सफ़र में आकाशवाणी ने हर पीढ़ी को, भावनाओं को आवाज़ दी है। 90 वर्षों से यह रिश्ता यूं ही दिलों में गूंज रहा है और आने वाले वर्षों में भी यूं ही गुनगुनाता रहेगा, मीठी धुन और खूबसूरत यादों के साथ। आइए सुनते हैं ये एक प्यारा सा गीत। फिल्म है ये जवानी है दीवानी। सन 2013 में बनी फिल्म ये जवानी है दीवानी के इस गीत को गाया है सीरी रामा चंद्रा मयनपति ने, शिल्पा राव ने, और संगीत दिया है प्रीतम ने, और गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य।

संगीत हमेशा सफ़र के में साथ चलता है और आकाशवाणी उस सफ़र का सबसे मधुर पड़ाव रहा। आज 90 वर्षों की यह यात्रा आज भी उतनी ही जवान और उतनी ही सुरीली है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। फिल्म है मोहब्बतें, संगीत दिया है जतिन ललित ने, गीतकार हैं आनंद बख्शी और आवाज़ें दी हैं मनोहर शेट्टी, प्रीता मजुमदार, श्वेता पंडित ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। इन हमलों में 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था।
1: इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आतंकवाद और उसको समर्थन देने वालों को समाप्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है। ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने इस ऑपरेशन के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि देश के खिलाफ आतंकवाद के हर स्वरूप का मुकाबला डटकर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये दिन हमारे दुश्मनों को ये संदेश देता है कि वे दुनिया में कहीं भी छिपे हों, वे हमसे बच नहीं सकते। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी केरलम में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। राज्यपाल के चेन्नई से तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लिकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है, वे इस समय चेन्नई में हैं। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है।

0: क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 14 बिंदुओं वाला ये मसौदा 30 दिन की बातचीत का रास्ता खोल सकता है ताकि एक व्यापक समझौते तक पहुंचा जा सके। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज के कलाकार हैं उगेश पांडे।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत नृत्य साहित्य नाट्य विधाएं धारावाहिक वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details log on to www.ddindia.com।

उगेश पांडे के स्वर में अभी आप सुन रहे थे लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे गीतांजलि कार्यक्रम।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: गीत हमारे जीवन के पल पल के साथी होते हैं, चाहे खुशी हो या गम, हम गीतों को हमेशा अपने पास पाते हैं। गीत संगीत के इसी सुहाने सफ़र के साथ कार्यक्रम गीतांजलि में मैं अपर्णा आप सभी का स्वागत करती हूँ।

सावरिया फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे शान की आवाज़ में। गीतकार थे समीर और संगीत था मोंटी शर्मा का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं जन्नत 2 फिल्म से, आवाज़ शफकत अमानत अली की।

राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे शारिब साबरी की आवाज में। और आइए अब सुनते हैं अगला गीत श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म गो गोवा गॉन से।

सोनू निगम की आवाज़ में आप सुन रहे थे मीनाक्षी फिल्म से ये गीत। अगला गीत है फिल्म दोस्ताना से सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान, शंकर महादेवन और विशाल ददलानी की आवाज़ में। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: कोमल वचन और विनम्र व्यवहार ही मनुष्य को महान बनाते हैं।
1: इस सुंदर विचार के लिए हम उमंग कार्यक्रम की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश।
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके अद्भुत और रहस्यमय संसार की।
1: जी,
2: भारतीय शास्त्रों में समुद्र को अनंत ज्ञान का प्रतीक और जीवनदाता माना गया है। गीता, रामायण, पुराणों और वेदों में भी इसे विशेष महत्व दिया गया है। समुद्र मंथन की घटना से हम सब परिचित तो हैं ही, तो अजीत जी, आज हम समुद्र की किस विशेषता पर चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, अभी अभी आपने कहा समुद्र को शास्त्रों में जीवनदाता कहा गया है।
2: जी,
1: है ना?
2: बिल्कुल।
1: आज हम चर्चा करेंगे कि इसे जीवनदाता कहने का कारण क्या है। तो चलिए आपसे करते हैं शुरुआत।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है, वरना हम समुद्र के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। यदि पूछा जाए कि हमें जीने के लिए प्राणवायु या ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो सबका उत्तर होगा पेड़ पौधों से। ये ठीक है, लेकिन सच ये है कि समुद्र लगभग 60-70% तक ऑक्सीजन पैदा करता है।
1: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। जी हाँ श्रोताओ, यदि प्रतिशत को मान लें तो कहा जा सकता है कि समुद्र पेड़ पौधों से भी अधिक ऑक्सीजन पैदा करता है, जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए तो इसे जीवनदाता भी कहा जाता है।
2: अजीत जी, मैंने पढ़ा है कि समुद्रों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे सांस लेने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि समुद्र ऑक्सीजन कैसे पैदा करता है।
1: जी विमलेश जी, समुद्र में फाइटोप्लैंकटन होते हैं। जरा श्रोताओं को जानकारी तो दे दें कि फाइटोप्लैंकटन होते क्या हैं?
2: श्रोताओं, फाइटोप्लैंकटन दरअसल बहुत ही सूक्ष्म और छोटे छोटे पौधे होते हैं जो समुद्र के जल में तैरते रहते हैं। इनमें बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वे सूर्य की गर्मी से फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
1: जी, एक रोचक बात और जान लेते हैं। फाइटोप्लैंकटन नाम ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द से आया है।
2: जी,
1: फाइटो का अर्थ है पौधा और प्लैंकटन का अर्थ है भटकने वाला या तैरने वाला।
2: जी,
1: ये पौधे समुद्र में यहाँ वहाँ तैरते रहते हैं।
2: जी हाँ श्रोताओं, इनकी संख्या अरबों खरबों में है। ये धरती के सबसे पुराने ऑक्सीजन उत्पादकों में से एक हैं। अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक और प्रश्न मेरे मन में है। वो ये है कि इनके द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन हवा में कैसे आती है, यानी हमें कैसे मिलती है?
1: जी देखिए, समुद्र में बनी ऑक्सीजन दो तरह से फैलती है। तो पहली बात है, ये ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है। इसी ऑक्सीजन से मछलियां और सारे समुद्री जीव सांस लेते हैं। लेकिन दूसरी एक और बात है।
2: दूसरी बात है, इनके द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन लहरों और हवा के संपर्क में आकर हमारे पर्यावरण में पहुंचती है।
1: जी, और इतना ही नहीं, समुद्री शैवाल भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करते हैं।
2: लेकिन अब एक खतरा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रोताओं, एक बहुत गंभीर बात आपको बता दें, समुद्रों में हर दिन हजारों टन प्लास्टिक और कारखानों का कचरा नदियों द्वारा लाया जाता है। समुद्री तटों पर पर्यटक भी कचरा फेंक

0: देते हैं। शहरों का कचरा जहाजों द्वारा समुद्रों में लाकर फेंक दिया जाता है।
1: और श्रोताओं, इससे होता यह है कि समुद्री जीवों के जीवन पर संकट आता है
0: जी,
1: और समुद्र द्वारा ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता भी प्रभावित होती है।
0: श्रोताओं, क्या आपको पता है कि समुद्रों में कुछ जगहों पर प्लास्टिक इकट्ठा होकर बड़े बड़े ढेर बना लेता है, जिसे प्लास्टिक या गार्बेज आइलैंड कहते हैं। ये तैरते हुए कचरों के द्वीप हैं। तो आइए अपने जीवनदाता समुद्र का सम्मान करें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और कचरा इधर उधर न फेंकें। शास्त्रों में समुद्र को देवता भी माना जाता है।
1: श्रोताओं, समुद्र का विश्व सभ्यता में बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया का 80% व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। यह जलवायु, ऋतुओं और पर्यावरण को भी नियंत्रित करता है। ऐसा भी कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति भी समुद्र से ही हुई है
0: जी।
1: आइए आज अपने जीवनदाता समुद्र को धन्यवाद दें, हम उसकी रक्षा करें।
0: तो समाप्त करते हैं आज की चर्चा। श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: आज का प्रश्न है, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कोई दो कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कोई दो कारण बताइए।
1: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, माला की चांदी की पायल।
1: इस कार्यक्रम में एक प्यारी सी बच्ची के बारे में बताया गया है, जिसे पायल पहनकर घर में घूमना बहुत अच्छा लगता है। वो पायल पहनकर घूमती है और बहुत सी मजेदार गतिविधियां भी करती है। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित सुंदर नाट्य प्रस्तुति है, माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला तू।
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी, डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
3: माला, यह तुम्हारे लिए है।
2: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की होश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेज से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया।

0: माता की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
1: तो बच्चों, अभी आपने सुनी डराने की अलग अलग अभिव्यक्तियां। अब आपके सोचने के लिए कुछ बातें। विभिन्न भावों की अलग अलग अभिव्यक्ति होती है, जैसे हंसने की, रोने की इत्यादि। तो आप भी अपने मित्रों के साथ प्रयास करके देखिए कि आप कितने प्रकार से हंस सकते हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर और ममता मलकानी, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
2: और अब सुनते हैं भारतीय शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत की श्रृंखला राग रस बरसे का एक और कार्यक्रम। शीर्षक है राग गौड़ मल्हार।
1: इस कार्यक्रम में राग गौड़ मल्हार के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है और विशेष रूप से बताया गया है कि इसे कब गाया जाता है, इसकी स्वर मालिका क्या है और इसमें कौन कौन से कोमल और तीव्र स्वर लगते हैं।

राग गौड़ मल्हार। राग गौड़ मल्हार की उत्पत्ति खमाज थाट से हुई है। इस राग में दोनों निषाद अर्थात कोमल नि और शुद्ध नि प्रयोग किए जाते हैं तथा अन्य सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसके आरोह और अवरोह में सात सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर मध्यम यानी म है, संवादी स्वर षडज यानी स है। इस राग का गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है एवं ये वर्षा ऋतु में विशेष रूप से गाया जाता है। राग गौड़ मल्हार के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

अब प्रस्तुत है राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका, जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने सुनी राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका। अब इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना सुनिए। बोल हैं उमड़ घुमड़ कर आते बादल। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई

अभी आपने सुनी राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
1: आशा है श्रोताओं कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा।
2: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चलूँ।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।
2: इस कार्यक्रम में सच्ची मित्रता के बारे में बताते हुए ये संदेश दिया गया है कि मित्र वही है जो जरूरत के समय काम आए और हर संभव सहायता करे। ये कार्यक्रम एक लोक कथा पर आधारित है।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए?
3: तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

0: पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया। फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

0: जी, अभी आपने सुना कार्यक्रम साथी की सहायता।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आपने सुना NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने बस कुछ ही क्षणों में।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत नृत्य साहित्य नाट्य विधाएं धारावाहिक वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details log on to www.ddindia.com।

उपकार फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर व साथी कलाकारों की आवाज़ में। इस गीत को संगीत से सजाया कल्याण जी आनंद जी ने, बोल थे गुलशन बावरागे। और आइए अब सुनते हैं चिराग फिल्म से कार्यक्रम का अगला गीत।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत के बोल थे मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीत से सजाया मदन मोहन ने।

वो कौन थे? फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत मदन मोहन का, बोल थे राजा मेहंदी अली खान के। और कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, फिल्म एक कली मुस्काई से आवाज़ लता मंगेशकर की। गीत के बोल हैं राजेंद्र कृष्ण के और संगीत मदन मोहन का।

एक कली मुस्काई फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ मिशन रोजगार के तहत मुनक्किदा

0: प्रोग्राम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और उत्तर प्रदेश मातहत खदमात सिलेक्शन कमीशन के जरिए आयुष महकमा पेशावराना तालीम और माजूरी को बाख्तियार बनाने के महकमे के जरिए मुंतखब किए गए 481 उम्मीदवारों को तकर्री नामे दिए। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि हुकूमत ने 9 लाख से ज्यादा नौजवानों को सरकारी मुलाजमतें फराहम की है। उन्होंने कहा कि पहले मुलाजमत के लिए नौजवानों का इस्तेहसाल होता था।
1: जब योग्य और प्रतिभाशाली युवा किसी व्यवस्था का पार्ट बनते हैं तो उस व्यवस्था में एक गति आती, गति जितनी अच्छी होगी प्रगति भी उतनी ही अच्छी दिखाई देगी। याद रखना, दोनों के आपस में एक बेहतरीन संबंध है और उसका परिणाम निष्पक्ष भर्ती नहीं होती थी, पैसा लेकर के भर्ती की जाती थी, नौजवानों का शोषण होता था, जाति देख करके, मत और मजहब देख करके, क्षेत्र देख करके भर्तियां होती थी। परिणाम क्या होता था? नौजवान हताश होता था, निराश होता था, प्लान करता था, यूपी की प्रगति बाधित होती थी और बाधित ही नहीं होती थी, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में आ गया।
0: वजीर आला आज सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपए के 325 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे और मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों के मुस्तफदीन को सर्टिफिकेट तकसीम करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज रियासत में 2027 की मर्दमशुमारी के पहले मरहले का बाकायदा आगाज किया। वजीर आला की रिहाइशगाह पर मुनक़द एक प्रोग्राम में उन्होंने हमारी मर्दमशुमारी हमारी तरक्की के जज्बे के साथ घरों की फहरिस्त साजी और घरों की गिनती का अमल शुरू किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि मर्दमशुमारी महज आबादी की गिनती नहीं बल्कि जामे और मनसूबा बंद तरक्की की मजबूत बुनियाद है। आज डाटा पर मुबनी फैसलों का दौर है और मर्दमशुमारी के दुरुस्त आदाद व शुमार बुनियादी ढांचे, तालीम, सेहत, समाजी तहफ़ और मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों के मौसर निफाज में अहम किरदार अदा करते हैं। वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में मुल्क में पहली मरतबा डिजिटल मर्दमशुमारी कराई जा रही है। वजीर आला ने रियासत के लोगों से अपील की कि वो मर्दमशुमारी की कौमी जिम्मेदारी समझते हुए इसमें बढ़ चढ़ कर शामिल हों। रियासत में आज से खुद गिनती की सहूलत शुरू हो रही है जो 21 मई तक रहेगी। मुल्क आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी मना रहा है। गुज़िश्ता साल 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर फिजाई हमले किए गए। इन हमलों में 100 के करीब दहशतगर्द मारे गए। ये कार्रवाई गुज़िश्ता साल 22 अप्रैल को पहलगाम में सयाहों पर दहशतगर्दाना हमले के जवाब में की गई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह के मौके पर हिंदुस्तानी मुसल्ह अफवाज की बहादुरी और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। दरियासना वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुल्क की मुसल्ह अफवाज की हिम्मत और लगन कौम की सलामती को यकीनी बनाने के लिए जारी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद दी। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान आज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ICAR में नेशनल फ्रूट एक्सपोर्ट कॉन्फ्रेंस फ्रूट होराइजन 2026 के इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद फलों के शोबों में नई सोच, नई टेक्नोलॉजी और मार्केट के नए मौके के लिए राहें हमवार करना है। इससे कबल मरकजी वजीर ने कल रात लखनऊ में रियासत के सरकर्दा बरामदात कुंदगान से बात की। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में रियासती मुलाजमीन इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के कारकुनों के लिए मुल्कगीर सालाना हेल्थ चेकअप पहल का आगाज किया। इस इकदाम के तहत 40 साल और उससे ज्यादा उम्र के कारकुनान मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सेहत का मुआयना कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के कुरारा थाना इलाके में दरिया यमुना में एक कश्ती उलट गई जिससे एक बड़ा हादसा पेश आया। गोताखोरों ने दरिया यमुना में डूबने वाले 3 अफराद की लाशें बरामद की। 3 लापता बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। हादसा कल रात उस वक्त पेश आया जब एक शादी में शरीक 9 अफराद की कश्ती उलटने के बाद दरिया में गिर गई। इनमें से 3 तैर कर महफूज मुकाम पर पहुंच गए, बाकी 6 की तलाश जारी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाकई का नोटिस लेते हुए अफसरान को राहत और बचाव कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि लापता अफराद की तलाश में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही वजीर आला ने जिले इंतजामिया को हादसे की वजूहात जाने, मुस्तकबिल में ऐसे हादसात को रोकथाम के लिए ठोस इंतजामात करने की भी हिदायत दी। लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान IPL क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। राजधानी लखनऊ, चित्रकूट, मैनपुरी, पीलीभीत, हमीरपुर और आसपास के अजला में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। महकमे मौसमियात ने अगले दो घंटे में चित्रकूट, प्रतापगढ़, जालौन, मेरठ, बरेली, बदायूं और कई दीगर अजला में बारिश और आसमानी बिजली गिरने के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
3: सामईन आदाब, उर्दू मैगजीन के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज की मैगजीन को हमने जिन उनवानात से मुजयन किया है उसके पहले सफ़े पर है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के हवाले से एक मख्तसर तकरीर। इसके बाद हम आपको कलाम शायर के तहत सुनवाएंगे आज़मगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान और खुश कलाम शायर जनाब नियासिफ़ात इस्लाही से उनका कलाम। आज की मैगज़ीन में अफसाना पेश करेंगे डॉक्टर बैदुल्ला चौधरी और मैगज़ीन के आखिर में आप सुनेंगे अहमद फ़राज़ की एक बेहतरीन गज़ल ग़ुलाम अली की आवाज़ में। सामईन, आज 7 मई है और आज के ही दिन 7 मई सन 1861 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पैदाइश हुई थी। उनके यौम पैदाइश के मौके पर समात फरमाइए ये तकरीर बंगाली ज़बान के शेक्सपियर रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली ज़बान का जिन्हें शेक्सपियर कहा जाता है, उनकी पैदाइश 7 मई सन 1861 को कलकत्ता में हुई। वो बंगाली ज़बान के अजीम शायर, फ़लसफ़ी, नाविल निगार, अफसाना निगार और फ़नकार थे जिन्होंने हिंदुस्तानी सकाफत को आलमी सतह पर रोशनास कराया। वो पहले गैर यूरोपी थे जिन्हें सन 1913 में उनकी किताब गीतांजलि के लिए नोबेल इनाम से नवाजा गया। टैगोर ने अपने अहद की ज़िंदगी, ज़माने और सकाफत के बदलते हुए मंजरनामे की तलखियों को अपनी आँखों से देखा था। उन्होंने अपने मुशाहदे और गौर फिक्र से ऐसे अदब की तख्लीक की जो असरी शौर से हम आहंग है। उनकी तख्लीकात को सामने रख कर 19वीं सदी के अवाखिर और 20वीं सदी के अवाइल की समाजी, सियासी, माशी और तहजीबी तारीख मुरतब की जा सकती है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहली किताब सिर्फ 17 बरस की उम्र में मंजरेआम पर आ गई थी। फिर कानून की तालीम हासिल करने की खातिर सन 1878 में वह इंग्लिस्तान गए। 1.5 साल बाद डिग्री लिए बगैर लौट आए और अपने तौर पर पढ़ने लिखने लगे और अपनी शख्सियत को उन्होंने परवान चढ़ाया। इस दौरान में कई अफसाने लिखे और शायरी के जानिब भी तवज्जा की। टैगोर ने ज़्यादातर चीज़ें बंगाली में लिखी हैं। सन 1901 में बोलपुर बंगाल के मुकाम पर शांति निकेतन के नाम से मशरक़ी और मगरबी फ़लसफ़े पर एक नए ढंग के स्कूल की बुनियाद डाली, जिसने सन 1921 में यूनिवर्सिटी की तश्कील अख्तियार कर ली। शांति निकेतन में उन्होंने अपनी बंगाली तहरीरों का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया, जिसके बायस उनकी मकबूलियत दूसरे मुल्कों में फैल गई। यूरोप, जापान, चीन, रूस, अमेरिका का कई बार उन्होंने सफ़र किया। सन 1913 में अदब के सिलसिले में नोबेल प्राइज़ मिला और सन 1915 में बरतानवी हुकूमत हिंद की तरफ से सर का खिताब दिया गया। लेकिन बरतानवी राज में पंजाब में आवाम पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज के तौर पर उन्होंने सर का खिताब वापस कर दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में कमोबेश दुनिया के मुतअद्दिद मुल्कों का दौरा किया और लेक्चर भी दिए। सन 1930 में इंसान का मज़हब के उन्वान से लंदन में कई बुलंद पाया खुतबात से लोगों को नवाजा और न्यूयॉर्क में अपनी उन तस्वीर की नुमाइश की जो टैगोर ने 68 बरस की उम्र के बाद बनाई थी। तकरीबन 3000 गीत मुख्तलिफ धुनों में तरतीब दिए, बेशुमार नज़में लिखीं, मुख्तसर अफसाने लिखे, ड्रामे भी लिखे। हिंदुस्तान की कई यूनिवर्सिटीज़ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आपको डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। आपको बंगाली ज़बान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। सन 1934 ईस्वी के आसपास उनकी सेहत ख़राब होने लगी और उसके बाद वो अक्सर बीमार रहे। बिलाखिर सन 1941 को 88 साल की उम्र में ये अजीम मुफक्किर, अफसाने निगार और बुलंद पाया शायर मालिक हकीकी से जा मिला। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक हमजहत शख्सियत के मालिक थे जिन्होंने शायरी, मौसीकी और मुसव्वरी में गराकद खिदमात अंजाम दी थीं। सामईन, ये तो थी चंद बातें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के हवाले से। आज उनका यौम पैदाइश है, इस हवाले से अभी आप ये तकरीर समाअत फरमा रहे थे। और अब हम आपको लिए चलते हैं शेर व शायरी की दुनिया में। आज़मगढ़ का नाम हमेशा से ही अदबी दुनिया के लिए किसी तारुफ का मोहताज नहीं रहा है। यहाँ पर उर्दू ज़बान व अदब की परवरिश बड़े सलीक़े से की गई है। इस दियार के एक नौजवान और खुश कलाम शायर हैं जनाब नियाज़ सिफ़ात इस्लाही। समाअत फरमाइए उनसे उनका कलाम।
4: कुछ

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात। मत हार मान, तू है देश की शान, तू कमर कस और सीना तान ले। एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, एक नया टीवी चैनल जहां होंगी बातें बदलाव की और आपके कल के बेहतर शुरुआत की। दूरदर्शन किसान।
4: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती किसानी। आज का विषय है कुत्ता पालन व्यवसाय के रूप में। वार्ताकार हैं डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव।
5: पंच भाई, खेती बाड़ी से लगल जुड़ल काम पशुपालन कहावे। केहू मुर्गी पालन कराता, केहू बकरी पालन कराता, केहू बत्तख पालन कराता, और हम देखली कई लोग कुत्ता के भी जनबा पालन कर रहा बाटे। कुत्ता का पालन अगर केहू व्यवसायिक स्तर पे कल चाहता तो कैसे कल जा, आज यही विषय पर आप सबके जानकारी मिली। यह विषय पर जानकारी देला खातिर हमरे बैठकी में आये हुए डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी, जो उनकी उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं गोरखपुर मुख्यालय में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमरे यह कार्यक्रम में स्वागत बा। सबसे पहले हम आपसे ये जानल चाहब कि अगर केहू कुत्ता पालन के व्यवसाय के रूप में कल चाहता तो कुत्ता के कौन कौन अच्छी नस्ल है जौने का पालन कल जा सकेला।
6: यार, कुत्ता पालन के चलन बहुत बढ़ल बा और ये बात देखने में भी आयल बा कि यहाँ पर लोग द्वारा बहुत तरह के कुत्ता पालल जाता और अच्छे से पालल जाता।
5: जी,
6: यही लक्ष्य पर हम लोग पिछले 6 साल से यहाँ पर डॉग शो करत बाटी, जिमे कम से कम 27-28 तरह के कुत्ता, मतलब 27-28 तरह के ब्रीड, कुत्तन के ब्रीड शो में आवेल है। और वो दिनों दिन वो पूरा प्रोग्राम गोरखपुर महोत्सव के साथ टाई अप होके अच्छा चला था।
5: जी जी।
6: तो गोरखपुर में लगभग जौन वैरायटी हिंदुस्तान भर में पावल जाला उनमें से ज्यादातर वैरायटी यहाँ बा और लोग बहुत अच्छे से होके पालत बाटे।
5: जी जी। कौन कौन मुख्य नस्ल बाटी ओकरे बारे में हम चाहे बता दें।
6: देखिए, कुत्ता पल्ले में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होला ये कि आपको जरूरत का बा।
5: जी।
6: कई बार लोग परेशान भी होना, अगर केहू के छोट घर बा, अगर केहू का छोट घर बा तो छोटे साइज का कुत्ता पाले के चाहिए। जेकर घर में छोट बच्चे बाटे वहां भी जोन बा टॉय डॉगो के बोले जाला, जेमे पामेरियन है, जर्मन स्पिट्स है, पग है, ये तरह के कुत्ता पाले। जेकर बड़ा फार्म हाउस टाइप के बा या बड़ा हवेली बा या बहुत ज्यादा जगह बा, वहां बड़े ब्रीड के कुत्ते जैसे जर्मन शेफर्ड, ग्रेट डेन, सेंट बर्नार्ड, हस्की, बॉक्सर, ये तरह के कुत्ता पाले के चाहिए।
5: अच्छा, ये जितना भी नस्ल आप बतौली है, केहू अगर के खरीदल चाहते तो कहाँ से मिल सकले?
6: देखिए, फिलहाल उत्तर प्रदेश और गोरखपुर में अभी कोनो एकर मॉनिटरिंग बॉडी नहीं बा।
5: जी।
6: पूरे देश में एक मॉनिटरिंग बॉडी है कुत्तन के ब्रीड में, जिसे कहा जाला कैनिन क्लब ऑफ इंडिया, KCI।
5: जी।
6: वो सबसे सर्वोच्च संस्था है, सरकारी नहीं है वो, लेकिन ओमें लोग रजिस्टर्ड अपन कुत्ता करावे ले। कुत्ते के व्यवसाय गोरखपुर जैसे शहर खाती एक नया चीज बा।
5: जी।
6: और यहाँ पे अभी फिलहाल कोनो लाइसेंस की प्रथा नहीं बा, लेकिन एक चीज समझे चाहिए कि ए तरह के जोन भी व्यवसाय होला, चाहे गाय पालन का हो के, बकरी पालन का हो के, और मुर्गी पालन हो के, या कुत्ता पालन हो के, ये सबकर कस्टोडियन, ये सबकर मालिक होला नगर निकाय।
5: जी जी।
6: गोरखपुर शहर में हुई तो नगर निगम हुई, पंचायत में हुई तो नगर पंचायत या जिला पंचायत हुई, नगर पालिका में हुई तो नगर पालिका हुई।
5: जी जी। कुत्ता का बच्चा अगर केहू खरीद लेलस तो ओकरे रखले का क्या व्यवस्था करे, कैसे जनबा ओके व्यवस्थित ढंग से रखल जाए?
6: पहले तो हमेशा खरीदने से पहले खूब जांच पर रख ले, क्योंकि अभी ये नया व्यवसाय है, और ये समझ ले क्योंकि कौन सा ब्रीड चाहिए, वो ब्रीड के कुत्ता ले आवे घर में, और बच्चा ही ले आए, बच्चा लाने में फायदा है, 2 महीने से कम का बच्चा ना लाए, ये मतलब सुझाव बा, 2 महीने से ऊपर का बच्चा, 3 महीने का बच्चा लाए। लैले के साथ ही ओकर जहां से ले आए उसे पूछ ली कोनो टीका लगल बा कि नहीं लगल बा, अगर टीका नहीं लगल बा ओके कीड़ी की दवा नहीं दिया गल बा, पास के कोनो पशु चिकित्सा अधिकारी से मिलके, पशु चिकित्सक से मिलके ओके दिखा के ओकर लैले के साथ ही ओकर टीकाकरण और कृमिनाशक दवाई देल शुरू करे के बा।
5: अच्छा ओकरे खैले पेले के का व्यवस्था कइल जा,
6: जोन हिसाब से यहाँ पर पालल जाला या जोन यहाँ पर सामाजिक सरोकार बा ओमे घर कहीं बनल, बस 2 चीज का ध्यान देवे चाहिए, एक नमक और दूसरा जोन बा चीनी, ये दोनों से थोड़ा दूर रखें। जैसे बच्चन के दिया जाला पहले दूध दिया जाला, जो 500 बच्चे होला उनके दूध में पानी मिला के दिया जाला, वैसे धीरे धीरे स्वान के बच्चे को भी थोड़ा थोड़ा हल्का बहुत हल्का भोजन या दूध में पानी मिला के या थोड़ा थोड़ा 5-6 बार दीजिए। जैसे जैसे कुत्ता के अपन ओकर उम्र बढ़ी ओकर एज बढ़ी वो हिसाब से ओकर खाना का थोड़ा गलिष्ठ भोजन देवे के बा, और ओकर जो 5-6 बार देवे बा ओके कम करके 3-4 बार या 2 बार में ले आवे के बा।
5: जी जी। अच्छा उनके स्वास्थ्य के लेके का सावधानी बरतल जा?
6: स्वास्थ्य के लेके सावधानी ये बरती, जहां से ले आई कुत्ता वो हम बार बार हर बार सबसे ये कही ले कि जहां से ले आई ओकर पहले समझ नहीं कि ओकर माई बाप के रहल।
5: जी जी।
6: अच्छे ब्रीडर के यहाँ से कुत्ता ले आई या अच्छे जाने वाले के यहाँ से कुत्ता ले आई, ओके ले आई ओके कृमिनाशक दवाएं और ओके टीकाकरण अपने पास के पशु चिकित्सक से मिल ली, ओके करी और जहां पे रखी ओके, अगर बहुत छोटा बच्चा बा ठंड ज्यादा बा तो के कोनो गत्ता में कोनो कागज के कार्टून में रखे अपने पास रखी, ठंड में ओके ठंडक से बचावे बा और गर्मी में ओके गर्मी से बचावे के बा।
5: जी जी।
6: ये बात ध्यान देवे चाहिए कुत्ता बहुत ज्यादा सेंसिटिव होला गर्मी से, तो गर्मी में भी ओके ठीक से बचावे के पड़ी और जाड़ा में भी ओके ठीक से बचावे के पड़ी।
5: डॉक्टर साहब एक चीज हम आपसे जानल चाहब, जैसे केहू के मन में बा कि हाँ वो कुत्ता पालन करे लेकिन ओके एकरे बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं बा, तो ओके जोन बा कोने कोने चीज के जानकारी जोन बा करे के पड़ी, या अगर ओकरे बारे में जानकारी ले बा तो कैसे संपर्क करें?
6: सबसे अच्छा बात ये बा कि जे व्यवसाय के करे चाहता वो पास के पशु चिकित्सक से मिले और पशु चिकित्सक से मिलके आपन बतावे कि हम ये व्यवसाय करे चाहते हैं। वो व्यवसाय का काम कोनो पशु संबंधित कोनो व्यवसाय का हुई तो वो पशुपालन विभाग के लोग बताइए, डॉक्टर साहब लोग बताइए, विभाग बताइए, वो बतावे अभिन फिलहाल राज्य सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा कोनो कुत्ता पर कोनो स्कीम नहीं चलता, आप जितना सक्षम बाटी वो हिसाब से अपने पास के पशु चिकित्सक से संपर्क करी, उनसे वार्ता करी, आपन जरूरत बताई और व्यवसाय के रूप में काम करे खाती उनसे बात करी। एक साथ साथ जो पुरान कुत्ता व्यवसाय करे वाले ब्रीडर बाटे इनके डॉग ब्रीडर बोलल जाला उनसे संपर्क करी, आजकल सब कुछ नेट पर बा, नेट के माध्यम से संपर्क स्थापित करी, कैनल क्लब ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाई, जितना अच्छा ब्रीड होई सारा आपके कैनल क्लब ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर मिली, आप देश भर में केहू से संपर्क करके उनमें सबका फोन नंबर रहला, सबका ईमेल एड्रेस रहला, जो लोग ब्रीडिंग देश भर में करत बाटे इवन दुनिया में करत बाटे उनसे आप संपर्क करी, अपने सरकार अपने शहर के हिसाब से अपने लोगन के पॉकेट के हिसाब से आप कुत्ता ले आई और उकर व्यवसाय करी। अभी फिलहाल हमें कोनो लाइसेंस के नहीं बा, एक चीज जरूर बा नगर निगम गोरखपुर पिछले साल से एक चीज शुरू कर ले से कि जितना भी कुत्ता पालल जाए उन सबका रजिस्ट्रेशन नगर निगम में कराई।
5: ये तो आप गोरखपुर के बात कर रहे बाटी, हमन कई बात कही जोन बहुत दूर तक सुनल जाला, बाकी जगह के लोगों के लिए क्या करे के?
6: जगह के लोगों के खाली ये करे पड़े कि एक तो आप जो इस समय नेट इंटरनेट बा होकर संपर्क करी, पास के पशु चिकित्सक से बात करी, अगर ब्रीडर कोनो संबंधित बा पुरान ब्रीडर बा तो उनसे बात करी और उकरे बाद अपन व्यवसाय शुरू करी।
5: आपके इस क्षेत्र में एगो लंबा अनुभव बा, अगर केहू कुत्ता पालन के व्यवसाय के रूप में शुरू कर चाहता तो ई जोन बा ओकरे लिए कहाँ तक लाभप्रद हो सकेला?
6: बहुत अच्छा ये प्रश्न बा और विकर बहुत बढ़िया एमए रिटर्न भी बा। जैसे मान लो एक कुत्ता केहू ले आयल जिकर न्यूनतम कास्ट मान लिया 10,000 रुपए में केहू एक कुत्ता ले आयल, और ओके 4 या 5 बच्चे हो गए न। अगर लेब्राडोर या कोई भी कुत्ता जो 10,000 के ले आते हैं, वो अगले जब वो बच्चा ले आएंगे, बच्चा 1-1.5 साल में कंसीव करेगा, उसके बाद से आपका हर साल साल में 2 बार वो कुत्ते जो है बच्चे ब्रीडिंग हीट में आते हैं
5: जी जी।
6: तो दोनों बार में आपके 5, 6, 7, 8 बच्चा मिल जाएंगे। ओके अच्छे से देखभाल करी, एक एक कुत्ता फिर वही रेट पे बिके लगे लें जितने रेट पे आप लाइल बटी, तो कई गुना आपके फायदा हो सकेला। बसरते 2 बात का ध्यान रखें, एक तो ये कि अच्छे नस्ल का कुत्ता ले आए, प्योर नस्ल हो के, दूसरी बात कि ओके रख रखाव में, ओके टीकाकरण में, ओके कृमिनाशक दवाई देने में, ओके खान पान में जैसे बच्चन खाती करेला वैसे सावधानी बरती। तो ये व्यवसाय नया व्यवसाय है और लोग इनमें जुड़ल चाहत बाटे, लोग खरीदल चाहत बाटे, नया व्यवसाय बा, ये खूब चली।
5: कुत्ता पालन के व्यवसाय के रूप में कैसे कल जा, इस बारे में डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी आप इतना निम्न जानकारी देली, एक खरतीन आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
6: धन्यवाद।
4: खेती किसानी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, विषय था कुत्ता पालन व्यवसाय के रूप में। बातचीत कर रहे थे डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव से, केसी चंद।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे क्रमशः अंग्रेजी और हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: The meeting is being viewed as extremely significant in political circles. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
1: Meanwhile, in connection with the murder of a BJP MLA Shubhendu Adhikari's close aide, the state police have arrested three individuals. Police also formed a seven-member special investigation team, SIT. It will work under the supervision of the IG of CID. Its members will include officials from CID, SDF and the state police's intelligence branch. Last night, miscreants shot dead Shubhendu Adhikari's aide, Chandranath Roth. The Director General of Police visited the crime scene last night itself. Later, bullet casings were recovered and the investigation was launched immediately. Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandavia launched a nationwide annual health checkup initiative for workers aged 40 years and above under the new labour codes today. Launching the initiative at the Employees State Insurance Corporation, ESIC, Medical College and Hospital in New Delhi today, the minister said respect for the country's workforce and youth power has increased significantly over the last 12 years under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He said the government has been making continuous efforts to create employment opportunities and as a result, the unemployment rate has declined to around 3.2%.
2: Around 30 crore people were covered under social security schemes a decade ago, and the number has now risen to 94 crore. The coverage under ESIC has more than doubled over the decade from 7 crore people to 15 crore. The government has focused not only on providing jobs, but also on ensuring social security for the middle class and economically weaker sections.
3: 4 crore logo ko social security ki coverage mil raha hai.
1: U.S. President Donald Trump has reportedly halted a planned naval operation to escort ships through the Strait of Hormuz after Saudi Arabia refused to allow American aircraft involved in the mission. Russia has warned of retaliatory strikes on Kiev if Ukraine attempts to disrupt Victory Day celebrations on the 9th of May. The Russian Defense Ministry said foreign diplomatic missions and international organizations have been advised to evacuate their staff and citizens from Kiev as a precaution. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will face Royal Challengers Bengaluru today at Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Khana Cricket Stadium, Lucknow. The match will start at 7:30 p.m. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahe, South Interior, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. The Met Department said thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are expected over Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh and Goa till tomorrow. Similar conditions will also prevail over Madhya Maharashtra, Madhya Pradesh, Marathwada, Andaman and Nicobar Islands and northeastern states of the country tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi hails first anniversary of Operation Sindoor, reaffirms India's commitment to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary expands his cabinet. 32 ministers, including Nitish Kumar's son, take oath as new ministers. Hectic Pali is underway to form governments in Tamil Nadu and Kerala. Government launches nationwide annual health checkup initiative for workers aged 40 years and above. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to face Royal Challengers Bengaluru in Lucknow this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
4: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath main Kanaklata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक क्षण बताया जब भारत ने शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतिहास में इस दिन को भारतीय सशस्त्र सेना की ताकत और उसके सटीक निशाना लगाने की क्षमता तथा देश की खुफिया एजेंसियों की सूझबूझ के लिए जाना जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौतियों का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है।
4: भारतीय सशस्त्र बलों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। इस अभियान में सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज जयपुर में भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडरों का संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान दृढ़ संकल्प के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब सिर्फ एक नारा मात्र नहीं रह गया है। श्री घई ने बताया कि भारत के 65% से अधिक रक्षा उपकरण स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि भारत के सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। उपराज्यपाल ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशभक्ति दर्शाने वाली रंगोली बनाई। देशभक्ति के विषयों और राष्ट्रीय प्रतीकों से सजी इन रंगोलियों को एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया। इसमें स्थानीय निवासी और महिला प्रतिभागी शामिल थीं। आज के ही दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने अत्याधुनिक मिसाइलों, ड्रोन तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी का उपयोग करके ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था।
6: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
7: विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीते, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए ना प्रीति। जी श्रोताओं, बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि भय के बिना प्रीति संभव नहीं होती। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत साहस और शौर्य के प्रतिमान ऑपरेशन सिंदूर में। जब भारतीय सैन्य बलों के रणबांकुरों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों और आतंकी नेटवर्क की जड़ों को हिलाने वाली सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। पिछले वर्ष 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान में करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे। सिंदूर नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर सम्मान, सुरक्षा और अस्मिता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी दक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता को प्रदर्शित किया। ये अभियान भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। तस्मात् मुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुण भुजंगक्ष्व राज्यम समृद्धम मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन।
6: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
4: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जेडीयू के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री है। मंत्रियों ने पहले 5-5 के समूह में और फिर 6-6 के समूह में शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। जेडीयू के कुल 15 मंत्री हैं, जिनमें से 13 ने आज गांधी मैदान में शपथ ली। श्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अप्रैल में सम्राट चौधरी के साथ शपथ ली थी और उन्हें उप मुख्यमंत्री नामित किया गया था। 243 सदस्यीय विधानसभा में 89 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी है। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। श्री विजय ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। कल उन्होंने पार्टी विधायकों की सूची और कांग्रेस का समर्थन पत्र राज्यपाल को प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत दिखाने के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसी के नेता थिरुमावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद श्री विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरल में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। उनके पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि केरलम में नए मुख्यमंत्री का नाम पार्टी आलाकमान तय करेगी। हालांकि आज तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। कांग्रेस के पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ व्यक्तिगत बैठकें कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों का उद्देश्य सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के विचारों को जानना और उनकी मंशा को दल के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना है। राज्य में मौजूदा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री का नाम रविवार तक तय होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
4: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविंद्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
9: बंगाल के नया मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर चल रहे आपकालों पे विराम लग सकता है। उस दिन शाम 4 बजे न्यू टाउन के विश्व बांग्ला कॉन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधानमंडल दल की पहली बैठक बुलाया गया है। उसी बैठक में

0: अनौपचारिक रूप से विधानमंडल दल की नेता का चयन हो सकता है, अर्थात बंगाल का नया मुख्यमंत्री के ताज किसके सर सजेगा, इसके संकेत इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से मिल सकता है। राजनीतिक महल की नज़र एक और बात पर भी टिकी हुई है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के चयन के लिए इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कलकत्ते में मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेतृत्व चाहते हैं कि नेता के चयन सर्वसम्मति से हो, साथ ही सरकार गठन के पहले विधायकों को एकजुट रखने का संदेश भी देना चाहते हैं दल। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे कभी नहीं झुके। इस बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में राज्य पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का भी गठन किया है। कल रात हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी तथा अन्य राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के दौरान लागू आचार संहिता को हटा दिया गया है। आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान होने के कारण वहां आचार संहिता लागू रहेगी। फलता में मतदान 21 मई को और मतगणना 24 मई को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
2: आज से एक दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
1: अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे नेपाली कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से।

Onika.

0: आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे सैनिकों को समर्पित हमारा अगला कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: संदेश टू सोल्जर्स।

हर वो सिपाही, हर वो अफसर जो मां भारती की उस सरहद की रक्षा कर रहा है। आसमान में, जमीन पर, वो चांद सितारे हमारे, वो धरती मां का, मिट्टी का वो लेप, और उसी लेप के बीच में वो भावनाएं तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। संदेश टू सोल्जर्स एक ऐसा शो है जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हिंदुस्तान की फौज के उन सितारों से, सुसज्जित अफसरों से, उन फौजी भाइयों से जो अपना परिवार पीछे छोड़ के आपके परिवार को सुरक्षित रखने का बीड़ा उठाते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे ही एक जाबाज अफसर मौजूद हैं, मेजर एस के यादव, जिन्होंने 15 साल की उम्र में एनडीए ज्वाइन की और उसके बाद 14 से ज्यादा साल उन तमाम जगहों पर भारत मां की रक्षा की सेवाएं दी अपनी। हमने कई जाबाज अफसरों और सिपाहियों के साथ आपकी मुलाकात कराई है, लेकिन आज हम टैंक रेजिमेंट की बात करेंगे। टैंक के अंदर की वो जिंदगी, टैंक का वो लोहा जो टक्कर लेता है दुश्मनों से, टैंक रेजिमेंट की तैयारी, उसका फौलाद आज हम सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स में।

0: आइए मुलाकात करते हैं यहां मेजर एस के यादव के साथ। स्वागत कर रहा हूं सर, और पूरे हिंदुस्तान का ये नमस्कार, ये सलूट स्वीकार कीजिए।
1: शुक्रिया, थैंक यू।
0: कैसे हैं सर आप?
1: एब्सोल्युटली फाइन, फर्स्ट क्लास।
0: आज हमने आपको सिविलियन ड्रेस में बुलाया, लेकिन जज्बा वही है जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जो ताकत है, भारत माँ की वो ड्रेस आपकी।
1: बिल्कुल, वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, एज दे से, यू नेवर लीव द आर्मी। एक बार आप आर्मी ज्वाइन कर लें तो एक फैमिली बन जाती है
0: जी,
1: और आप चाहे रिटायर हो जाएं, सर्व कर रहे हों, वो पूरी फैमिली एक जैसी होती है। टिल यू रीच योर लास्ट स्टेज, द होल फैमिली, योर रेजिमेंट इज विद यू इन गुड एंड बैड टाइम्स। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटिफुल इंडियन आर्मी।
0: आप तो टीनेज में ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ जुड़ गए। इंडियन आर्मी,
1: मैं वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर्स था। फर्स्ट अटेम्प्ट एनडीए में चले जाएं आप हमारे टाइम पे, तो आप 15.5 साल की उम्र में आप एनडीए जाते हैं, आपकी दाढ़ी भी नहीं हुई होती, फर्स्ट टाइम शेव होता है वहाँ पे जाके। तो
0: रैगिंग हुई थी सर आपकी?
1: बहुत।
0: उसके बारे में
1: याद है,
0: 15 साल की उम्र में सर फौज में चले गए आप, और रैगिंग तो हुई होगी।
1: रैगिंग की वजह से मैं कहूँगा आई शुड बी थैंकफुल ऑन द हाइंड साइट, क्योंकि वो रैगिंग नहीं, हमको वो स्ट्रेंथ, हमको वो ताकत, हमको वो निश्चय दिया है जो हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाया, वो एक फाउंडेशन बन जाती है।
0: ओके,
1: और वो फिर फॉर लाइफ टाइम आपके साथ रहती है वो।
0: ओके,
1: और वो बॉन्डिंग जो होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी में, वो रगड़ा के साथ ही होती है।
0: ओके,
1: बेसिकली रगड़ा होता है, एंड देयर इज लॉट ऑफ एकेडमिक्स, ऑफ कोर्स वी हैव ए डिग्री फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी,
0: ओके,
1: इन बीएससी एंड बीए। अदर देन दैट द सब्जेक्ट्स आर ऑल मिलिट्री साइंस, मिलिट्री ज्योग्राफी, एंड देयर आर फील्ड एक्सरसाइजेस। लेकिन हम जो एनडीए से जो होते हैं, वी आर बॉन्डेड सो वेल। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम भी बॉन्डेड है।
0: ओके,
1: और अभी भी हम लोग रिटायर हो चुके हैं, पीपल माय कोर्समेट्स हैव बीन जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, बट वी स्टिल रिमेन एंड टॉक लाइक एज इफ वी वर इन एनडीए।
0: आपने व्हाट्सएप का नाम लिया, तो आज एक बार फिर से अपने श्रोताओं को बता दूं कि हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है, आप उसके साथ, उसके जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9868107070, 9868107070। कोड वर्ड्स कुछ ऐसे होने चाहिए सर कि जल्दी समझ में आ जाए। आपको 15 साल की उम्र में किसने प्रेरित किया कि आप फौज में जाइए, एनडीए में जाइए?
1: देखिए, मेरे फादर एयरफोर्स में थे
0: जी,
1: और हम लोग एक फौजी फैमिली कह लीजिए आपको। मेरी सिस्टर आर्मी में डॉक्टर थी, वो उन्होंने शादी भी एक आर्मी ऑफिसर से की, जो कि एज ए आर्मी कमांडर जनरल रिटायर हुए हैं।

0: हमारे टाइम पे फौज के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था हमारी फैमिली में.
1: ओके, फौज में ही जाना है.
0: शुरू से ही एनडीए की तैयारी करनी है और यूनिफॉर्म पहननी है, क्योंकि फादर को देखा था यूनिफॉर्म में. और कोई कुछ उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं.
1: मदर तैयार थी कि फौज में जाइए, इतने सारे फौजी घर में. बोला नहीं उन्होंने, ये बच्चा भी जाएगा वहाँ.
0: उनके हस्बैंड भी थे फौज में. उन्होंने फौज के बाहर फ्रेंकली कोई लाइफ ही नहीं देखी हमने. हमारा जो फौजी कंटोनमेंट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो ए क्लोज निट फैमिली. सारा सेल्फ सफिशिएंट होते हैं वहाँ पे. फ्रॉम ऑफिसर्स मेस टू टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल्स, योर मूवी थिएटर, एवरीथिंग इज सेल्फ सफिशिएंट. यू डोंट रियली हैव टू गो आउट इन स्मॉल लिटिल स्टेशंस टू द सिविलियन एरिया.
1: सो इज दैट अ एडवांटेज और You think you miss something अगर civilian area में नहीं जा रहे, कुछ ऐसा?
0: नहीं, ऐसी something? कोई बात नहीं है. Actually, most of the cantonments or army stations are in the field areas. So, field area में तो you have to be self-sufficient because आपको कुछ मिलता नहीं है इतना जो आपको चाहिए, चाहे राशन हो, चाहे जो एंटरटेनमेंट चाहिए वो तुम्हारे आस पास ही होनी चाहिए.
1: जी.
0: मेट्रो सिटीज में दूसरी बात है.
1: ओके.
0: We have, of course, approach to malls and cinema halls and so on. कभी कभी आते हैं फील्ड में, अगर आप पोस्टिंग कर लें तो अगली पोस्टिंग मोस्ट प्रोबेबली टाउन में दे देते हैं उसको थोड़ा रेस्ट देने के लिए.
1: ओके. मुझे ये बताइए कि आपने अपने फादर के साथ, आपके फादर की तो पोस्टिंग होती रहती होगी, जब वो एयरफोर्स में थे तब आप ज़्यादा स्टेशंस में गए, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग सिटी, लाइफ स्टाइल अलग, भाषा अलग, खान पीन अलग, पढ़ाई भी अलग हो गई होगी.
0: यस, बिल्कुल सही बात है. ये एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी, बट आई टेक इट एज एन एडवांटेज बिकॉज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज दैट यू एक्चुअली कम टू सी सो मेनी प्लेसेस, अ न्यू प्लेस एवरी टू इयर्स, थ्री इयर्स.
1: जी.
0: And I really love that. And actually, very frankly speaking, I still love to travel because of that. Perhaps in, you know, thing which I've gone through. And आफ्टर ए वाइल मेरे फादर ने सोचा भाई बहुत घूमना हो गया बच्चों को, तो मुझे हॉस्टल में डाल दिया, ए फोर स्कूल में, सुब्रोटो पार्क दिल्ली में, बोर्डिंग स्कूल.
1: टैप्स कहते थे उसे. टैप्स.
0: अब टैप्स हो गया.
1: आपको और मेरा एक कनेक्शन है. एफसीएस
0: होता था.
1: ओके.
0: सो उसमें बोर्डिंग स्कूल में डाला तो डिसिप्लिन और बढ़ जाता है, एनडीए की तैयारी हो गई. सो दैट इज हाउ द एकेडमिक्स वॉज. Luckily, I went through the NDA exam in the first attempt.
1: जी.
0: And NDA चले गए.
1: और हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आप टैंक रेजिमेंट के साथ जुड़े, T-72 टैंक के बारे में हम बात करते हैं, अहमदनगर में. आपकी पहली पोस्टिंग गुजरात में थी?
0: नहीं, पहली पोस्टिंग हमारी रेजिमेंट में होती है.
1: जी.
0: सबसे पहले, उसके बाद वहाँ 6 महीने बिता के हम लोग एक यंग ऑफिसर्स कोर्स करते हैं.
1: okay.
0: जो हमारा टैंक्स का कोर्स अहमदनगर में होता है.
1: okay.
0: तो वहाँ पे हमको एक्चुअली रियली टैंक के बारे में पूरा पता चलता है, उसकी ट्रेनिंग, फायरिंग, उसका डीएनएम जो होता है, ड्राइविंग, मेंटेनेंस, गनरी, उसकी रेडियो कैसे चलती है.
1: okay.
0: और उस जमाने में जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमारे पास विजयंत होते थे.
1: yeah, विजयंत.
0: और उसके बाद देन T-55 से हम T-72 में ग्रेजुएट हुए.
1: जी.
0: जिस पर मैं इंस्ट्रक्टर भी था. मैंने अहमदनगर में आई वॉज इंस्ट्रक्टर ऑन T-72 टैंक. एंड अब तो T-90s एंड अर्जुन आ गए हैं, उसके भी अपग्रेडेड
1: वर्जन है. सर, टैंक के बारे में मैं जानना चाहूँगा क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं दे वुड ऑल्सो वॉन्ट टू लिसन कि टैंक का पहला जब आप देखते हैं, एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो फौलाद लगता है पूरा, है ना? सो यू वेंट देयर बाय चॉइस और
0: My first choice in the Indian Military Academy was the Tank Regiment.
1: Okay.
0: And I joined a regiment called the Deccan Horse.
1: Deccan Horse.
0: जो कि 1790 में raise हुई थी.
1: Wow.
0: As the private army of the Nizam of Hyderabad.
1: All right.
0: And then it went through various transformation and it became Royal Deccan Horse and then the Deccan Horse after 1947. And we had a Muslim squadron in before 1947.
1: Achha.
0: After partition, that squadron went into Pakistan in a regiment called Province Horse.
1: Okay.
0: For quite some time, actually, strangely, we used to have a common newsletter also, I think, where Province Horse sort of became a sister regiment.
1: Okay.
0: Though on the other side of the border.
1: Okay.
0: And we had one officer also till quite late going to London, UK to attend the British officers who used to host their fathers, or they themselves served in the Royal Deccan House or the Province House. So
1: sir, quite a Deccan House ke saath judne ke baad wo jazba kaisa aaya, kuch wo andar ki aapke andar ki bhavna, you want to share with us?
0: Yes, I was always a cavalry man. Hum black berets pehante hain, kali topi
1: ji,
0: and hum log one of the two fighting arms hai. Ek infantry hoti hai, ek tanks hote hain. जो इन्फेंट्री होती है वो बेसिकली जब लड़ाई होती है तो अगर पहाड़ों में है तो इन्फेंट्री आगे होती है, टैंक्स नहीं जा सकते. लेकिन पंजाब या राजस्थान जो प्लेन्स में होता है तो सबसे पहले जब लड़ाई शुरू होती है टैंक्स आगे जाते हैं, वो लीड करते हैं, दे ऑक्यूपाई ए पीस ऑफ लैंड एंड देन द इन्फेंट्री गोज एंड ऑक्यूपाइज इट. ये अब हमारा हुआ एंड यू गो फॉर योर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. So that is what the tanks do. It's a tough life. गर्मी होती है, अंदर बैठने की बहुत कम जगह होती है.
1: हाँ, वो थोड़ा हम जानना चाह रहे थे कितनी जगह होगी सर लगभग.
0: आपने पता नहीं वो अभी मूवी आई थी 21 करके जो पूना उसकी अरुण खेतरपाल पर,
1: जी, जी.
0: तो उसमें टैंक कमांडर की एक ही सीट होती है, ये ऊपर का पोला होता है, उसमें बैठ के जाना है, वहीं सोना है, अपने सब कुछ वहीं करना है.
1: ओके,
0: एक स्ट्रेंज बात मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ कि विजंत टैंक में बहुत जगह होती थी. तो हम लोग जो जवान जब ड्राइवर एक्सरसाइज कर रहा होता तो आपने रेस्ट करना है, आप नीचे स्लीपिंग बैग लगा के सो भी सकते थे.
1: अच्छा,
0: लेकिन जो रशियन टैंक है वो बड़ा कॉम्पैक्ट होता है,
1: विच इज T-92
0: T-72 T-55 T-54 होते थे उसके पहले, अब T-90s कॉम्पैक्ट टैंक. उसमें एक गनर होता है, एक कमांडर होता है, एक ड्राइवर होता है.
1: उसके पीछे भी कोई वजह है कि आप अंदर उतना स्पेस नहीं दे रहे हो?
0: नहीं, उसमें बिकॉज स्पेस इसलिए नहीं है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर गैजेट्स इन दैट. बहुत सारे गैजेट्स हैं, यू नो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, यू नो, गनरी के गैजेट्स हैं, रेडियो के गैजेट्स हैं, ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस के गैजेट्स हैं. सो यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम. देयर इज लॉट ऑफ एमिनेशन स्पेस दैट इज केप्ट टू लोड एंड रीलोड द बैरल.
1: राइट, तो आज के टैंक्स भी डिजिटाइज हो गए हैं
0: सॉर्ट ऑफ. डिजिटाइज तो कंप्यूटर तो नहीं है अंदर एज फार एज आई नो नाउ.
1: देखिए, सिविलियन हूँ, सिविलियन वाले सवाल पूछूंगा.
0: हाँ जी.
1: क्या पता आपके पास एक जीपीएस है, आपको अपनी लोकेशन, अपना रूट आप देख रहे हो, यू नेवर नो.
0: यस,
1: अंदर आपके पास जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो शायद बदल गई हो. इट्स मोर टुवर्ड्स कुछ ऐसा जानना चाह रहा
0: हूँ. के पास पहले एक नेविगेशन सिस्टम होता था क्वाड्रात.
1: ओके,
0: वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम था, खाली कमांडिंग ऑफिसर्स के टैंक में लगा होता था.
1: जी,
0: लेकिन अब तो यू नो जीपीएस है तुम्हारे पास. इनफैक्ट आई थिंक एक्चुअल वॉर, टैंक्स की वॉर रियली स्पीकिंग हुई नहीं है.
1: ओके,
0: लेकिन नेविगेशन इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम नाउ एज यू नो, यू हैव इवन गूगल मैप्स.
1: वही मैं जानना चाह रहा था आपसे कि पर आप सोचिए, एक अगर मैं सिविलियंस के लिए थोड़ा समझना चाहूँ, सोचिए हमारे टैंक्स हैं, एक समय में अगर 10 टैंक्स अटैक के लिए जा रहे हैं, आपने सारा जो प्लान है, आपका जो मिशन है, वो सब कैलकुलेटेड है.
0: करेक्ट.
1: पर किसी वजह से आपको थोड़ा सा डाइवर्ट होना पड़ा, चार टैंक्स इधर गए या उधर गए, या आप ऐसे माहौल में फंस गए जहां आपके यू नो व्हाट यू प्लान्ड कुड नॉट हैपन, नाउ यू हैव टू फेस. सो हु गाइड्स द रूट, वहां आप कैसे वो गाइडेंस लेते हैं?
0: सी, देखिए ऐसा होता है, पहले तो ये सारी डिस्कशन सैंड मॉडल पे हो जाती है.
1: ओके,
0: कि क्या करना, कैसे करना है, कहाँ जाना. देर इज हमें मैप्स, हमारे जमाने के टाइम में मैप्स इशू होते थे, ग्रिड मैप्स, और उस पर हम लोकेशन कर देते अपने ऑब्जेक्टिव्स और कैलकुलेट कर लेते थे कितना टाइम है, किस स्पीड पे कितने टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए.
1: जी,
0: फिर हमारे ईच रेजिमेंट में एक तीन स्क्वाड्रन होते हैं और हर स्क्वाड्रन में ट्रुप्स होते हैं, तीन ट्रुप्स.
1: ओके,
0: हर ट्रुप में तीन टैंक होते हैं. तो यू नो, सो बेसिकली यू हैव ए स्क्वाड्रन कमांडर, ए ट्रुप लीडर जो सबसे जूनियर होते हैं, देन यू हैव ए स्क्वाड्रन कमांडर एंड देन यू हैव द रेजिमेंटल सीओ. दे ऑल आर ऑन अ रेडियो नेट टुगेदर.
1: ओके,
0: सो जो आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं वो आपको इंट्रा नेट पे सारी इंस्ट्रक्शन सेम मिल रही है. अल्फा स्क्वाड्रन आप लेफ्ट जाइए, चार्ली स्क्वाड्रन आप राइट जाइए, ब्रावो स्क्वाड्रन होल्ड करिए यहाँ पे, होल्ड फायर, ये सारी होती है. तो सीओ होता है वो एक दूसरे नेट पे होता है जो उसके बॉस के साथ होता है, ब्रिगेड कमांडर है और जीओसी के साथ, उसको वहां से इंस्ट्रक्शन आ रही है. वो इंस्ट्रक्शन हमें नहीं मिलती है.
1: ओके,
0: हम लोग अपने रेजिमेंटल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं जो सीओ ऑर्डर करता है कि ठीक है राइट फ्लैंक से फायर आ रही है, चार्ली स्क्वाड्रन आप राइट फ्लैंक पकड़िए, अल्फा स्क्वाड्रन आप लेफ्ट फ्लैंक।
1: स्पोर्ट्स वाली लैंग्वेज आ रही है, राइट फ्लैंक लेफ्ट फ्लैंक, फुटबॉल वाली।
0: इनफैक्ट दैट इज द लैंग्वेज यूज्ड आल्सो इन द आर्मी।
1: अच्छा,
0: देयर फ्लैंक्स आर देयर। देखिए बेसिक वॉर का टेक्निक होता है कि अगर एनिमी फायर कर रहा है तो आपको एनिमी का हेड डाउन कर रखना है।
1: ओके,
0: क्योंकि अगर आपने अटैक करना है उसके पहले एनिमी को बोलना है भाई यू मेक हिम बिजी एल्सवेयर, यू टेल योर आर्टिलरी कि वो गोले बरसाए उनके ऊपर, वो ट्रेंचेस में है जहाँ पर भी है या टैंक्स में, और यू टेल योर एयरफोर्स टू बम्बार्ड ए पर्टिकुलर टैंक सेक्शन,
1: ओके,
0: सो दैट द एनिमी इज बॉग्ड डाउन एंड इट इज बिजी बिकॉज इट्स डाउन बिकॉज इट इज बीइंग बम्बार्डेड फ्रॉम ऑल ओवर एंड दैट इज द टाइम यू हैव योर already secret instructions to go from the left or the right or from the rear and attack the enemy. You don't want to face an enemy which is up and about and free to fire at you.
1: शायद यही guns जो हैं कारगिल में भी कुछ ऐसे ही हो रहा था।
0: हाँ,
1: उसके बारे में बात करेंगे सर, क्योंकि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेने का मन कर रहा है। आप लोगों की तरफ से ये गीत हमारे सिविलियन भाइयों के लिए।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जॉली और हमारे साथ आज के जो मेहमान है संदेश टू सोल्जर्स में वो है मेजर एसके यादव। आपका निक नेम मिकी है,
1: करेक्ट,
0: एंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट?
1: क्लास टू में मेरी स्कूल टीचर ने मेरा नाम रख दिया था मिकी माउस और दैट नेम स्टक। वेरी फनीली आमटपोर में अगर आप किसी को बोलोगे डू यू नो मेजर स्वदेश कुमार यादव, दे विल लुक ए ब्लैंक, बट इफ यू टेल देम यू डू नो मेजर मिकी यादव, दे विल ऑल नो।
0: ओह वंडरफुल, रियल मेट्स आप लोग रहते हैं फौज में, है ना सर?
1: एब्सोल्युटली।
0: हम लोग टैंक्स के बारे में बात कर रहे थे, टैंक की लाइफ। आपने कहा कि अंदर की लाइफ लगता है कि टैंक जा रहा है, टैंक ने फायर किया, ये हुआ हुआ, लेकिन अंदर की लाइफ उतनी आसान नहीं होती है, आप बिजी रहते हैं, है ना?
1: 55 डिग्रीज तक हीट में, समर्स में टेम्परेचर जाता है, उसके अंदर रहना पड़ता है। और एक्चुअल वॉर सिनेरियो में तो आपका कपोला ऊपर से बंद है, अगर सीन है,
0: ओके,
1: एंड यू आर एक्चुअली लुकिंग थ्रू अ सॉर्ट ऑफ ए पेरिस्कोप,
0: या
1: उसमें से आप देख रहे हैं एनिमी को। सो इट्स अ वेरी टफ सॉर्ट ऑफ ऑपरेशनल लाइफ इन द टैंक, इनसाइड द टैंक।
0: ऑलराइट, हम जब 26 जनवरी की परेड में देखते हैं कि टैंक्स आ रहे हैं और जो भी कमांडर हैं वो सल्यूट ले रहे हैं माननीय राष्ट्रपति जी से, लेकिन टैंक चलाने वाले कोई और हैं, तो वो उसी पेरिस्कोप से रूट देख रहे हैं?
1: हाँ, इनफैक्ट आई मस्ट इन्फॉर्म यू दैट मैंने वन ऑफ दिस परेड्स कमांड की है।
0: ओह वाओ, इट्स
1: कॉल्ड अ कॉम्बैट टीम, एज ए यंग मेजर था तब मैं
0: जी,
1: तो मैंने रिपब्लिक डे परेड पे आई गेव द सल्यूट टू द प्रेसिडेंट।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बेसिकली एक गनर होता है और जब सल्यूटिंग डाइस पे जाते हैं तो गनर को इशारा मिल जाता है कब उसने गन को राइट टर्न करना है और डिप करना है, विच इज द सल्यूट, रेस करना है, सामने जाना है और कैरी ऑन करना है। तो दैट इज द ऑर्डर, दैट इज ऑल द गनर्स टेक्निक, द कमांडर हैज टू ओनली सल्यूट विद हिज हैंड।
0: सब बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना, गूज़बम्स आते हैं, क्योंकि 26 जनवरी की परेड पर मैं भी जो आंखों देखा हाल है वो हम लोग कमेंट्री कर चुके हैं वहाँ पे, बट जब आप लोग टैंक्स लेके वहाँ जाते हैं ना, हम लोग को बड़ा बहुत गौरवान्वित फील करते हैं कि हिंद की सेना जा रही है ये।
1: हाँ, टैंक एक सिंबल बन गया है सॉर्ट ऑफ आर्मर्ड आर्मी का, जो आर्मर्ड विंग है उसका, जो तोपखाना कह दीजिए
0: जी,
1: तो इट इज बिकम अ सॉर्ट ऑफ, यस इट इज डिवेस्टेटिंग एंड इट इज, आई हैड ए गुड टाइम इन माय टैंक रेजिमेंट, बिकॉज फील्ड फायरिंग होती है, हमारी प्रैक्टिसेस होती है रेंजेस पे, उसमें तो काफ़ी कुछ ट्रेनिंग होती है उस पर, दैट इज हाउ यू सॉर्ट ऑफ टैंक वॉरफेयर इज ऑपरेटेड।
0: और वो जो आपकी ट्रेनिंग है दैट इज a tough training, it is not like chalo yaar aao practice karte hain, no, it's like that's the real war
1: real
0: situation,
1: real life scenario war situations create hoti hain
0: ji
1: Rajasthan deserts mein, aur wahan jaakar hum log practice karte
0: hain। Okay, सर मैंने कुछ मैसेजेस मंगाए हैं, कुछ बहुत देश प्रेम के साथ, बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं वो मैसेज भेज रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि अहमदनगर से एक मैसेज आया है और वो कह रहा है मेरा नाम गजानन शिंदे है, गांव करजत जिला, और उसका नाम अभी अहिल्या नगर कर दिया गया है। सर ने अभी अहमदनगर की बात की तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। आप शायद इनको तो गजानन शिंदे जी को नोन टू यू
1: नॉट नोन टू मी बट यस देर आर लॉट ऑफ शिंदे इन दैट रीजन एंड अहमदनगर का जो आमटको स्कूल सेंटर एंड स्कूल है
0: जी,
1: वो एक सेंट्रल पॉइंट है, मेनली उसी की वजह से वो टाउन ग्रो किया है एक तरह से।
0: ओके,
1: जो सारी ट्रेनिंग जो हमारी होती है, चाहे रेडियो की, ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस की, गनरी की ट्रेनिंग, टैक्टिकल ट्रेनिंग, वो सारी जो बेसिक्स होती है वहीं पे हम लोग सीखते हैं
0: एंड एवरीवन नोज अबाउट इट, देयर इज नो सीक्रेट इन इट, क्योंकि आप एयर पे बोल रहे हैं तो मैं अगर अहमदनगर के लोकेशन भी बता दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं।
1: इट्स अ पीस स्टेशन एंड इट इज बेसिकली ट्रेनिंग फॉर ट्रेनिंग, हम लोग जाते हैं
0: शिरडी के पास जो अहमदनगर है, आप उसकी बात कर रहे हैं। ऑलराइट, आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे वहां, सर वो जो आप फायर करते हैं जब टैंक से, उसकी एक्यूरेसी पे तो बहुत काम करते होंगे आप लोग।
1: हाँ, तो उसी के लिए हम फील्ड फायरिंग ट्रेनिंग करते हैं
0: जी,
1: तो कि हमारी रेंजेस हैं वेरियस प्लेसेस पे, बबीना में है, झांसी के पास, तो वहाँ पर जाके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, गनरी देखते हैं पूरी एंड उसमें एक चीज होती है, आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि जब मैं यंग ऑफिसर था तो एक एम ऑफ होता है, मैं एक एक्सरसाइज में था कॉल्ड ब्रास टैक्स, जो ऑपरेशनल था, ऑलमोस्ट वी हैड गॉन अक्रॉस एंड आई वाज कमांडिंग ए स्क्वाड्रन, एंड वहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे सुबह सुबह रात को हमें ट्रैवल, हम खाली रात को अपने कैमोफ्लाज नेट निकाल कर रात को घूमते थे और अपनी लोकेशन चेंज करते थे एवरी नाइट, क्योंकि हम लोग स्पॉटेड हो जाते थे और डे टाइम में अपने कैमोफ्लाज नेट लगा के चुप के बैठते थे. तो डे टाइम में हम सोते थे, रात को जगते थे.
0: ये कौन सी लोकेशन थी सर, अभी बताना ठीक है?
1: समवेयर इन द डेजर्ट बॉर्डर, उसके जैसलमेर के आगे आसपास बॉर्डर के टाइम
0: जी.
1: तो वहाँ पे मुझे याद है सुंदर जी आर्मी चीफ थे और मैं चाय वगैरह, चाय नहीं पी रहा था, सॉरी 11 बज गए थे, 10-11 बज गए थे. सो
0: मत बताइए क्या पी रहे थे रात के 10-11 बजे.
1: दो तीन हेलीकॉप्टर्स ऊपर घूम रहे थे. तो उस जमाने में ये जहरो वगैरह इतना, नेविगेशन की जो आप बात करें इतना नहीं था. जो पायलट्स होते थे वो अपने थाइस पर एक मैप रखते थे और उसको
0: आजकल भी रखते हैं.
1: हाँ, रखते हैं, वो
0: हम लोग रखते हैं.
1: डेजर्ट में बड़ी मुश्किल होती है नेविगेशन, कई बार खो जाते थे कि भाई कहाँ जाना है. तो हम लोग अपनी टोपी शोपी लाते थे, वो नीचे आ जाते थे, निकलते थे. एनडीए का ही निकला कोई कोर्स हेलीकॉप्टर. तो एक हेलीकॉप्टर नीचे निकला, उसमें से निकले सुंदर जी एंड एक थे जो हमारे तब के अरुण सिंह जी, राज्य रक्षा मंत्री. तो वो आ गए और सुंदर जी मुझे पहचान गए क्योंकि मैं एडीसी था आर्मी चीफ का. तो उसने बोला, मिकी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, सर मैं आई एम कमांडिंग स्क्वाड्रन हियर. तो उन्होंने बोला, आप इनको अरुण सिंह जी को ना टैंक के बारे में बताइए. तो मैं इंस्ट्रक्टर था, तो मैं टैंक पे उनको ले गया ऊपर. बट आई वॉज सरप्राइज दैट ही हैड सो मच नॉलेज अबाउट दैट टैंक. तो अभी आपने एमिंग की बात की, तो उन्होंने मेरे से एक चीज पूछा कि आप अगर एम ले रहे हैं एनिमी के टैंक के ऊपर तो आप सीधा फायर करते हैं के थोड़ा? तो मैंने कहा नहीं सर. उनको मालूम था एक चीज होती है एम ऑफ. अगर यहाँ से आप फायर कर रहे हैं 1 किलोमीटर दूर
0: जी,
1: तो आप सीधा फायर करेंगे तब तक टैंक निकल जाएगा. तो आपको एक एम ऑफ लेना पड़ता है.
0: गॉट इट.
1: कि आपने उस पॉइंट पे लाना है और कैलकुलेट करना है कि वो टैंक उसी पॉइंट पे यूं ऐसे तभी आएगा.
0: मूविंग व्हीकल पे आपको कैसे स्ट्राइक करना है.
1: सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड वेरी टेक्निकल एंड आई वुड कॉम्प्लीमेंट दैट टाइम आरआरएम. आई मीन ही हैड लॉट ऑफ नॉलेज.
0: और कोई कॉम्बैट कभी मौका मिला?

0: हाँ, मुझे वैली शैली में नॉर्थ ईस्ट में मौका मिला है। एक्चुअल लड़ाई तो 71 वॉर की देखी नहीं, हम तो बच्चे थे। कारगिल वॉर तक मैंने फौज छोड़ दी थी। आई विश
1: ओके.
0: आई नॉट लेफ्ट एंड टेकन पार्ट, बट देन टैंक्स का इतना रोल नहीं था वहाँ पर।
1: पर पहाड़ों में हम लोग जब बात कर रहे थे कि जिस तरीके से शेलिंग हम लोग करते थे, आप अभी हमें टैंक्स के जब आप बता रहे थे कि किस तरीके से आप आपका जो दुश्मन है उसका हेड डाउन करने पर
0: हाँ,
1: मजबूर करते हैं, कैन
0: करेक्ट।
1: वी कम बैक टू दैट?
0: यस, सो व्हाट हैपेंस इज दैट, लेट मी टेल यू अबाउट कारगिल ऑल्सो।
1: जी
0: कारगिल में भी जो लड़ाई हुई है, ऊपर जो चढ़े हैं, जो सपोर्टिंग जो फायर्स दिए हैं वो आर्टिलरी गन्स ने दिए हैं। वो सॉफन करते हैं टारगेट को। सॉफन मतलब कि जो बंकर्स हैं ऊपर, उनके ऊपर धड़ाधड़ बहुत हैवी फायरिंग होती है, और दैट इज द ओनली वे वेयर जो इन्फेंट्री है उसको एक वर्टिकल क्लाइंब करनी है।
1: ओके.
0: तो ऊपर से तो वो शूट डाउन हो जाएंगे, तो उनका सिर नीचे रखना है, उनका ध्यान निकालना, उनको इतनी हैवी बम्बार्डमेंट करनी है कि वो खड़े होकर शूट भी ना कर पाए और हमारी फौज वहां तक पहुंच जाए।
1: ओके.
0: तो दैट इज एन अटेम्प्ट। उसमें मरते हैं और कुछ जांबाज जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं वहां जाके, और फिर हैंड टू हैंड फाइट होती है वहां पे।
1: जो कि हुआ, मतलब
0: यस
1: हमने देखा
0: यस बिल्कुल
1: वहां,
0: हुआ। यस
1: हमारे पीवीसी
0: यस
1: जो
0: यस
1: हैं
0: पीवीसी,
1: परमवीर
0: अब
1: चक्र से विजेता हमारे शो
0: यादव,
1: में भी आ चुके हैं,
0: यस यस एब्सोल्युटली।
1: संजय कुमार.
0: और यही चीज जब पंजाब साइड या प्लेन्स में होती है, वहाँ
1: जी
0: टैंक्स का रोल
1: वहाँ
0: आता है,
1: टैंक्स का रोल होता
0: क्योंकि
1: है.
0: वहाँ पे कोई चढ़ाई नहीं करनी है। वहाँ पे बैटल फील्ड आ रही है, टैंक कॉलम्स आ रहे हैं, आरटी आ रही है, आपने टेक ओवर करना है,
1: जी
0: तो टैंक्स लीड करते हैं वहाँ पे।
1: ओके.
0: और आजकल तो बीएमपी आ गई है जिसमें, और टैंक्स पर भी इन्फेंट्री को हम अपने पीछे कैरी करते हैं, तो हम आगे तक जाते हैं और टैंक्स एक्चुअली गो एंड अटैक, टेक ओवर द प्लेस एंड कैरी ऑन फॉर द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। इन्फेंट्री जो पीछे आ रही होती है बीएमपी में, वो उतरती है और फिजिकली वहाँ पहुँच जाती है पॉइंट पे, अपने ट्रेंचेस डिग करती है और वो बैठ जाती है, ये हमारा हो गया एरिया।
1: बट
0: दैट इज हाउ
1: सर,
0: इट वर्क्स।
1: आज के टाइम में, जस्ट अ लेमैन क्वेश्चन, टैंक, जहाँ पे हम मिसाइल की बात कर रहे हैं, हम ड्रोन अटैक्स की बात कर रहे हैं, तो टैंक के लिए इट्स मोर डिफिकल्ट द रेजिमेंट, और इट्स लाइक दे हैव देयर ओन वेज टू हैंडल सच
0: यू
1: अटैक्स?
0: सी, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है,
1: जी
0: दिस वॉज ए टोटली डिफरेंट ऑपरेशन। इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम वी एक्चुअली डिड नॉट रियली क्रॉस द बॉर्डर, एंड वी हैड रिमोट कंट्रोल्ड ड्रोन्स, वी सेट ऑफ मिसाइल्स विदाउट क्रॉसिंग द बॉर्डर, द एयरक्राफ्ट शॉट देयर टारगेट्स विदाउट रियली क्रॉसिंग द बॉर्डर। इट वॉज ए टोटली डिफरेंट गेम, एंड आई वुड क्रेडिट दिस वॉर अ लॉट टू द इंडियन आर्टिलरी, बिकॉज आर्टिलरी का रोल बड़ा हैवी था इधर। दे हैव दिस लॉन्ग रेंज गन्स एंड दे हैड देयर ओन टारगेट्स एंड दे वर डूइंग इट। मौका नहीं मिला ऑपरेशन सिंदूर में, शायद अगर वो और 2-4 दिन और चलती तो आर्मोर्ड और इन्फेंट्री भी अंदर जाके फिर करना पड़ता, तो वो दूसरी बात थी, लेकिन वो हुआ नहीं।
1: ओके. राइट सर, एक हमारे लिसनर हैं, एंड ही इज़ फ्रॉम तमिलनाडु, श्री रंगम राजेश, श्री रंगम तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु से लिख रहे हैं मैसेज, एंड आपको गुड इवनिंग कहते हो, कह रहे हैं कि बॉन्डेड मेजर एस के यादव सर, मिकी यादव सर, ग्रीटिंग्स टू योर बॉन्डेड
0: गुड
1: द
0: इवनिंग
1: कंपनी
0: मिकी,
1: हियर, एंड ऑफ
0: यू आर हैविंग
1: कोर्स
0: अ ग्रेट वन।
1: हम यहाँ पर उनका जो मैसेज पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं मराठा, ग्रीटिंग्स टू योर बॉन्डेड व्हाट्सएप टू एंड योर MH16 अहमदनगर अहिल्यानगर मराठा बॉन्डेड रेजिमेंट टू एंड बॉन्डेड कैवलरी कैवले यादव सर टू. आई डोंट नो वॉट ही मीन्स बाय दैट, बट समथिंग ही इज रिटन टिपिकल ऑफ महाराष्ट्र इज वणक्कम, एंड दैट इज समथिंग वेरी स्वीट.
0: यस
1: समबडी
0: यस
1: नोन
0: यस
1: टू यू?
0: यस नो, नॉट नोन टू मी,
1: ओके.
0: बट यू नो वनकम आई थिंक इज नॉट ए महाराष्ट्रियन वर्ड, परहैप्स तमिल
1: हाँ,
0: वर्ड,
1: तमिलनाडु से लिख रहे
0: बट
1: हैं
0: ही
1: और
0: हैज़ द स्पिरिट
1: सारा किया,
0: एंड
1: जय हिंद,
0: यस
1: जय
0: जय
1: महाराष्ट्र,
0: किया
1: जय
0: एंड
1: तमिलनाडु,
0: कैवलियर।
1: जय भारत, दैट्स द स्पिरिट दैट वी लिव विद, है
0: द
1: ना सर?
0: कैवलरी रेजिमेंट को ऑफिसर्स को कई बार कैवलियर बोल जाते हैं, सो
1: ओके
0: दैट इज वॉट इज मेंट।
1: ओके. सूरज जी हमें दिल्ली से कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं मैं 20 वर्ष का हूँ और सिविलियन हूँ, बहुत डिसिप्लिन रहना चाहता हूँ, कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों की बातें सुन के प्रोत्साहन मिलता है, और साथ ही साथ हम आगे बढ़ रहे हैं. सर, आपने ऑपरेशन सिंदूर की जब बात की, तो मैं फिर से जानना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा, इफ़ इट्स अलाउड टू डिस्क्लोज, हमारी टैंक रेजिमेंट एक्टिव तो थी, पर कितना, मतलब बहुत चौकन्नी भी थी, एंड इट्स लाइक
0: नो, इन इंटायर ऑपरेशन सिंदूर में
1: जी
0: ऑल आवर फाइटिंग आर्म्स, वेदर द टैंक्स इन्फेंट्री, दे वर इन ऑपरेशनल स्टेज।
1: जी
0: छुट्टी लीव वॉज ऑल कैंसल्ड, वन डिड नॉट नो।

0: विच वे द वॉर वुड गो.
1: ओके.
0: एंड इनिशियल वॉर जो शुरू हुआ है दैट वॉज ऑल एज आई सेड एन एयरफोर्स वॉर एन आर्टिलरी वॉर. द टैंक्स एंड द इन्फेंट्री वॉज नॉट यूज बट दे वर ऑपरेशनली रेडी टू गो इन शुड द ऑर्डर्स कम. And they were absolutely ready to.
1: Okay, मैं सीधे tough questions पूछता हूँ सर आपसे, क्योंकि आप tank regiment आप उसका अंग रह चुके हैं. You've headed your own group. Has it become more difficult now to step into the enemy zone इस modern era में?
0: You see, देखिए ऐसी बात है कि technology जिसके पास है, I would say he is has an upper hand.
1: Superior है वो.
0: Yes.
1: Okay.
0: So apparently the Chinese did give them a lot of technology due to which there were some early they tried to do something here and there. Turkey intervened, gave them the drones and stuff like that. But we are dekhiye technically and otherwise Pakistan is no match to the Indian army at all, and I'm saying this on air. There is no match at all. In a live war, in a conventional war today, they would not last more than 72 hours at the most. Not at all. There is no match at all.
1: Sir, हमें news on AIR के माध्यम से हमारी सरहदों के पार फीजी आइलैंड से लेकर ब्राजील, कनाडा, यूरोप, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट में सुना जा रहा है. That's a bold comment, a statement that you've given.
0: I meant every word of it. And knowing the Indian Army, the capabilities, yes, it has not been tested fully in operational Sindoor, but should it be repeated ever, I think it will come to light what the Indian Army is about.
1: Operation Sindoor hua afsos ki baat hai na sir, aur ek tarike se hum anniversary mana rahe hain. थोड़ा दुख है कि पहलगाम में वो चीज़ हुई और उसके बाद भारत ने जवाब दिया. दुख है कि हमारे को सिविलियन लाइव्स खोनी पड़ी, उसका तो दुख है. एक छोटी सी, अगर आप परमिशन दे तो एक छोटी सी झलकी ऑपरेशन सिंदूर की लेते हैं और इस छोटे से किस्से में सब कुछ समझ में आ जाएगा. और आपका जो जज्बा मैं देख रहा हूँ सर आपकी आँखों में, आह लाजवाब है सर. इसे सुनते हैं सर.
2: इंडस वाटर्स ट्रीटी ऑफ 1960 विल बी हेल्ड इन अबेयंस विद इमीडिएट इफेक्ट.
3: आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल identify, track and punish every terrorist and their backer.
4: Operation Sindoor 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था.
2: It was deemed essential that the perpetrators and planners of the 22nd April attack be brought to justice.
5: 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed.
6: These locations are Lahore, Gujranwala, Chakwal, Rawalpindi, Attak, Bahawalpur, Miano, Chor and near Karachi.
7: To target civilian population, it's extremely unfortunate.
8: Just to point out,
9: we're not going to get involved in the middle of war. That's fundamentally none of our business.
8: That terrorism and funding and backing terrorist organizations has been and was part of Pakistan's history.
10: This was time to convey some message to our adversaries.
11: We were, of course, prepared.
12: Few things have been said at the level of the Prime Minister.
13: भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा.
12: And this has never happened in the history of independence.

0: इट्स अ फनी क्वेश्चन बट आपके कुछ सुनना चाह रहे हैं ना आपसे, इसीलिए ऐसा सवाल पूछा. वर यू ऑल्सो विलिंग टू टू गो कि यार मुझे बुला लो मैं भी आता हूँ.
1: देयर एंड सर्विंग एट दैट टाइम बिकॉज बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया ने और उनके जो मारे हैं हमने एयरफील्ड्स पे ऑलमोस्ट knocking on the door of their nuclear capabilities, it's a big thing. It was a big signal given to them.
0: And that technology you are saying ki yehi superiority aap bata
1: rahe hain. Yes, okay. The Air Force has that. I mean, it was pinpoint sort of, you know, absolutely, they were knocking on the door of their nuclear storage facility, which is a big thing.
0: Okay. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारा डिफेंस भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ना. वी डिफेंडेड वेल ऑल्सो, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से अटैक नहीं है. अटैक्स तो बहुत आए लेकिन सारे विफल किए हमने.
1: एब्सोल्युटली उनके बेसिकली ड्रोन अटैक्स थे. अटैक तो क्या आया था उनका, मतलब एक आध कोई मिसाइल उन्होंने दिल्ली की तरफ भी डाला था जो कि मेरे ख्याल से मिडवे पंजाब में कहीं ऑलरेडी शूट डाउन कर दिया गया था.
0: बट हाउ डू यू नो कि वो दिल्ली की तरफ आ रहा था सर? हमारी टेक्नोलॉजी है जो मिसाइल फायर होता है उसका रूट पता लग जाता है.
1: जब एनालाइज करते हैं जो मिसाइल को तो उसकी रेंज देख लेते हैं ना. अगर लाहौर से उस एरिया से जहाँ से अगर लॉन्च किया है, अगर वो दिल्ली रेंज में है तो ऑब्वियसली इट्स ए सिटी विच इज बीइंग टारगेटेड. सो इट वॉज डाउंड, इट वॉज एब्सोल्युटली शॉट डाउन. So that's a big thing, and I think that was the only real thing which was threatening to the city. And I was very surprised that they started saying that Delhi has been bombarded and Delhi is gone and Delhi is finished. All
0: you heard that?
1: Yeah, I mean they were saying abhi Delhi pe bombarded ho gayi hai, ye bombardment ho gayi hai. I mean all false fake news.
0: Sir, hamare traffic jam mein phasenge tab unhe pata lagega ki how difficult it is to go out from here. एनीवे सर, ये तो हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की और ये चर्चा हम जारी रखेंगे.

0: आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, और बहुत ही खास हमारे साथ यहाँ पे हमारे गेस्ट हैं आज के, और वो हैं मेजर एस के यादव। और बहुत सारे लोग आपको, आपके जो कॉलीग्स हैं वो आपको मेजर मिकी यादव भी कहते हैं। ओके, आप लोगों का एक सॉलिड ग्रुप है, आपने कहा कि वी आर स्टिल बॉन्डेड टुगेदर। व्हाट्सएप का आपने कहा था कि ग्रुप है, तो इन ऑल कितने लोग होंगे उसमें?
1: एनडीए का ग्रुप है, हम लोग करीब 325 लोग थे जो पास आउट हुए थे एनडीए से। देखिए एनडीए का ग्रुप अलग है, आईएमए का ग्रुप अलग होता है, जो एनडीए के थ्रू नहीं गए लेकिन डायरेक्ट एंट्री होते हैं, तो दो ग्रुप्स हैं।
0: ओके,
1: तो एनडीए को हम बॉन्डेड बोलते हैं, बॉन्डेड ग्रुप है।
0: तो वो जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तब आप लोग कैसी बातें कर रहे थे?
1: और डिस्कशन होती थी और डिबेट्स भी, क्योंकि उसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, हम तीनों थे कोस्ट गार्ड। तो एयरफोर्स वाला अपना एक्सपर्ट बताता था, आर्मी वाला अपना, और नेवी वाला, वो जो देवर नेवी वाज ऑपरेशनली रेडी एक्चुअली फॉर द ब्लॉकेड।
0: मेरा अगला यही सवाल था कि सर आपको तो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट मिल रही होगी।
1: हाँ, ऑन द ग्रुप वॉट एवर दे आर ऑल्सो दे यूज टू प्रेडिक्ट, दे यूज टू से वॉट शुड बी डन, वॉट वॉज नॉट डन राइटली, वॉट वॉज डन राइटली, एंड वी यूज टू डिबेट ऑल दैट।
0: एंड ऑफकोर्स एक जज्बा बॉलीवुड भी तो लेकर आता है ना आप लोगों के लिए। आई एम श्योर आप गीत सुनते हैं कभी, गीत सुन के भी एक जज्बा जोश आ जाता है। हम लोगों को तो आता है, आप लोगों को भी आता है?
1: एब्सोल्युटली।
0: आकाशवाणी के साथ आपका कैसा लगाव रहा है?
1: पर्सनली मेरा फेवरेट है आपका रेनबो, बिकॉज इट गिव्स मी यू नो लॉट ऑफ रेट्रो म्यूजिक आल्सो, इट गिव्स मी ऑल सॉर्ट्स ऑफ म्यूजिक, सो आई लाइक इट, इट्स माय फेवरेट।
0: एफएम गोल्ड भी है जिसमें,
1: एफएम गोल्ड है, आई लाइक इट।
0: तो आपने कब वास्ता कब पढ़ा आपका रेडियो से?
1: देखिए रेडियो तो एवर सिंस वी वर कमीशनड, हमारे पास तब ट्रांजिस्टर होता था, एक छोटा सा एफएम तो नहीं था, तब ऑल इंडिया रेडियो चलता था, चाहे बॉर्डर पे हो कहीं भी हो। इनफैक्ट आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, एक ANPRC 25 रेडियो सेट होता था। हम लोग जब रास्ता एक्सरसाइज में थे और हम लोग ट्यूनिंग करते थे, कई बार हम पाकिस्तान बॉर्डर पे थे तो उनके गाने आ जाते थे उसमें।
0: अच्छा, उनके गाने, उनके, हमारे भी जाते हैं सर,
1: हमारे भी जाते हैं, तो उसको

0: आते थे शेव करते करते गाने सुन लेते थे,
1: जी
0: वो जमाना था. सो रेडियो हैज हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली.
1: ऑलराइट तो कोई गीत अभी आप अगर बोलें, कौन सा गीत प्ले करें?
0: हाँ, एक तेरी मिट्टी, दिस इज रिक्वेस्ट फ्रॉम नीति नीति भल्ला.
1: ओके आप ही के बॉन्डेड जो ग्रुप है उन्हीं की सदस्य हैं।
0: फ्रेंड्स हैं मेरे से, बॉन्डेड तो नहीं है, बॉन्डेड तो एनडीए वाला ग्रुप है, ये लेडी है.
1: ऑलराइट तो नीति जी आपकी फरमाइश पूरी हो रही है आकाशवाणी में।

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ मेजर एस के यादव हैं और T-72 टैंक के इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं, टैंक रेजिमेंट के साथ रह चुके हैं। आपके पूरे इस करियर में विद द यूनिफॉर्म ऑन कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें हमारे सिविलियंस के साथ जो बड़ा यादगार है, एक्शन के दौरान या कुछ एडवेंचर?
1: पर्सनली मैं डिसिप्लिन के बारे में बता देता हूँ आपको। जब मैं यंग ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया था तो मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर था रेजिमेंट का।
0: और मेरे शो में स्पोर्ट्स आ ही जाता है, लोग कहते हैं आप जानबूझ के लाते हो, बट इट्स वंडरफुल टू हियर। प्लीज गो
1: ऑन। एक एडजुटेंट होता है हमारे, टोनी बेन्स, ही इज इन द US नाउ, आई डोंट नो इफ ही इज लिसनिंग दिस, बट मैं नया नया था, मेरी 2 महीने की सर्विस थी।
0: ओके,
1: तो उन्होंने बोला शो मी द फुटबॉल शूज, डिस्प्ले करो कैसे हैं। तो मैंने शूज़ निकाले, डिस्प्ले कराए सारे रेजिमेंट के, तो एक शू में लेसेस नहीं थे, तो उसने उसकी वजह से मुझे गार्ड ड्यूटी, एक राउंड द क्लॉक गार्ड ड्यूटी की पनिशमेंट दी थी। उसमें क्या होता है कि यंग ऑफिसर को हर 1 घंटे बाद गार्ड रूम, एक जो हमारा होता है जहाँ पे हमारा एमिनेशन रखा होता है, वहाँ जाके साइन करना पड़ता है every 1 hour स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट 9 PM टू मॉर्निंग 6 AM, सो दैट यू डोंट स्लीप।
0: अच्छा,
1: सो दैट इज अ पनिशमेंट फॉर द यंग ऑफिसर इफ यू मेक ए मिस्टेक।
0: ओके,
1: सो माई मिस्टेक वॉज दैट आई डिड नॉट इंश्योर दैट देयर वर लेसेस इन द फुटबॉल शूज
0: एवर,
1: सो दैट आई टू ऑलवेज रिमेंबर।
0: बट इट ग्रूम्ड यू इनटू अ गुड
1: इंडिविजुअल। यस, एग्जैक्टली। एनडीए में ऑल्सो आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि अगर आपके पास टेबल मैनर्स नहीं है, दे टीच यू अदर देन They teach you things like table manners, courtesy, opening the door for the lady, table के ऊपर आप elbow रख के नहीं खा सकते। अगर आपके senior ने आपको देख लिया तो वो आपका पूरा नमक आपके अंडे में डाल देगा,
0: वो बोलेगा खाओ,
1: पूरा आप खाओ, या पूरा का पूरा आपको बोलेगा टेबल के नीचे जाओ, और वो सारे वहां से जो गलती कर देते थे नीचे से उसको बम्प्स।

0: पिक किक करते थे। तो ये चीजें आपको याद रहती है लाइफ
1: यस,
0: पर, यू नो, कि
1: बट आपको
0: मैनर्स क्या
1: प्रॉब्लम
0: होते
1: नहीं
0: हैं।
1: होती ये सब डिसिप्लिन लेके जब आप सिविलियन सोसाइटी में आप जाते हैं तो,
0: काफी फौजियों को होती है, बट
1: है ना?
0: एडजस्ट करना पड़ता है, बट इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट,
1: हाँ,
0: इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट।
1: तो गुस्सा कैसे चबाते हैं फिर आप?
0: अंदर अंदर हम बोलते हैं दीज ब्लडी सिविलियंस, जोकिंग करते हैं, दिस इज ऑल जोक्स, बट यू नो, अगर कोई मैनर्स वूनर्स का अगर हमारे जैसे होता है तो हम अपने मन में ही करते हैं।
1: आप जब आपने अपनी सर्विस पूरी कर ली उसके बाद एडवेंचर में आप चले गए, बिल्कुल
0: हाँ,
1: नेचर से
0: एडवेंचर
1: बहुत प्यार
0: स्पोर्ट्स
1: करते
0: में
1: हैं
0: चला गया था,
1: जी।
0: एंड माई कंपनी वॉज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग बंजी जंपिंग इन टू इंडिया, वी वर द सेकेंड कंपनी टू ब्रिंग हॉट एयर बलूनिंग इन टू इंडिया,
1: ओ
0: एंड वी यूज टू सेट अप एडवेंचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर ट्रैक्स, माउंटेनियरिंग एंड स्टफ लाइक दैट, विच वी स्टिल डू। कंपनी, आई डोंट नो वेदर आई कैन टेक द नेम ऑफ द कंपनी, वंडरलस्ट, एंड इट्स अ वेल नोन कंपनी नाउ।
1: तो आप एडवेंचर में, मतलब आपका शुरू से ही शौक था?
0: हाँ, ऑलवेज, राइट फ्रॉम द
1: ऑलवेज,
0: आर्मी
1: जब
0: डेज,
1: तक पैशन नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते ना
0: एब्सोल्युटली,
1: काम।
0: आर्मी डेज से ही। एंड इवन नाउ टुडे वी आई आई एम ए ट्रैकर, आई ट्रैक अ लॉट, वी आर गोइंग फॉर अ हरकी डून ट्रैक नेक्स्ट मंथ नाउ, एंड वी डिड द ग्रेट लेक्स ट्रैक
1: और कोई
0: ईयर बैक।
1: सिविलियन आपके साथ जुड़ना चाहे जो डिसिप्लिन्ड है वो जुड़ सकता है?
0: नहीं, सिविलियंस आर ऑल्सो डिसिप्लिन, दे
1: या
0: डू इट लॉट, एंड आई हैव लॉट ऑफ सिविलियन फ्रेंड्स, एंड वी ऑल गो टूगेदर
1: ओके।
0: इन माई ट्रेकिंग ग्रुप या अदर ग्रुप्स।
1: कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको शेयर करना चाहते हैं? ये बताइए कि आज के टाइम पे जो युवाओं को आप देखते हैं, है ना, लेट्स गेट टू दिस पॉइंट स्ट्रेट, जब आप इनको देखते हैं तो आप 15 साल की उम्र में एनडीए गए, आप एक डिसिप्लिन्ड बॉय बन गए या बना दिए गए, उसके बाद एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपकी चली आगे, आपको लगता है कि अब जो मॉडर्न सोसाइटी के जो युवा हैं जो आपको सुन रहे हैं, कुछ शायद चाहेंगे कि फौज में आए, कुछ नहीं आ पा रहे होंगे, तो वो फौजी जैसी जिंदगी, वो डिसिप्लिन्ड लाइफ कैसे जिए?
0: देखिए, मेरा कहना है, एंड इस ए पर्सनल ओपिनियन, दैट एवरीबडी शुड स्पेंड सम टाइम इफ दे कैन इन द आर्मी फॉर, इवन इफ इट इज़ फॉर 5 ईयर्स, लाइक द शॉर्ट सर्विस कमीशन। ये जो बेस बनता है ना, जो शुरू का, एंड वो जो डिसिप्लिन जो बेस होता है वो अर्ली डेज में ही हो सकता है। आप वो बेस 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में नहीं बना सकते।
1: ग्रेट पॉइंट।
0: यू हैव टू कैट देम यंग, एंड ये अगर हम बेस दे दें अपने यूथ को कि आपको पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं, कि कंपलसरी आपको 5 ईयर्स या 3 ईयर्स की आर्मी ट्रेनिंग करनी है, देर विल बी ए होल लॉट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट डिसिप्लिन,
1: यस,
0: टेल्स ऑफ पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, सो थिंग्स लाइक दैट विच द आर्मी टीचेज यू, एंड आई होप सम डे दिस हैपन्स।
1: आपको प्यार व्यार नहीं हुआ कभी? सर आप बहुत सीरियस सीरियस बातें करो, टैंक की बात कर दी मैंने, फायर कर दिया हेलीकॉप्टर से, जनरल उतरे उन्होंने बोला टैंक को इधर करो, कुछ
0: जब यंग
1: आपको?
0: ऑफिसर होते थे नाभा में, एक छोटा सा स्टेशन है पंजाब में,
1: अच्छा,
0: मुझे मालूम है कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर, नाम नहीं लूंगा, कोई भी सीओ की डॉटर्स होती थी, उनको इम्प्रेस करने के लिए हम लोग टेनिस बैडमिंटन खेलते थे,
1: जोर जोर से
0: और
1: शॉटे
0: फिर
1: मारते थे।
0: कभी कभी कुछ लेटर्स एक्सचेंज होते थे, तो
1: अच्छा,
0: टेनिस कोर्ट के पास कहीं एक लेटर चला जाता था, वहाँ से दूसरे दिन लेटर आता था, तो बस वही होता था।
1: बस
0: दैट इज द टाइप ऑफ रोमांस वी डिड इन दोज डेज।
1: अच्छा, एक रोमांटिक गाना चला देता हूँ सर, आप ही की
0: श्योर
1: प्लेलिस्ट से लिया हुआ है, कुछ
0: श्योर
1: इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, किसकी फरमाइश चाहिए बताते हैं सर, ये गाना सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं जल्दी।

0: देश टू सोल्जर सुन रहे हैं। मेरा नाम है मुनीश जौली और हमारे साथ मेजर एस के यादव मौजूद हैं। तो यादव साहब, अच्छा किया आपने थोड़ा बहुत बता दिया कि रोमांस है आपके दिल में और चिट्ठियां आप लिखते थे, तो फौजी की चिट्ठी भी वही होती है कि बम धड़ाके वाली या कुछ रोमांटिक बातें होती हैं उसमें?
1: फौजी भी आप जैसे ही हैं, हम और आप, और हम में भी वही फीलिंग्स है जो आप में है और वही जज्बा है, तो एब्सोल्युटली देयर इज नो डिफरेंस।
0: दिल्ली में अभी ये मौसम चल रहा है कि बोगनविलिया बहुत देखने को मिलता है, और उससे जुड़ी कोई खास बात आपसे जुड़ी हुई है?
1: बोगनविला मेरा एक पैशन था, एक माउंटेन्स भीमताल के पास एक मैंने फ्रूट ऑर्चर्ड बनाया है।
0: ओह वंडरफुल।
1: और उसमें करीब 500 फ्रूट ट्रीज लगाए हैं।
0: ओह।
1: एंड आई कॉल इट बोगनविला माउंटेन रिट्रीट। और 5 कॉटेजेस बनाई है, जो द गुड थिंग अबाउट दैट इज कि उसमें कोई RCC फुटप्रिंट नहीं है।
0: ओके।
1: खाली पाइन वुड, ग्लास और लोकल स्टोन का है।
0: अच्छा।
1: और उसमें खाली नेचर है, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, पहाड़ है। That is it.
0: आप बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है वहीं पहुंच गए।
1: मैं वहीं पहुंच जाता हूं ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड।
0: वहीं पहुंच जाता हूं। आप डॉग लवर भी हैं सर?
1: यस।
0: आपने बातों बातों में हमें बताया और मैं भी डॉग लवर हूं। एंड अभी लगभग 2 दिन पहले दिल्ली कैंट एरिया में जो कैंट बोर्ड है उसके जरिए एक वेट हॉस्पिटल भी खोला गया और न्यू दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने उसका उद्घाटन किया, सुन के अच्छा लगा। तो ये
1: मेरे पास मुझे याद नहीं है मेरी इंटायर लाइफ में एक्चुअली मेरी फैमिली में एक डॉग ना हो।
0: अच्छा।
1: एवर।
0: ओके।
1: माय फादर वाज ए डॉग लवर एंड आई हैव हैड लैब्राडोर्स। अब मेरे पास एक गोल्डन रिट्रीवर है, शिफू है उसका नाम। और अभी एक मेरे दोस्त ने मुझे एक पहाड़ी शीप डॉग जो उसको रोड साइड पर मिला था उसको उसने रेस्क्यू
0: किया। ओके।
1: एंड थैंक यू विवेक अगर आप सुन रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया कि अगर आप इसको रखना चाहे तो हम
0: विवेक
1: उसका नाम रखा है और उसको हमने अभी 5-6 महीने का है एंड इज ए शीप डॉग और बहुत मजा आता है।
0: मेरे पास फोन आते हैं IPL के मैचेस आ रहे हैं, पासेस मिलेंगे, पासेस मिलेंगे। विवेक ने अगर डॉग की जान बचाई तो एक पास उसको दूंगा IPL का। मैं नहीं सर, मैं देख के रहूंगा।
1: ओ वैसे विवेक यू अर्न अ पास IPL पास इफ यू लिसनिंग।
0: टॉप टियर होगा
1: पर लैंडोर में रहते हैं मसूरी के पास।
0: ओ फिर तो बच गए। एनीवे सर, यू जस्ट मेंशन अबाउट योर डैड। आई थिंक हमारे प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता कि आपके एक तरीके से आइडल, आपके इंस्पिरेशन, आपके फादर फॉर्मर एयरफोर्स पायलट, हंटर जहाज उड़ाते थे और उसके बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, जो फाइटर पायलट, यू नो, बिलोंग्स टू माय कम्युनिटी। टेल अस समथिंग अबाउट हिम सर।
1: माय डैड केम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन हरियाणा
0: जी
1: एंड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट स्टीफन्स कॉलेज एंड देन जॉइन द एयरफोर्स।
0: हरियाणा में कहाँ से सर?
1: एक गाँव है रेवाड़ी के पास कॉल्ड दखोरा, इट्स नियर कोसली। अगर आपने सुना रेवाड़ी, रेवाड़ी तो सुना,
0: वहाँ से और भी फाइटर पायलट्स आए।
1: कोसली इज ए विलेज बाय द वे इन हरियाणा जहाँ पे सारे ऑफिसर्स, यहाँ देयर इज ए ऑफिसर्स मेस इन दैट विलेज।
0: वाह।
1: तो
0: स्क्वाडन लीडर मनीष यादव
1: काफी हैं, एयरफोर्स के भी हैं।
0: ओके।
1: सो दैट इज हाउ दैट इज हिज रूट्स एंड देन ही ग्रू अप इन।
0: एंड वाज ही पार्ट ऑफ द वॉर? Hunter उड़ाते
1: yes, yes, he was, he's seen the 71 war, he's seen the 65 war, yes.
0: Okay. और क्या खास बात आपके फादर में आपको लगती थी जो आप उनको, हमारे डैड्स हीरोज तो होते हैं लेकिन सबके डैड के अंदर एक खास क्वालिटी होती है, तो आपको क्या लगता था उनके अंदर?
1: सुबह सुबह जब वो यूनिफॉर्म पहनते थे मैं देखता था छोटा बच्चा और मैंने कहा यार मैं कब बड़ा होऊंगा और ये यूनिफॉर्म पहनूंगा। और ऊपर हवाई जहाज उड़ते थे, देखते थे हम लोग। एंड मेरे फादर भी टॉल थे, नाइस, एंड फॉलोड हिज फुटस्टेप्स।
0: पर आपने भी फ्लाइंग सीखी है?
1: हाँ।
0: एंड यू आर अ क्वालिफाइड पायलट?
1: यस, आई हैव गॉट ए CPL।
0: ऑलराइट। तो हाउ कम एयरफोर्स

0: को छोड़कर नौदा टैंक में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन लड़ाकू टैंक, लड़ाकू विमान.
1: आई लेफ्ट द आर्मी आई वेंट अवे टू यूके.
0: ओके.
1: एंड केंट से मैंने अपना फ्लाइंग लाइसेंस लिया था.
0: वाओ. राइट सर, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम आगे और बढ़ें. आपके जो बॉन्डेड ग्रुप है वहाँ से कोई और फरमाइश तो नहीं आई सर गाने की? अगर आई है तो हम जाने से पहले उसे प्ले करेंगे सर.
1: काफ़ी है, लेकिन आप अगर एक ये कर दो अभी ना जाओ छोड़ करके.
0: हाँ हाँ हाँ, ये दिल अभी भरा नहीं. सर ये तो हमें कहना चाहिए आपके लिए कि अभी ना जाओ छोड़ कर. मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में एक गीत है, तो इसको मैं चलाता हूँ ढूंढ के सर.

0: mean it. Every lyric
1: yes.
0: of this golden song. कुछ चलते चलते हमारे युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे.
1: थैंक यू सो मच गाइज. प्ले लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, प्ले लॉट ऑफ वेदर इज टेनिस, स्विमिंग, आउटडोर्स एंड सी लेस ऑफ स्क्रीन टाइम.
0: वो बहुत जरूरी है सर. But it was a sheer pleasure hosting you, sir. And please look after yourself. And thank you so much.
1: Thank you.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 1-1 मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध के बीच नई सरकार गठित करने के लिए परस्पर वार्ता जारी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरेरकर ने आज लोकभवन में तमिलगा वेत्री कड़गम तिविके के

एलडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरेरकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि वर्तमान में भारत स्थिरता का अड़िग स्तंभ है और यह साझा जल क्षेत्रों में त्वरित संकटकालीन सहायता और सुरक्षा की गारंटी देता है। श्री सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में 10वें हिंद महासागर संवाद को संबोधित किया। श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र को सक्रिय रूप से आकार दे रहा है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। बेंगलुरु अंक तालिका में तीसरे और लखनऊ अंतिम पायदान पर है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का किया। सेमीफाइनल में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहत की टीम का सामना चीन से होगा। भारतीय पुरुष रिकर्व टीम को पहले ही राउंड में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज एवं 100.1 एफएम पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हेलो, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम अभिषेक भट्ट है और आप सुन रहे हैं अपना यूथ स्पेशल प्रोग्राम युवाड़ी। और दोस्तों, जब भी हम युवाड़ी की बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है ना कि जब हम यूथ के साथ कनेक्ट करते हैं, जब हम लोग यूथ के साथ बात करते हैं ना, तो तमाम बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशंस और एंटरटेनमेंट की बातें हम करते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह हमारे कार्यक्रम की शुरुआत सुविचार के साथ। आज का सुविचार ये है दोस्तों, मदर टेरेसा कहती हैं कि हम भविष्य से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम आज का दिन बर्बाद कर रहे हैं। कभी कभी होता क्या है दोस्तों कि इंसान थोड़ा सा बहुत फ्रस्ट्रेट, बहुत परेशान सा रहता है, या फिर कभी ऐसा कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं कि इंसान बहुत परेशान हो जाता है और वो अपने उस प्रेजेंट में, अपने उस परेशानी में उसका जो वर्तमान है वो सोचने पर बहुत मजबूर हो जाता है कि यार ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, ऐसे हो रही है तो, और फिर फ्यूचरिस्टिक चीज़ें क्या होंगी। तो इसके लिए एक बड़ी छोटी सी प्यारी सी बात है कि दोस्तों, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है और भविष्य किसी कोई नहीं देख पाता, इसलिए कोशिश करिए कि आप अपना जो वर्तमान है, जो अपना प्रेजेंट है, उसको खूबसूरत बनाइए। हर एक जो मोमेंट है ना, हर एक जो पल है, उसे जिए, उसे याद करिए और साथ ही साथ उसको और बेहतर कीजिए, इंजॉय करिए, ताकि आगे चल के आपका बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा जो फ्यूचर है वो आपको निखरता हुआ नज़र आए और हमेशा खुश रहिए। क्योंकि जब जिंदगी में इंसान खुश रहता है ना, तो चीज़ें आगे भी बहुत ही आसान होती हैं। इसी के साथ अपने विषयों पर आ जाते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा बहुत ही प्यारा विषय है वो है आत्मनिर्भर भारत योजना। जी हाँ, यह योजना, यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12 मई 2020 को शुरू किया गया, एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक पैकेज के लिए भी इसको यूज़ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश और उनके नागरिकों को हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, यानी वोकल फॉर लोकल, जी हाँ, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना, और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक प्रमुख केंद्र बनाना है। जी हाँ, इसके लिए हमने आत्मनिर्भर भारत योजना हमारे सरकार ने शुरू की थी, जो हमारे लिए बहुत ही खास है। हम काफ़ी चीज़ें उससे सीख सकते हैं और काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसके 5 मुख्य स्तंभ हैं, 5 मुख्य इसके कह सकते हैं कि कहते हैं ना पिलर होता है दोस्तों, हर एक चीज़ का कहते हैं ना एक जो बेस होता है, एक जो पिलर होता है। तो इस योजना का, इस अभियान का भी एक बहुत अच्छा 5 मुख्य स्तंभ है जिसके बारे में करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था की। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम आत्मनिर्भर भारत योजना की जब हम बात करते हैं, तो आपको हम बता दें कि इसमें सबसे पहला स्तंभ ये आता है जो वृद्धिशील और इंक्रीमेंटल बदलाव पर नहीं, बल्कि बड़ी छलांग यानी कि क्वांटम जंप से रिलेटेड आधारित होता है। कभी कभी होता क्या ना दोस्तों कि अपना खुद का स्टार्टअप, अपना खुद का जो बिजनेस होता है ना, वो बेहद ही कहते हैं ना इनोवेटिव और क्रिएटिव होता है। लाइक जब आप अपना कोई काम शुरू करते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान को खुद का मालिक बनना चाहिए, ठीक है ना। मतलब दूसरों के अंडर में तो सभी लोग काम करते हैं, हर एक इंसान एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट मैं आपको ये ज़रूर से कहूँगा कि आप, अगर आपके अंदर कोई स्किल है, बहुत अच्छा, अगर आप कुछ बहुत बेहतर या इनोवेटिव कर सकते हैं बिजनेस की फील्ड में, स्पेशली इकोनॉमिकल फील्ड में, अगर आप कुछ बहुत बेहतर कर सकते हैं तो आप ज़रूर से करें, अपने उस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। इसके लिए हमारा जो गवर्नमेंट है बहुत मदद करता है, और इसीलिए इसमें सबसे पहला स्तंभ यही आता है कि अर्थव्यवस्था यानी इंक्रीमेंटल नहीं, हम एक क्वांटम जंप लें, मतलब हम एक ऐसा जंप लें ताकि हम कुछ बेहतर कर सकें अपने जीवन के लिए। उसके बाद दोस्तों, दूसरा जो आता है वो अवसंरचना है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी मेन ट्री, जैसे कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया की पहचान है। लाइक अगर हम संस्कृति की बात करें, अपने इंडियन कल्चर की बात करें, अपने यहाँ के खाने पीने की बात करें, पहनावे की बात करें, या फिर घूमने की बात करें, टूरिस्ट प्लेस की बात करें, तो वो भी एक पहचान है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत खूबसूरत है, तो इसको देखते हुए भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो स्किल्स हैं, हमारे जो कहते हैं ना ग्रामीण लेवल पे जो लोग हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी कलाएं भरी पड़ी हुई हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा करने के लिए भी गवर्नमेंट बहुत अच्छी मदद करती है। उसके बाद टेक्नोलॉजी के फील्ड की अगर बात करें, प्रौद्योगिकी फील्ड की अगर हम बात करें, तो 21वीं सदी की तकनीकी संचालित को भी व्यवस्था पर जोर देना बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि हम टेक्निकली वैसे तो कहते हैं ना डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री दोनों में बहुत अंतर होता है। तो अगर इफ़ वी आर इन अ डेवलपिंग कंट्री, अगर हम डेवलपिंग कंट्री में हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने टेक्नोलॉजी को, अपनी चीज़ों को और थोड़ा सा इन्हांस करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ताकि टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी हम आगे और बेहतर कर सकें। इसके बाद दोस्तों जीवन सांख्यिकी यानी वाइब्रेंट डेमोग्राफी, जो आत्म भारत निर्भर के लिए एक बहुत बड़ी ताकत मानी जाती है, तो उस पर भी हमारा काम करता है, जो कि हमारा चौथा स्तंभ के तौर पर देखा जाता है। और वन ऑफ द लास्ट जो हम जिसे मानते हैं वो है डिमांड यानी मांग। मांग किस चीज़ की है? पब्लिक किस चीज़ की डिमांड कर रही है, सोसाइटी किस चीज़ की डिमांड कर रही है, ये भी बहुत मायने रखता है। लाइक हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, वो आपूर्ति श्रृंखला का पूरा उपयोग कहाँ हो रहा है, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, किस चीज़ को हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर किसी एक स्किल को और कितना क्रिएटिव कर सकते हैं, इसकी भी डिमांड देखी जा रही है। तो इन सब को मेंटेन करने के लिए दोस्तों हमारी जो गवर्नमेंट है वो आत्मनिर्भर भारत योजना को भी शुरू की है, जिसमें आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगे। आप उसके थ्रू उनके बारे में आप जान सकते हैं, अपने स्किल्स को, अपने टेक्नोलॉजी को, अपने कहते हैं ना क्रिएटिविटी को, अपने संस्कृति को, अपने बाकी चीज़ों को और अच्छा आप आगे बढ़ा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम करके स्वदेशी विनिर्माण को मजबूत करना है, इसका एक ये भी उद्देश्य माना जाता है। इस अभियान के माध्यम से नए रोजगार को पैदा करना है और उसका आर्थिक सुधार करना है। व्यवसाय करने से आसानी यानी ईजी टू डूइंग बिजनेस, मतलब व्यवसाय जो हम करते हैं, मतलब कभी कभी ना जब आप कुछ लोगों को कहते हो कि यू कैन ऑल्सो स्टार्ट अ बिजनेस, आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आपके अंदर वो स्किल्स है, आप वो बहुत अच्छा कर ले जाएगा, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि हाउ टू स्टार्ट, आप स्टार्ट कैसे करें। तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हम आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हम चीज़ों को कंसल्टेंट के तौर पे भी देख सकते हैं। और इजी टू डूइंग बिजनेस, कि जितना इजी हो सके उतने आसानी से अगर हम बिज़नेस को डाल दें और उसको आगे बढ़ाएं, तो इसके लिए इसको बढ़ावा देने के लिए बेसिकली, और नियमों को और सरल करने के लिए, लाइक होते हैं ना कि जब भी हम नई चीज़ों की शुरुआत करते हैं तो ऑलवेज बी देयर इन टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग, हर चीज़ का टर्म कंडीशन होता है और हर चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हर चीज़ के नियम होते हैं। तो नियमों को और सरल बनाने के लिए और इजी बनाने के लिए, इजी टू डूइंग बिजनेस के लिए हम इन सब चीजों को बढ़ावा देते हैं। इस योजना के तहत रक्षा, कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में भी, और साथ ही साथ तकनीकी क्षेत्रों के क्षेत्र में भी, तकनीकी जैसे क्षेत्रों में भी कई ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं और आगे भी हम करते रहेंगे, ताकि अपने जो कहते हैं ना कि अपनी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो स्किल्स है, हमारी जो क्रिएटिविटी, हमारी जो संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, इसको और आगे बेहतर कर सकें। इससे देश के चिकित्सा उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रक्षा हथियारों के स्वदेशी निर्माण में भारी बहुत कहते हैं ना एक्सट्रीम लेवल पर, एक अच्छे इन्हांस्ड लेवल पर उसको बढ़ावा मिला है। यह योजना सिर्फ आयात बंद करने का नहीं, बल्कि भारत की क्षमता बढ़ाने और देश की एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए दूरगामी पहले। लाइक अगर हमारी गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू किया है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ आयात निर्यात को ही बंद करेंगे, आयात को बंद करेंगे। उसका मकसद ये बनता है कि हम एक वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे, एक वैश्विक लेवल पे आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल रूप से कहते हैं ना महाशक्ति के तौर पे जानने का काम करेंगे, अपने आप को स्थापित करेंगे। ये कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आप सुनेंगे कि 2050 तक का क्या टारगेट है, 2030 तक का क्या टारगेट है, 2035 में हम कहाँ हो सकते हैं, 2040 में कहाँ हो सकते हैं, तो ये सब हम प्री प्लान करते हैं, चीज़ें बहुत प्री प्लान्ड होनी जरूरी हैं। तो इसके लिए भी ये चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हम आत्मनिर्भर भारत योजना की तरह आप जुड़ सकते हैं और अपने नई चीज़ों का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। और इसी के साथ ये खूबसूरत और प्यारा सा ट्रैक हमारी तरफ आते हुए गाने को इस पार आरजी भट्ट आपके साथ।

जी अभी आप सुन रहे थे बेहद खूबसूरत और प्यारा सा गीत तबाह फिल्म हीरोपंती से, जिसमें आवाज़ दी है मोहित चौहान ने। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे विषय की तरफ। हमारा दूसरा विषय है करियर में कृषि विज्ञान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, कृषि विज्ञान में करियर करने के लिए करियर का अर्थ ये होता है कि केवल खेती करना तो बिल्कुल भी नहीं होता। अगर कृषि विज्ञान से इंसान ये समझता है कि सिर्फ खेती करना है तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि कृषि तकनीक, खाद्य सुरक्षा और जैव प्रौद्योगिकी जैसे उन्नत क्षेत्रों में काम करना होता है। यह क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की वैश्विक आपूर्ति बढ़ाने के प्रयासों में केंद्र में है ये। दोस्तों अगर आप कृषि विज्ञान में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कुछ कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज की बात करें तो आप बीएससी कर सकते हैं, बीएससी इन एग्रीकल्चर एंड बीएससी इन हॉर्टिकल्चर। साथ ही साथ आप बीटेक कर सकते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी में। इसके बाद पीजी की बात करें, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एमएससी इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं और विभिन्न विशेष विशेषताओं में आप एमटेक वगैरह भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक को लेके अगर आप एक किसी विषय को लेकर आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कृषि विज्ञान के क्षेत्र में पीएचडी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप पीएचडी भी कर सकते हैं। अनुसंधान और वैज्ञानिक पदों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी एग्ज़ाम्स वगैरह देके आप चीज़ों को एग्जीक्यूट और प्रोसीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा करियर में विकल्प और पद की बात करें कि इसके करियर में विकल्प क्या है और पद क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये कोर्सेज आप करते हैं तो यू हैव अ ऑप्शन ऑफ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, यू हैव अ ऑप्शन ऑफ एग्रीकल्चर बिजनेस, यू हैव अ ऑप्शन ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर। आप उसके साथ आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, लाइक अगर आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लाइक अगर आप पीएचडी करते हैं तो आप यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर या गवर्नमेंट कॉलेजेस में टीचर, साथ ही गवर्नमेंट एग्जाम्स और एंटरप्रेन्योरशिप्स की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा एक छोटा सा सवाल उठता है कि रिक्वायर्ड स्किल्स क्या होनी चाहिए, मतलब कौन से लोग इसमें जा सकते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है शैक्षणिक, अगर पृष्ठभूमि के हिसाब से देखें तो जो आपका 12th है वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, तो फिर आप इन चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से कर ले जाएंगे। इसके अलावा स्किल्स की अगर बात करें तो टेक्निकल नॉलेज आपको थोड़ी बहुत होनी चाहिए, समस्या सुलझाने की क्षमता होनी चाहिए। लाइक अगर इफ़ यू वॉन्ट टू बी इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इफ़ यू वॉन्ट बी इन कि कृषि विज्ञान में हमें जाना ही है, सो यू हैव टू बी क्यूरियस अबाउट डैट। आपको उसके बारे में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी अपने अंदर लानी होगी कि यार कैसे होता होगा, मिट्टी से चीज़ें कैसे निकलती हैं और हम क्या बेहतर कर सकते हैं और कौन से खाद्य की चीज़ों में हम इन्वॉल्वमेंट ला सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कुछ बेहतर करना होगा, जिसके अंदर जो कहते हैं ना जो क्यूरियोसिटी होती है, एक जो कहते हैं ना कि हमारे आज की यूथ और जेन जी जनरेशन कहते हैं चुल मचना, तो आपको एक चुल होनी चाहिए, उसको उसके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि नहीं भाई अपने को करके दिखाना, ये करना, ये जानना, ये कैसे होता है। तो इन चीज़ों के लिए आप कर सकते हैं, और खेतों में काम करने का धैर्य होना चाहिए। लाइक अगर आप कृषि विज्ञान में हैं तो कहते हैं ना नाजुक इंसान थोड़ा सा कहते हैं ना धूप में नहीं कर पाता है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आपको फिजिकली बहुत प्रिपेयर होगा होना होगा और साथ ही साथ मेंटली भी आपको प्रिपेयर होना होगा। पेशेंस लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप खेतों में आराम से 4-5 घंटे तक, 6 घंटे तक खड़े होकर आप चीज़ों को देख सके, काम करा सके और साथ ही साथ काम करने की क्षमता भी रख सके कि अगर सामने वाला इंसान परेशान हो रहा है कोई बात नहीं, आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा कॉलेजेस की बात करें तो मैं आपको टॉप 5 कॉलेजेस बता दे रहा हूँ, जिसमें IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में है, आप वहाँ से ये पढ़ाई कर सकते हैं। NDRI नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कर्नल में है, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके बाद BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस डिपार्टमेंट में आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद GBPUAT गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि पंत नगर में है, आप वहाँ से भी इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तमाम और भी बात करेंगे, लेकिन आरजे भट्ट आपको सुनवाता है एक बेहद खूबसूरत और प्यारा सा गीत, गाने के उस पार आरजे भट्ट आपके साथ। सुनते रहिए खूबसूरत और प्यारा सा गीत।

0: आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं।
1: जी अभी आप सुन रहे थे बेहद खूबसूरत और प्यारा सा गीत एक दिल है फिल्म एक रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव से, जिसमें आवाज दी हमारे 90s के बहुत अच्छे सिंगर्स कुमार सानू और अलका याग्निक जी ने। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ, और हमारा अगला विषय स्वच्छता का रखे ख्याल। पता है दोस्तों, स्वच्छता हमारे लिए एक अहम विषय है। हम अक्सर इस विषय पर बात करते रहते हैं और हम हमेशा बात करते रहते हैं कि अपने आसपास स्वच्छता कैसे बनाए रखें, ऐसा क्या करें कि चीज़ें साफ़ सुथरी रहें हमारे आसपास। चलिए आज इसके रिगार्डिंग हम अक्सर बातचीत करते रहते हैं, तो हम आपको लेट मी गिव यू सम टिप्स, आपको कुछ टिप्स देते हैं जिसके थ्रू आप अपने आसपास स्वच्छता बरकरार रख सकते हैं और साथ ही साथ स्वच्छता अभियान में अपना एक अहम योगदान भी दे सकते हैं। सबसे पहला आता है बीइंग डिसिप्लिन्ड एंड मैनर्ड पर्सन। लाइक अगर आप स्वच्छता की तरफ बहुत आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों कि हमें खुद एक डिसिप्लिन रहना होगा कि अगर हम चिप्स का पैकेट खा रहे हैं तो चिप्स ख़त्म होने के बाद वो पैकेट डस्टबिन में ही जाना चाहिए, ना कि किसी रोड पे, ना कि किसी पब्लिक प्लेस पे। तो अगर पहले हमें खुद के अंदर सुधार लाना चाहिए कि हम थोड़ा सा डिसिप्लिन और मैनर्ड रहें। उसके बाद कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालें, इधर उधर बिल्कुल भी ना फेंकें। जैसा कि मैंने बताया कि डस्टबिन इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन। गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखें। पब्लिक प्लेस पर गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। डस्टबिन का यूज़ करें। आजकल तो डस्टबिन भी कहते हैं कि यूज़ मी प्लीज़, आप मुझे यूज़ करिए। कभी कभी आप जाएंगे ना पार्क वगैरह में देखेंगे, स्कूलों के पास देखेंगे, या फिर स्ट्रीट्स रोड पे जो डस्टबिन लगे रहते हैं ना, उसमें कार्टून छोटा सा बना रहता है और उसमें लिखता रहता है कि प्लीज़ यूज़ मी, प्लीज़ थ्रो हियर, यूज़ मी प्लीज़, ऐसे करके तमाम ऐसे रिटर्न रहते हैं और एक इमोजी बना रहता है। उससे हमें वो संकेत करते हैं, हमें एक हिंट देते हैं कि आप मुझे यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स अपना जो कचरा है ना भाई, वो आप मेरे अंदर ही डालो, आपको रोड पे फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पब्लिक प्लेस पर गंदगी बिल्कुल भी ना फैलाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्लीज़ यूज़ द बैग्स नॉट द पॉलीथीन पैकेट्स। आप कोशिश करें कि आप बैग यूज़ करें, ना कि पॉलीथीन का यूज़ करें। समय समय पर आसपास अपने घर के आसपास जो नालियाँ हैं उसे साफ़ रखें, आसपास की जो जगह है उसे साफ़ रखें। पौधे लगाएं, पेड़ पौधे, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना वो लगा के सुंदर सुंदर रखने चाहिए, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी बेहतर रहे। एंड प्लीज डू नॉट वेस्ट द वाटर। कभी कभी होता है ना कि भाई मोटर ऑन कर दिया है, टंकी भर रही है छत पे, और फिर सीरियल देखने में या क्रिकेट देखने में या कार्टून देखने में या टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में, रील्स देखने में हम बिजी हैं, और ऊपर टंकी भर गया है, अनाउंसमेंट हो रही है कि पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कर दें, लेकिन स्टिल हमें सुनाई नहीं दे रहा और पानी फ्लो हो रहा है किसी के दूसरे प्लॉट में या फिर दूसरे रोड पे गिरे जा रहा है, उसकी वजह से भी मच्छर वगैरह आते हैं अगर वो पानी इकट्ठा हो गया, कलेक्ट हो गया। तो इन सब चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बच्चों को भी यह अच्छी बातें सिखानी है, अच्छी आदतें सिखानी है, उन्हें समझाना है, उन्हें बताना है, लोगों को भी बताना है कि स्वच्छता हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। लोगों को प्रेरित करना है, स्वच्छता के बारे में जागरूक करना है, जागरूकता फैलाना है और अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करना है। तो ये छोटी सी सीख हमारे आकाशवाणी के गुरुपुत्र केंद्र की तरफ से। तमाम और भी बातें करेंगे, लेकिन गाने के उस पार राजू भट्ट आपके साथ, ये प्यारा सा ट्रैक हमारी तरफ आते हुए।

जी, अभी आप सुन रहे थे बेहद खूबसूरत और प्यारा सा गीत नैना रे फिल्म डेंजर इश्क से, जिसमें आवाज़ दी है हिमेश रेशमिया, श्रेया घोषाल और राहत फतेह अली खान साहब। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अपने प्रश्नोत्तरी सेगमेंट की तरफ, और हमारा कल का पूछा गया सवाल ये था दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीच किसने लिखी है। सवाल एक बार पुनः सुन लें, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीच किसने लिखी है, और इसका जवाब है चार्ल्स डार्विन। जी हाँ, चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीच लिखी है। यू मस्ट रीड, आपको पढ़ना चाहिए। और अब क्योंकि हमारे पिछले रेडियो एंकर ने बुक से रिलेटेड सवाल किया था, तो मैंने भी सोचा कि उन्हें लिटरेचर से एक किताब उठाते हैं। तो हमारा आज का सवाल ये है दोस्तों, सूरज का सातवां घोड़ा किसने लिखा है। जी हाँ, सवाल एक बार पुनः सुन लें कि सूरज का सातवां घोड़ा किसने लिखा है। इस सवाल का जवाब आप ढूंढ के रखिएगा। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले कार्यक्रम के अंक में, तब तक के लिए मुझे यानी आरजे भट्ट को दीजिए इजाजत। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ढेर सारी मोहब्बत आप सभी को।

आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

0: घर आंगन सुनने वाली सब श्रोता बहन सबके मनीषा का नमस्ते। बहन आज अपन बैठकी शुरू भइल और आज हमने के अपनी बैठकी में बात करे के संक्रमित रोग से बचाव का। तब बहन सबसे पहले तो ये जानल जरूरी बा कि संक्रामक बीमारी हवे का। ई एगो ऐसन बीमारी हवे जवन एक आदमी से दूसरे आदमी में या फिर जानवर से इंसानन में या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैलेला। बहन ई वायरस कवक या परजीवी के कारण होला। आजकल के जीवन शैली में जहाँ एक दूसरे से संपर्क में आवे से फैले जाला वाला ई रोग तेजी से विकास हो रहल बाटे, एगो बहुते ही गंभीर समस्या बा। ऐसे बचाव का केवल हमनी के सुरक्षा के खातिर बल्कि पूरा समाज के स्वास्थ्य की खातिर भी बहुते जरूरी बा। ई रोग हवा से भी फैलेला, जैसे खसले और छींकले पर भी लोग संक्रमित हो जाला। बहन संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलावे या करीब आवे से भी फैल जाला, अस्वच्छ खान पान से भी ई रोग फैलेला। और जहाँ तक बात बाटे कि मच्छर के कटले से भी, और खाए जाला वाला सामान अगर ढक के ना रख तनी ऊपर माखी बैठ गई बा, वह से भी ई रोग फैल सकेला। ऐसे बचाव की खातिर भोजन करे से पहले या शौचालय से बाहर आवे, और बाहर से अगर आप आवतानी तो सबसे पहले तो अपनी हाथ के साबुन से जरूर धोई, और संभव हो सके तो सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करी। समय पर टीकाकरण जरूर करवाई, जैसे संक्रामक रोग के खिलाफ शरीर के प्रतिरक्षित करे के सबसे प्रभावी तरीका होला। ये खसरा पोलियो जैसे बीमारियन से भी बचाव करेला। अपनी आसपास की जगह और सामान के कीटाणु रहित रखी, या खांसत या छींकत समय मुंह पर रुमाल जरूर रखी। यदि कोनो भी संक्रमित रोग से पीड़ित आपके आसपास होके तब पास जाए पर आप मास्क का प्रयोग करी, संतुलित आहार और पौष्टिक आहार लें, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें ताकि शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होके। पानी अगर संभव हो सके तो उबाल के पी, अगर गर्मी में संभव ना होके तो ताज़ा पानी का सेवन करी या पानी ढक के रखी ओकर प्रयोग करी। संक्रामक रोगन के बचाव का मूल मंत्र हवे सावधानी और सुरक्षा हवे। यदि हमनी के व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान रखल जाए, टीकाकरण करवावल जाए और स्वस्थ जीवन शैली के अपनावल जाए तो ई बीमारी के फैले से रोकल जा सकेला। ई एगो साझा जिम्मेदारी हवे जेकरी माध्यम से हमनी के एगो स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकेला जाए। बहन देखो अपनी बैठकी में और भी बात करे के ओकरी पहले अपनी बैठकी में सुन लिया जाए एगो भेंट वार्ता। पोषण एवं स्कूल पूर्व शिक्षा संवर्धन यह पर जानकारी देते ही डॉक्टर अभिनव कुमार मिश्रा और उनसे बातचीत करते हुए वेद प्रकाश।
1: जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिनव कुमार मिश्रा आयल हवे, आपके परंपरा के अनुरूप अपने बैठकी में स्वागत बा। आज हमन के जानल जाई कि गोरखपुर जनपद में ICDS योजना के तहत का सेवाएं लोगन के मिलता ग्रामीण अंचल में, चाहे ब्लॉक स्तर पे चाहे तहसील स्तर पे, और ओकर जानकारी कैसे सुचारू रूप से और तरीके के साथ लोगन तक आम जनमानस तक पहुंचे।
2: आकाशवाणी के सभी श्रोता लोग के सबसे पहले नमस्कार बा। ICDS अक्टूबर 1975 से चलत आई योजना, और एकरा अंतर्गत कई प्रकार के सेवा जनवा लाभार्थी वर्ग तक पहुँचेला। जैसे सबसे पहले हम बात करी तब पूरक पोषाहार, पूरक पोषाहार के तहत जनता के बीच जो 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चा लोग बा या गर्भवती महिला, धात्री महिला, ये लोग तक पूरक पोषाहार पहुँचावल जाला। एकरा अलावा साथी में प्री स्कूल शिक्षा एगो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़,

0: आजकल और एकर महत्व तो बढ़ गई बा। जौन लिके बच्चा 3 से 6 वर्ष के बड़ा सन, उ सब बच्चन के प्री स्कूल शिक्षा के समृद्ध कर जाता। साथ ही स्वास्थ्य जांच परामर्श, टीकाकरण और हेल्थ और न्यूट्रिशन के संदर्भ में और एजुकेशन वगैरह दिया जाता। तो कई प्रकार के ICDS के तरफ से सेवा जनपद गोरखपुर में दिया जाता।
1: ब्लॉक स्तर पे भी हुई?
0: जी जी जी, ये योजना पूरा जनपद में चलता, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, पूरा प्रदेश में देश में ही चलेला। अपना जनपद में भी हर ब्लॉक में 200 ब्लॉक में ये योजना संचालित बा।
1: जी जी, अच्छा ये बताई कि कुपोषण के लेके गोरखपुर जनपद के स्थिति कैसे स्पष्ट हुई, कि कौने ब्लॉक में एक आंकड़ा कैसे मिलेला, आपके टीम या विभागीय लोग ब्लॉक स्तर पर कैसे सर्वे करेलन, ओके ले आके जिला मुख्यालय पे आप लोगन के कैसे पहुंचावेलन, तब जाके स्पष्ट होत हुई कि हाँ यहाँ ब्लॉक में कुपोषण के स्थिति ई बा या ई तहसील में ई बा और यहाँ स्थिति ठीक।
0: कुपोषण के लेके हर ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चन के वजन होला, बच्चा के वजन ओकर ट्रैक कर जाला, ओकर हाइट लिया जाला बच्चा के, ऐसे ही
1: वजन हाइट दोनों
0: ऐसे ही गर्भवती धात्री महिला के भी निरंतर जांच परामर्श वगैरह भी ये सब स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से चलत रहेला। ओकरा थ्रू हमनी के पता चलेला कि हमन के का पोजीशन बा जनपद में, बच्चा लाल श्रेणी में बा अर्थात बहुत कम वजन बा बच्चा के।
1: अच्छा, जोने के लाल श्रेणी स्पष्ट करी, लाल श्रेणी मतलब कि जोने लड़का या बच्चा के वजन बहुत कम रहे।
0: जी जी, सबसे पहले हम बताई रुवा के तक कुपोषण के अलग अलग प्रकार बा, अलग अलग प्रकार से चिन्हांकन होला। तो जैसे में एक बा सीवियर अंडरवेट कहल जाला, जोना के कहल जाला कि बहुत अल्प वजन के बच्चा जोन बाड़न कुल, तो जोन अल्प वजन के जोन बच्चा बाड़न वो लाल श्रेणी के बच्चा हुआन।
1: जी जी।
0: लाल श्रेणी के बच्चा हम बात करी अपना जनपद में तो 0 से 6 आयु वर्ष के पूरा सामान्य बच्चा तो लगभग 3,20,000 के आसपास बालू, लेकिन ओमे जोन लाल श्रेणी के बच्चा अर्थात वजन कम वाला लगभग 20 से 22,000 बच्चा बालू। एकरा अलावा कुछ बच्चे ऐसन भी होलन जोन के हाइट और वेट दोनों के भी देखल जाला वजन के साथ, जोन सैम श्रेणी के बच्चा कहल जाला।
1: सैम श्रेणी जिनकर ऊंचाई कम रही,
0: वजन ऊंचाई उम्र के सापेक्ष ऊपर कम रही, तो उ सैम श्रेणी के जोन बच्चा होलन, सैम श्रेणी के बच्चा अपना जनपद में लगभग 6,818 के आसपास अभी बच्चा हुआ
1: जनपद में।
0: जी जी। तो एक कुपोषण के स्थिति में वर्तमान में
1: जी जी।
0: अच्छा, कुछ बच्चा मध्यम श्रेणी के कुपोषित होलन, जोन के संभावना बा कि कभी वो लाल या सैम भी हो सकेलन, वो बच्चा ध्यान देला पर वो बच्चा सामान्य श्रेणी में आ सकता।
1: अच्छा, नीचे भी वाले कैटेगरी में आ सकेलन और ऊपर भी, मतलब सुदृढ़ भी, मतलब स्थिति हो सके। अच्छा ये बताए, जैसे कुपोषण से बचे खातिर सबसे जरूरी चीज होला भोजन, तो ICDS योजना के तहत गोरखपुर जनपद में भोजन या खान पान में आपके विभाग द्वारा का बदलाव है, ओकरे विषय में तनी प्रकाश दे।
0: जी जी, देखिए बहुत अच्छा सवाल बा कुपोषण। देखिए पहले तो हम ये बतावल चाहब कि कुपोषण दूर करे खातिर का दिहल जाला। कुछ पूरक पोषाहार बा जोन दिहल जाला, जैसे कि गेहूं, दलिया, दाल दिहल जाला, चावल दिहल जाला और तेल भी दिहल जाला। यदि बच्चा की उम्र 3 वर्ष से ऊपर बा, 3 से 6, तो 3 से 6 वर्ष के तेल ना दिहल जाला, बाकी जोन 3 वर्ष के कम बड़ा सन वो बच्चन के दाल, गेहूं, दलिया और चावल इन तीनों प्रोवाइड करावल जाला।
1: उपलब्ध
0: करावल जाला अनुपूरक पोषाहार के अंतर्गत। तो ई एक अनुपूरक पोषाहार तो एगो महत्वपूर्ण चीज बा, लेकिन एकर साथ साथ जोन हमन लगातार काम कर जोन अनुभव प्राप्त भइल बा वही बताओ ता कि एहूसे भी ज्यादा पोषाहार से भी ज्यादा एक और चीज महत्वपूर्ण बा, जागरूकता। बहुत बार
1: जनमानस के जागरूकता।
0: बहुत बार ई सब देखे के मिलल बा कि अच्छा परिवार में, चूंकि हमनी के लगातार ग्राउंड पर भी काम करे नहीं जा, देखे नहीं जा कि का स्थिति बा कुपोषण के,
1: चूंकि फील्ड में आप लोग के जाए के रहे।
0: जी जी जी, कई गो सामान्य बहुत अच्छा परिवार के भी घर में रुआ कुपोषित महिला, कुपोषित बच्चा रुआ आराम से देख सके नहीं। ओकर कारण का बा खान पान के शैली, गलत शैली,
1: लापरवाही।
0: दूसर के गो गोरखपुर में अपना तरफ अपना क्षेत्र में गो यो समस्या बा कि महिला लोग के बहुत ध्यान अपना परिवार में खान पान पर,
1: खुद के संकोचो कही सके,
0: खुद के संकोचो की घर के मुखिया खाली, परिवार के सब, परिवार के सब लोग खाली, फिर जोन बचल बा वो महिला खाई, जबकि उकर खाइल ज्यादा जरूरी बा। साथ ही गर्भवती धात्री के भोजन भी बहुत जरूरी बा, लेकिन वो कहीं ना कहीं उपेक्षा कर ला लो, अपना आहार में विविधता ना ले ला लो। तरह तरह के फल सब्जी अपना के क्षेत्र में बहुत अच्छा होला,
1: उनकर स्वास्थ्य के प्रभाव जन बा।

0: लइकन पे पड़ेला,
1: लइकन पर पड़ेला। निश्चित रूप से मानव संसाधन पे बहुत ज्यादा एकर प्रभाव पड़ेला
0: जी।
1: शुरू से ही एक जब ट्रैक कर जाए तो बहुत ही एमे बदलाव आ सकता, जैसे कि गर्भवती महिला यदि सशक्त रही, सुपोषित रही, गर्भवती महिला के स्वास्थ्य पोषण के स्तर समृद्ध रही, तो निश्चित रूप से कि वो कर बच्चा बहुत अच्छा रही, बच्चा बढ़िया रही, बच्चा के भी हम पोषण के हमन लोग ध्यान दी तो उकर पोषण स्तर अच्छा रही
0: जी,
1: तो धीरे धीरे आगे चल के उकर पढ़ाई लिखाई से लेकर उकर पूरा भविष्य अच्छा बनी, एगो बढ़िया मानव संसाधन के तौर पर वो सामने निकल के आई।
0: हाँ, जब माँ स्वस्थ रही तो उकर आगामी पीढ़ी भी ठीक रही
1: जी,
0: और
1: जी,
0: जब लड़का स्वस्थ रही तो जो समय पर लड़का के जैसे कमजोर लड़का के इलाज जब शुरू हो जाला तो बड़ा दिक्कत होला, तो शुरू पर अगर उकर ध्यान दिया जाए डॉक्टर साहब तो हम निश्चित तौर पर बढ़िया
1: जी, जी, जी।
0: एक चीज हम आपसे और जानल चाहे के तनी आप विस्तार से बताई कि गोरखपुर जनपद में राष्ट्रीय पोषण माह जोन चलेला, एकर पूरे प्रदेश में का स्थान बा और एकरे खातिर आप लोग कितना स्तर से प्रयास कई के एक मतलब प्रमुखता से एक समय देनी
1: जी। जनपद में एक बहुत आकाशवाणी के सब श्रोता लोग के बता के बड़ा गौरव के भी बात भाई
0: जी,
1: कि,
0: जी।
1: कि जनपद गोरखपुर राष्ट्रीय पोषण माह में 2023 में प्रदेश में पहला स्थान पर रहे।
0: बीते वर्ष जो अभी
1: 2023 सितंबर माह पोषण माह होला, भारत वर्ष के हर जिला में मनावल जाला।
0: जी जी।
1: आ बहुत ही बड़ा ये सुखद बात बा कि जनपद गोरखपुर अपन जनपद जोन बा वो अव्वल प्रथम स्थान प्राप्त कैले रहे
0: पूरे प्रदेश में।
1: पूरे प्रदेश
0: जी
1: में
0: जी। एकरे तहत कैसे मतलब इतना जनपद में प्रथम स्थान गोरखपुर जनपद के आयल राष्ट्रीय पोषण माह में, एकरे खातिर आप लोग कौने स्तर से प्रयास कैली? प्रयास निश्चित बढ़िया रहल हुई तबे ही मुकाम हासिल भई।
1: देखिए सबसे हमन के विभाग के जोन मेन सूत्रधार मेन कर्णधार कहीं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हलो, जोन गांव गांव सुदूर गांव में बैठल बालो और अपना गांव में रह के वो लोग ICDS के विभिन्न सेवाओं के संचालन करता लोग, तो वो लोग के माध्यम से तमाम प्रकार के गतिविधि के आयोजन भइल, जनता के जागृति जोन मेन चीज बा, पोषण के रूप जन आंदोलन बनाए तब जाकर के रूप पोषण माह वगैरह में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता नहीं।
0: जन सहभागिता के लिए आप आशा करते हैं।
1: जी जी जी। जैसे दो तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण हमन के प्रयास के लिए, एक तो सबसे पहला कि जनपद में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के खुद पहले जागरूक कल गई, वो लोग के बीच क्विज प्रतियोगिता के आयोजन कल गई कि वो लोग के पोषण के जानकारी कितना बा, स्कूल पूर्व शिक्षा के वो लोग के जानकारी कितना बा। तो सबसे पहले एक ग्राउंड लेवल पर ग्रास रूट लेवल पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री काम करता लो,
0: एक तरह से प्रशिक्षण और ट्रेनिंग। हाँ,
1: प्रशिक्षण ट्रेनिंग अब बहुत सारा प्रतियोगिता के आयोजन भइल पोषण के लेके, जैसे रंगोली प्रतियोगिता।
0: हाँ,
1: अब रंगोली में का कि गर्भवती महिला के दिखावल कि गर्भवती महिला कितना समाज में महत्वपूर्ण है।
0: हाँ,
1: स्तनपान करावे के सही तरीका का बा।
0: हाँ,
1: बहुत माता लोग नहीं जानत लोग कि स्तनपान के अच्छा तरीका का बा।
0: हाँ, हाँ,
1: तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के काम है सब, तो ये सब गतिविधि के आयोजन भइल,
0: मतलब कल्चरल कुछ प्रोग्राम कई के।
1: हाँ,
0: एक तरह से प्रेरक के बिंदु बनावल।
1: जी जी जी। हाँ, हर विभाग के भी सहयोग मिलल, पंचायती राज के मिलल, बेसिक शिक्षा के मिलल, आ सबसे बड़ बात बाकी जिलाधिकारी महोदय या मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निरंतर वो लोग भी
0: निर्देशन
1: तो उसे गोरखपुर प्रथम स्थान प्राप्त कइल, आगे भी अच्छा प्रयास बाकी
0: 24 में भी।
1: जी जी जी जी, 24 में भी अच्छा स्थान के
0: मिले एकर आशा उम्मीद।
1: जी,
0: गोरखपुर जनपद में जो नया कदम एकरे तहत ICDS के तहत उठावल जाता, एकर 2024 में आप लोग अपने विभाग द्वारा का योजना बनैले हैं, एके भी तनी अब हमरे श्रोता लोगन के बताई दे।
1: अभी हमन के विभाग में बहुत अच्छा अच्छा काम होता, निदेशक महोदय के निर्देश में कई को एक बहुत अच्छा सक्षम आंगनबाड़ी के बहुत समृद्ध बनावल जाता। अभी एगो आंगनबाड़ी अच्छा आंगनबाड़ी खातिर एक नया कॉन्सेप्ट आयल बा पूरा प्रदेश खातिर, लर्निंग लैब।
0: अच्छा।
1: हर ब्लॉक में एगो आंगनबाड़ी केंद्र के मॉडल बनावल जाता जौन हर बिंदु पर पेयजल पर शौचालय पर हर मामले में उकर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहे,
0: स्वास्थ्य से संबंधित उकर हर बिंदु,
1: स्वास्थ्य पोषण से संबंधित हर चीज खातिर, प्री स्कूल शिक्षा खातिर एगो आंगनबाड़ी केंद्र कैसे आदर्श बनी, ए पर काम शुरू हो गइल बा।
0: हाँ, हाँ।
1: लगातार प्रयास बा। एकरा अलावा गोरखपुर जनपद में कुछ नया प्रयास होता, CDO साहब के निर्देशन में कुछ नया प्रयास चलता, ओकरा बारे में हम आकाशवाणी के श्रोता लोग भी बतावल चाहते नहीं। सबसे पहला कि एक नया मिशन शुरू भइल बा जनपद में, मिशन खिलखिलाहट।
0: अच्छा।
1: हाँ, एकरा अंतर्गत कुपोषित बच्चा जनबाड़न, सैम बच्चा कहली, लाल बच्चा कहली।

0: ये बच्चा लोग के लोग गोद लेता, अधिकारी लोग गोद लेता या
1: जनप्रतिनिधि
0: लोग गोद लेता
1: या यही सच। हाँ,
0: तो हमार तो और लोग से भी अपील बा कि कुपोषित बच्चा के गोद ली, ओके अपना तरफ से मदद करी कुपोषित बच्चा के परिवार के। सरकार के तो बहुत योजना बा।
1: एकर एक चीज हम आपके बात में रोकत है, एकर प्रक्रिया का आसान बा कि कुछ और कागजी कार्रवाई कहके ही लड़का के जो कुपोषित बच्चन के केहू अगर सक्षम आदमी गोद लेके ओके परवरिश या ओके उसे उबारल चाहता तो एकर प्रक्रिया आपके विभाग द्वारा या कोनो और विभाग द्वारा ही?
0: कर प्रक्रिया बहुत आसान बा। हमार ब्लॉक पर बैठे लालू बाल विकास परियोजना अधिकारी वो लोग से सूची ले लेला का काम बा कुपोषित बच्चा के। कुपोषित बच्चा के रुआ के घरे जाई सप्ताह 10 दिन पे स्वेच्छा से, रुआ चाही तो के जिसे केला दे दी दूध दे दी कुछ अपना तरफ से सरकार के तरफ से
1: पौष्टिक चीज
0: पहले ही दिया जाता, गेहूं दाल दलिया तेल चावल, एकरा अलावा केला दूध रुआ जौन चीज देव चाहतनी या रुआ मान ली अपन जन्मदिन मनावल चाहतनी।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश बा कि आंगनबाड़ी केंद्र के प्रति सब लोग जुड़ल रहे, आंगनबाड़ी के कुपोषित बच्चा जन बालो वो लोग के साथ रुआ उत्सव मनाई अपन जन्मदिन मना सकत।
1: का फले फूल दिहल जा सकेला कि कुछ जैसे रुपया में नगद में भी वो परिवार के देके कि भाई अपने हिसाब से तू पौष्टिक चीज खा,
0: फल फूल दे सकल जाता या स्वेच्छा से वो परिवार के
1: आर्थिक
0: भी मदद लोग कर सकता। लेकिन हमन के जो अभियान बा केला दूध या
1: फल फूल
0: फल फूल पर ज्यादा बा कि अपना सामने रुआ खियाई जाके आएगो खुद में भी रुआ बहुत अच्छा लगी कि
1: अपने हाथ से आप पहुंच के देते।
0: हाँ, कुपोषित बच्चा के रुआ
1: और जौने दिन स्वस्थ हुई सामने वाला भी तो महसूस करी कि आज हमारे सहयोग से लड़का और देश के हित में भी तो एक कदम होता।
0: जी जी जी।
1: डॉक्टर अभिनव कुमार मिश्रा जिला कार्यक्रम अधिकारी गोरखपुर, आप जानकारी देत रहनी ICDS योजना के अंतर्गत गोरखपुर में कुपोषित बच्चन खातिर का योजना सरकार द्वारा आपके विभाग द्वारा का चलता। आप हमारे स्टूडियो में आई इतना नीमन जानकारी श्रोता लोगन के दिली, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ बहन देखा इतना नीमन जानकारी खातिर इनकरा के दिल जा धन्यवाद और अपनी बैठकी में मन मनसा इन खातिर सुन लिया जाएगा गीत।

हाँ बहन देखो, अपनी बैठकी में मन मन साइन भी भइल आ हमन का जानकारी भी पूरा लेनी जा, लेकिन हमन का समय से बदल बाणी जा और घड़ी इशारा कर रहल बा आप सबसे विदा लेवे के। तो फिर मिले के, तब तक खातिर बहन सबके नमस्ते।

0: आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। शाम के 6 बजे को हैं। कुछ ही देर में आप हमारे केंद्र से क्रमशः भोजपुरी और हिंदी में क्षेत्रीय समाचार सुनेंगे।
1: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
2: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
1: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
2: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ बिरयार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथे हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के पहलका वर्षगांठ पर सशस्त्र बलन के शौर्य के नमन कर लिए हम हैं। एगो रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर भी बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। इस बीच भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से नव चयनित अभ्यर्थियन के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल भेल हैं। एह मौका पर वहाँ के कहने कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा नियुक्ति पत्र देवे वाला, सबसे बेसी एक्सप्रेस वे बनावे वाला और सबसे अधिका किसानन के इंसेंटिव देवे वाला राज्य बन चुकल हो।
2: आज मुझे प्रसन्नता है, देश के अंदर सबसे ज्यादा एमएसएमई, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम आज के दिन पे हमारे पास है, यूपी के पास है। 96,03,00,000 से अधिक लोग आज के दिन पे उनमें काम कर रहे हैं। 3,00,00,000 से अधिक। यूपी में गत वर्ष 4,000 से ज्यादा बड़े उद्योग आए और हम लोगों ने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योगों की संख्या को जो 14,000 थी अब उसकी संख्या बढ़कर के 32,000 से ऊपर ज्यादा बड़े बड़े उद्योग लगे हैं, जो कभी संभव ही नहीं था, आज वो संभव हुआ है।

0: सुनियोजित विकास का सशक्त आधार हो। वहाँ के प्रदेशवासियों से जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता का आह्वान कैली। स्वगणना के तहत 7 मई से 21 मई 2026 ले लोग आपन आ अपने परिवार का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन भर सके हैं। स्वगणना के बादे 22 मई से प्रगणक घरे घरे जाके डेटा इकट्ठा करी हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र के संबोधित कैले। इस मौका पर वहां के कहने की निर्यात बढ़ावे बदे बागवानी क्षेत्र के सज्जो पहलुअन पर काम करे खातिर एगो कार्यबल को गठन कैल जाए। केंद्रीय मंत्री कहलन की सरकार के कोशिश के नाते कई गो देश भारतीय फलन बदे आपन बाजार खोल देहले हमें।
1: भारत को हम दुनिया का फूड बास्केट बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयत्नों के कारण ऑस्ट्रेलिया में हम अनार और अंगूर अब भेज पाएंगे, उन्होंने बाजार खोला है। अर्जेंटीना में आम अब हमारा पहुंच पाएगा, कनाडा में केले, जापान में आम, मलेशिया में भी आम, न्यूजीलैंड में अनार के दाने, सर्बिया में खट्टे फल और अनार के दाने, दक्षिण अफ्रीका के बाजार में एक्सेस मिल गई है भारतीय आम को।
0: अयोध्या के सरयू नदी के लक्ष्मण घाट इलाका में नहाए गए 5 श्रद्धालु आज गहरा पानी में डूबे लगले। हमने का अयोध्या प्रतिनिधि बतौलन की जल पुलिस के मदद से 2 श्रद्धालुओं के बचा लेहल गई बा। आखिरी समाचार मिलले ले वहाँ 3 श्रद्धालु नौजवानन का तलाश जारी रहे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब से थोड़ी के देर बादे संझा 7:30 से मैच खेलल जाए। यह मुकाबला के देखत आज दोपहरिया 3 से लेके मैच खत्म भइले ले स्टेडियम के लगे यातायात डायवर्जन लागू बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर भी बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। इस बीच भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 9 चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा नियुक्ति पत्र देने वाला, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे बनाने वाला और सबसे ज़्यादा किसानों को इंसेंटिव देने वाला राज्य बन चुका है।
3: आज मुझे प्रसन्नता है, देश के अंदर सबसे ज्यादा एमएसएमई सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम आज के दिन पे हमारे पास है, यूपी के पास है। 96,03,00,000 से अधिक लोग आज के दिन पे उनमें काम कर रहे हैं। 3,00,00,000 से अधिक। यूपी में गत वर्ष 4,000 से ज्यादा बड़े उद्योग आए और हम लोगों ने पिछले 9 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योगों की संख्या को जो 14,000 थी अब उसकी संख्या बढ़कर के 32,000 से ऊपर ज्यादा बड़े बड़े उद्योग लगे हैं, जो कभी संभव ही नहीं था, आज जो संभव हुआ है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से जनगणना

0: 2027 के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रदेश भर में स्वगणना की भी शुरुआत हो गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना केवल लोगों की गणना नहीं बल्कि समग्र समावेशी और सुनियोजित विकास का सशक्त आधार है। उन्होंने प्रदेशवासियों से जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। स्वगणना के अंतर्गत 7 मई से 21 मई 2026 तक लोग अपना और अपने परिवार का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन भर सकेंगे। स्वगणना के बाद 22 मई से प्रगणक घर घर जाकर डेटा का संकलन करेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निर्यात बढ़ाने के लिए बागवानी क्षेत्र के सभी पहलुओं पर काम करने से संबंधित एक कार्यबल का गठन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण कई देशों ने भारतीय फलों के लिए अपने बाजार खोल दिए हैं।
1: भारत को हम दुनिया का फूड बास्केट बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयत्नों के कारण ऑस्ट्रेलिया में हम अनार और अंगूर अब भेज पाएंगे, उन्होंने बाजार खोला है। अर्जेंटीना में आम अब हमारा पहुंच पाएगा, कनाडा में केले, जापान में आम, मलेशिया में भी आम, न्यूजीलैंड में अनार के दाने, सर्बिया में खट्टे फल और अनार के फल और अनार के दाने, दक्षिण अफ्रीका के बाजार में एक्सेस मिल गई है भारतीय आम को।
0: अयोध्या के सरयू नदी के लक्ष्मण घाट क्षेत्र में स्नान के लिए गए 5 श्रद्धालु आज गहरे पानी में डूबने लगे। हमारे अयोध्या प्रतिनिधि ने बताया कि जल पुलिस की मदद से 2 श्रद्धालुओं को बचा लिया गया। अंतिम समाचार मिलने तक वहां 3 श्रद्धालु युवकों की तलाश जारी थी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब से थोड़ी देर बाद शाम 7:30 बजे से मैच खेला जाएगा। इस मुकाबले को देखते हुए आज दोपहर 3 बजे से मैच के समाप्त होने तक स्टेडियम के आसपास यातायात डायवर्जन लागू किया गया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: पंचो जय जवान जय किसान।
2: हाँ भाई देखा अपन बैठकी शुरू हो गए। आज हमने के अपनी बैठकी में चर्चा करे के काहे कि ये समय जोन बाटे देखा आम की पेड़ पर जैसे फल लग गई बाटे चाहे जे भी पंच भाई लोग बाटे फलदार बग में बाग में कौन सा माइक कार्य होला तनी ओह पर जानकारी दे देते तब बढ़िया।
1: भैया लोग अप्रैल और मई का महीना जोन बा ये समय अधिकतर जोन पेड़ बाड़ा ऊपर फल लग गई बाड़ा भैया तो ऐसने में फलदार जोन बन वृक्ष बाड़ा ओमन तरह तरह का काम रहला जैसे कि आम बा लीची बा अमरूद बा नींबू बा ये सब जोन फल लगल बा भैया ये समय जोन बा गिरले डर जाते रहला। कई बार जोन बा अपने आप जोन बा छोट छोट बा जब तब जोन बा गिरे लगाला कांस के तापमान बढ़ जाला 40 डिग्री के आसपास जब तापमान चल जाला और हवा जब बहे लगेले लू चलला तो ओकर असर पड़ाला और जोन बा फल टूट के गिरे लगाला। ऐसने में भैया जे जे बागवानी बाग बगीचा लगौले बा पेड़ पर फल बा उ लोगन के ध्यान देवे चाहिए कि कैसे जोन बा कि फल गिरे ना पेड़ पर से। ऐसने भैया खास करके जोन बा जो जरूरी काम है वो जैसे आम का पेड़ बा ओमन 10 से 12 दिन पर हल्की सिंचाई जरूर कर देवे चाहिए ओमन पानी डाल देवे चाहिए पानी जब पड़ी तो उसे जोन बा फल गिरले के तनी संभावना कम रहला। और ओकर बाद भी अगर फल गिरले के थी बात ऊपर जोन कीटनाशक दवा का जरूरत बा वो जोन बा वैज्ञानिक सलाह लेकर के वो लोगों के जोन बा ऊपर छिड़काव करे के चाहिए। वैसे ही भैया लीची बा लीची पर भी जोन बा फल गिरले के सम डर रहला इस समय तो वहाँ 5-7 दिन पर जोन बा सिंचाई कर देवे के चाहिए। केला में भी भैया जब 5 फीट का केला हो जा तो ऐसने में जोन बा आंधी और पानी अल आवाला तो उस समय जोन बा अधिकतर पौधा गिरले के डर रहला। ऐसने में बांस वाली लगा के ओके बांध देवे चाहिए ताकि गिरे न।
2: जी बिल्कुल तो देखा ये तो बात रहल है फलदार बागन में सामायिक कार्य का लेकिन अपनी बैठकी में अब अपनी पंच भाई के सुनवा दिया जाएगा बातचीत जल भराव वाले क्षेत्रों में धान की कृषि डॉक्टर एस के तोमर से उनसे बातचीत करता ना विनय कुमार।
3: तो अपने पूर्वांचल में बहुत ऐसा खेत बा जौना में बरसात में ज्यादा पानी लग जाला आ खेत परती रह जाला ओमे धान का फसल ना उगा पावेला लोग लेकिन कृषि वैज्ञानिक लोग की मदद से ऐसा बहुत धान का प्रजात बाड़ी कि अगर आपका खेत गहरा बाटे जौने में जल भराव का दिक्कत होले ओकरे खातिर अलग अलग धान का प्रजाति बा आ ओकर बुआई गर्मी में कईल जाला। यही से संबंधित जानकारी देवे खातिर फोन लाइन से जुड़ल हूँ कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार जनपद गोरखपुर का वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रभारी अधिकारी डॉक्टर एस के तोमर जी। सबसे पहले आपका हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा। डॉक्टर साहब कौन कौन ऐसा प्रजाति हैं जौन की गहरा पानी में लगावल जा सकेला?
4: धान की खरीफ प्रमुख फसल होती है और धान की जो क्षेत्र जहाँ पर जल भराव होता है वहां पर जो है जो प्रजातियां ली जाती हैं वो ऐसी प्रजातियां ली जाती हैं जहां पानी लगने से नुकसान ना हो। इसमें प्रमुख रूप से जो प्रजातियां हैं उसमें सांभा सबवन स्वर्णा सबवन ये दो प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें ऐसा जीन डाला गया है जिससे ये 10-12 दिन पानी में डूबने के बाद भी इनमें पैदावार मिल जाती है। तो किसान भाइयों को एक तो इन प्रजातियों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी जो किसान भाई के यहाँ पानी तो लगता है लेकिन पानी आ करके और निकल जाता है और ज्यादा दिन तक पानी नहीं रहता है तो वहां पर चिरान सबवन एक वैरायटी है उसको भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। ये कम दिन की प्रजाति है और जल्दी तैयार हो जाती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जल भराव की ज्यादा देर तक समस्या नहीं होती इस प्रजाति को किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जल भराव की भी 2-3 कंडीशन होती हैं। एक होता है कि कम जल भराव पानी तो लगता है लेकिन उसकी जो पानी की मात्रा होती है वो 30 सेंटीमीटर से कम होती है 30 सेंटीमीटर ज्यादा होते तो जहां पर पानी का जल भराव कम होता है वहां पर सामान्य जो प्रजाति हमारी है, BPT 5204 है या MT 7029 जिसको हम स्वर्णा कहते हैं, उन प्रजातियों को भी किसान भाई बुआई कर सकते हैं। लेकिन जल भराव वाले जो क्षेत्र हैं, बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र हैं, जहाँ पर पानी काफी देर तक रहता है, ज्यादा मात्रा में पानी रहता है और कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि डूब जाता है, वहां पर स्वर्णा सब्वन और सांवा सब्वन को किसान भाई को प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जल लहरी है, इस प्रजाति को भी आप जहां तक 30 से 50 सेंटीमीटर तक पानी आपके खेत में लगता है, इस प्रजाति को प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो पानी की साथ साथ बढ़ती हैं। वाटर लेवल, अगर जल का आपके खेत में लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसी के हिसाब से कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो अपनी लंबाई को बढ़ाती रहती हैं, जिसमें खास करके जलप्रिया और जलनिधि, ये दो प्रजातियां ऐसी हैं जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे इनकी हाइट बढ़ती जाती है और ये बहुत ही लंबी अवधि की प्रजातियां होती हैं, बहुत देर से विलंब से ये कटती हैं।
3: डॉक्टर साहब, जौन प्रजाति बतौली है कुल, ओकरे बुआई का तरीका का है, वैज्ञानिक तरीका का है, जौना के वजह से बुआई कई जा तो जहाँ कोनो फसल ना होत बा वजह से भी यह साल धान के फसल काटल जा सकेला।
4: जल भराव वाले क्षेत्रों में जहाँ पानी लगता है, वहाँ पर ये संस्तुति है कि किसान भाई जब पानी आता है अपने यहाँ, जो बरसात का शुरू होता है, ये मान के चलते हैं कि 20 जून के बाद मानसून ऑनसेट होता है, मानसून आने का जो समय होता है, तो उसके पहले आपका जो धान है वो जम करके और इस कंडीशन में आ जाए कि पानी अगर आए भी तो उसको नुकसान ना हो। तो इसलिए हमको मई के लास्ट में, 20 मई के बाद से लेकर के जून के प्रथम पखवाड़े तक, हर हाल में ऐसे क्षेत्रों में बुआई कर लेनी चाहिए जहां पर पानी लगने की संभावना होती है। बुआई करने के लिए आप जो है धान की सीधी बुआई करें, इससे आपका लागत कम होगा कि अगर बाढ़ से नुकसान भी होता है, पानी से नुकसान भी होता है, तो लागत कम रहेगी तो आपको ज्यादा खलेगा नहीं। और इसके लिए जीरो टिल मशीन एक आती है, उसमें खेत तैयार करके आप धान की सीधी बिजाई आप इस मशीन के द्वारा कर सकते।
3: धान का जौन सीधा बुआई खेत में होई, ओकर बीज का मात्रा और लाइन से लाइन का दूरी और साथ ही साथ खाद कितना देवे के पड़ी प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ के हिसाब से?
4: हाँ, धान की जो बीज की मात्रा है जीरो टिल मशीन से जब आप बुआई करते हैं, तो ये जो प्रजाति हमने बताई है ये ज्यादातर मोटे धान वाली प्रजातियां हैं और इनकी जो बीज की मात्रा है वो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको लगेगा जीरो टिल मशीन से जब आप बुआई करेंगे। और बुआई करने के लिए जो लाइन से लाइन की दूरी बताया, जब जीरो टिल मशीन से आप बुआई करेंगे तो उसमें और निश्चित रूप से जो उसके फार होते हैं वो एक निश्चित दूरी पर बंधे होते हैं, ये 18 से 20 सेंटीमीटर की दूरी इससे लाइन की आती है। और तीसरी बात, आपने पूछा खाद की मात्रा कितनी लगेगी, तो जो खाद की मात्रा हम लोग सामान्य धान में देते हैं उसी की तरह से इसमें भी हम धान की बुआई के समय जो मात्रा है वो हमें देनी है, बाद में पानी की टॉप ड्रेसिंग के उसके हिसाब से हमको करना है। तो 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई को इसमें प्रयोग करना चाहिए। इसमें से फास्फोरस और पोटास जो है वो किसान भाई को बुआई के समय, और जो नत्रजन की मात्रा है वो आधी नत्रजन की मात्रा आप बुआई के समय दे दें। बाद में पता चलता है कि पानी लग गया तो नहीं प्रयोग कर पाते हैं, अगर कम पानी रहता है तो आप बाकी बची हुई जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको 2 से 3 बार में आप दे दें।
3: सबसे बढ़न समस्या होला कि गर्मी में धान का सीधा बुआई करे के बाटे, तो एक तो खेत का नमी और दूसर का खरपतवार नियंत्रण, यह दोनों समस्या का समाधान कैसे करें किसान भाई?
4: देखिए, नमी की जहां तक बात है तो ऐसे क्षेत्रों में अगर बरसात नहीं होती है, जैसे इस साल अगर हम देख रहे हैं हर 7वें 8वें दिन बरसात औसत जो है सर्दी से लेकर के अब तक हो जा रही है, इसका लाभ हमारे जो किसान भाई है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र वाले या जल भराव क्षेत्र वाले, वो किसान भाई इसका लाभ उठा सकते हैं अभी खेत को अच्छे से तैयार करके। और किसान भाई जो है इसको बुआई कर सकते हैं धान की। दूसरी चीज आपने पूछी खरपतवार नियंत्रण का। देखिए धान की सीधी बुवाई में जो खरपतवार नियंत्रण की बात है उसमें दो चीज का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये है कि बुआई के 48 घंटे के अंदर आप जब धान की सीधी बुआई जीरो टिल मशीन से करते हैं तो बुआई के 48 घंटे के अंदर पेंडामिथिलीन एक दवाई आती है खर मारने की, उसकी 3.3 लीटर मात्रा को आप घोल करके पानी में 700 लीटर पानी में घोल लें और उसका जमीन के ऊपर छिड़काव कर दें तो ये खरपतवारों के जमाव को काफी हद तक कंट्रोल करता है। दूसरा, अगर आपके खेत में खरपतवारों का जमाव हो गया है, लगभग 25 से 30 दिन लगते हैं इसको, तो उसमें उस समय आप जो है बिस्पेरीबैक सोडियम 10 SC का ये आता है और इसके साथ में पायरोजो सल्फुरान इसकी 80 ग्राम मात्रा, बिस्पेरीबैक सोडियम 200 ml, इन दोनों दवाइयों को मिला करके आप स्प्रे करेंगे बुआई के 25 से 30 दिन पर, जब खेत में आपके खरपतवार 2 से 4 पत्ती के हो जाएं, उस समय आप इसका छिड़काव करेंगे तो आपको खरपतवार नियंत्रण काफी हद तक आप इसको कंट्रोल कर लेंगे।
3: डॉक्टर साहब, ये जौन खरपतवार नाशी बतौली हैं, ये दो लाइन के बीच में छिड़के के परी या पूरा धान के
4: नहीं
3: फसल
4: नहीं
3: पर ही?
4: ये पूरे धान की फसल में एक तरह से छिड़की, सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है ये, धान को कुछ नहीं कहता है और जितने भी खरपतवार होंगे आपको उनको वो कंट्रोल कर लेता है। इसका आप छिड़काव करें और इसके ये ध्यान रखें कि मात्रा और छिड़काव का समय, दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण होती हैं खरपतवार नियंत्रण में। जैसे हमने बताया हमारे यहाँ छोटे किसान हैं, मैं एकड़ में बता देता हूँ मात्रा इन किसान भाइयों को। देखिए 100 ml बिस्पेरीबैक सोडियम, जिसको आप विभिन्न नामों से, व्यापारिक नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, बिस्पेरीबैक सोडियम 100 ml प्रति एकड़ और 80 ग्राम पायरोजो सल्फुरान, इन दोनों दवाइयों को मिला करके आप 150 लीटर पानी में घोल लें और इसका बुआई के 25 से 30 दिन पर आप इसका छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के लिए आप ये ध्यान रखें कि आपका जो नोजल है वो अच्छा होना चाहिए, फ्लैट पैन नोजल का आप इस्तेमाल करें और जब आप स्प्रे करते हैं तो जमीन से आपके नोजल की जो ऊंचाई है वो 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिससे आपका जो है सही ड्रिफ जो है वो पत्ती पर गिरती है।
3: फुहार बढ़िया से
4: हाँ
3: खरपतवार पर पड़ जा और धान
4: जी
3: के भी फसल पर।
4: हाँ, धान पे पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है,
3: अच्छा डॉक्टर
4: एक तरफ
3: साहब,
4: सब।
3: गर्मी के महीना में का एकर गुड़ाई भी कैल जरूरी बा या वैसे खाली खरपतवार नाशी के प्रयोग करके फसल के छोड़ देवे के बा?
4: देखिए गुड़ाई करना अगर आपके पास सस्ता श्रम उपलब्ध है तो आप खरपतवार नाशी का जो छिड़काव करते हैं उसको बचा सकते हैं, उसके लिए निराई गुड़ाई आप कर दें तो सबसे अच्छी विधि तो वही होती है। लेकिन चूंकि श्रम उपलब्ध नहीं है या मिलता नहीं है समय से, इसलिए खरपतवार नाशियों का सहारा लेना पड़ता है।
3: कीड़ा आ बीमारी का कोनो बरसात अइला के पहले में लगला का संभावना रहेला?
4: देखिए जो ऐसे क्षेत्र हैं उनमें बरसात के पहले कोई ऐसा रोग या बीमारी देखने को नहीं मिलता है सामान्यतः, लेकिन ये है कि किसान भाई जब भी बुआई करें आप बीज को शोधित करके जो है बुआई करें और शोधित करने के लिए आप बावस्टीन का इस्तेमाल करें, थीरम का भी इस्तेमाल करें, इनका आप शोधित करके बुआई करेंगे तो धान में ज्यादा समस्याएं नहीं आती। धान में समस्या तभी आती है जब जल भराव हो जाता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो उस समय शीत ब्लाइट का प्रकोप होता है और बाद में चल के जो आपका झुलसा आता है, बैक्टीरियल ब्लाइट जिसको कहते हैं, वो आता है तो ये तो बाद की स्टेज में है, आता है।
3: जल भराव वाले क्षेत्र में धान का कौन कौन प्रजाति लगावे के चाही, ओकर लगावला का कृषि तकनीक का हो सकेला, इससे संबंधित डॉक्टर एस के तोमर जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र बेली पार, आप इतना अच्छा जानकारी दिहनी, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ भैया, बातचीत सुनल गई। जल भराव वाले क्षेत्रों में धान की कृषि जानकारी देते हैं डॉक्टर एस के तोमर और उनसे बतियों विनय कुमार, तिनके दिया धन्यवाद। और हाँ भैया, लगे हाथ सुन लिया एगो गीत।

0: हाँ भैया लोगन, मन मन साइन भइल सुनल गेल गीत। भैया देखिए, जौन बा आजकल बहुत किसान भाई लोग जौन बा कई तरह के जो बकरी पालन चाहे पशुपालन कैले बाड़ा भैया, तो ये लोग जौन बा कैसे ओके जौन बा व्यवस्थित करें, बढ़िया से करें कि जैसे उसको लाभ मिली। तो भैया एकरे खातिर एक वार्ता सुनल जाए, बकरी पालन से लाभ जानकारी देते हैं डॉक्टर विजय चंद्रा।
1: पालन मुख्यतः दूध व मांस के लिए किया जाता है। बकरी गरीबों की गाय मानी जाती है। ये एक ऐसा दुधारू पशु है जिसे गरीब लोग भी रख सकते हैं। भूमिहीन, लघु व सीमांत कृषकों के लिए बकरी पालन एक अच्छा एवं लाभकारी रोजगार है। जिन स्थानों पर दूध देने वाले बड़े पशुओं की अधिक स्थान घेरने, अधिक पूंजी लगाने और अधिक चारे दाने की इंतजाम न होने के कारण बड़े पशुपालन कठिन हो जाते हैं, वहाँ पर बकरी को सफलतापूर्वक पाला जा सकता है। बकरियां ऐसे अनेक खाद्य पदार्थों को चाव से खा लेती हैं जो आमतौर पर व्यर्थ समझे जाते हैं। बकरियों का दूध आसानी से हजम हो जाने के कारण रोगियों को बहुत उपयोगी होता है। गुणों में बकरी का दूध माँ के दूध के समान होने के कारण मनुष्य के नवजात शिशुओं को पिलाने के काम भी लाया जाता है। अच्छे गुणों वाला दूध देने इसके साथ साथ बकरियों को अच्छे प्रकार का मांस भी मिलता है। दूध देना बंद करने पर बकरियाँ व बकरों के मांस के लिए बेचने को अच्छा पैसा मिल जाता है। बकरियों के मैंगनी से बढ़िया किस्म के खाद मिलती है। मरने के बाद इनको खा ले काफ़ी पैसे में बिक जाते हैं। हमारे भारत देश की प्रमुख नस्लें हैं जमुनापारी, बर्बरी, ब्लैक बंगाल। हमारे पूर्वांचल में सबसे उपयुक्त बर्बरी की जो नस्ल हैं वो बर्बरी है और ब्लैक बंगाल। बर्बरी नस्ल ये बकरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब व हरियाणा के मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इस नस्ल की बकरियाँ 13 से 14 माह के समय में 2 बार ब्याती हैं और 1 बार में 2 बच्चे देती हैं। इन बकरियों का आकार छोटा होने के कारण इनके बच्चे वयस्क होने में कम समय लेते हैं। अक्टूबर में जन्मी मादा निश्चय ही मई में गर्भित होकर सितंबर से पहले ब्याती हैं। ब्लैक बंगाल की खूबी ये है, ये नस्ल मुख्यतः पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश व उत्तरी उड़ीसा में पाई जाती है। इसके बकरे का वजन 11 से 15 किलोग्राम और बकरी का वजन 8 से 13 किलोग्राम होता है। इस नस्ल की बकरियों से अच्छे प्रकार के मांस मिलते हैं। बकरियों का भोजन, किसान भाई बकरियां स्वभाव से घूमना फिरना अधिक पसंद करती हैं। देखा गया है कि जमुनापारी बकरी अपने मूल स्थान से चक्कर नगर में नदी के किनारे पर पाए जाने वाले छोटे छोटे पौधे अर्थात करील, बेर, झरबेर आदि की पत्तियाँ अपने पैरों के सहारे खड़े होकर खाने के विशेष चाव रखती हैं। बांध कर खाना इस नस्ल की पसंद नहीं है, परंतु कुछ समय तक बांध कर खिलाने की आदत डालने से ऐसा संभव हो सकता है। बर्बरी नस्ल की बकरी बांध कर खिलाई जा सकती है। बकरियों के मुख्य चारे हैं पत्तियां, घासें, खरपतवार, साग सब्जियों के व्यर्थ भाग, उगाए जाने वाले चारे लोबिया, रिजका, जई, लूसर्न आदि, सूखे चारे अरहर, चना, मटर, मूंग व उड़द आदि की भूसा। नवजात बच्चों को आहार व्यवस्था विशेष ध्यान देनी चाहिए। बच्चों के पैदा होने के 4-5 दिनों तक उन्हें खीस, प्योस जिसको हम कहते हैं, कोलेस्ट्रम जिसको कहते हैं, पिलाई जाती है और उसके पश्चात उन्हें माँ से अलग कर दिया जाता है। फिर इन्हें दिन में 2-3 बार थनों से अलग कर थोड़ा थोड़ा दूध पिलाया जाता है। थनों द्वारा दूध न पी सकने की दशा में बोतल से भी दूध पिलाया जा सकता है। दूध के अतिरिक्त बच्चों को क्रीप आहार और अच्छे गुण वाला द्विदलीय सूखा चारा, हे तथा खनिज पदार्थ भी खिलाए जाते हैं। बच्चों को साफ व ताज़ा पानी हरदम काफ़ी मात्रा में पिलाना चाहिए। गर्भित बकरियों के आहार व्यवस्था हम कैसे करें? गर्भित बकरियों के आहार खिलाने में माँ के शरीर में पल रहे बच्चे के भोजन का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। इस दशा में गर्भित बकरियों के अतिरिक्त पौष्टिक तत्व न देने से उनके शरीर के तत्व बच्चों के शरीर में चले आते हैं और माँ के शरीर में कमजोरी आ जाती है। इसलिए गर्भकाल में आखिरी

0: समय में बकरियों को अच्छे गुण वाला द्विदलीय चारा और लगभग 500 ग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन देना चाहिए। दाना मिश्रण आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। एक भाग गेहूं का दाना, दो भाग मक्का, एक भाग अलसी की खली, ये आप तोड़ करके जो है आप अपने बकरियों को देना निश्चित करना चाहिए। बकरियों के मुख्य रोग निमोनिया है, गर्भपात है, अफारा है। निमोनिया बकरियों की ये एक खतरनाक बीमारी है। ये साधारण ठंड लगने अथवा रहने के स्थान की दशा में कारण होती है। ठंड लग जाने के कारण पशु को तेज बुखार हो जाता है, भूख कम हो जाती है, सांस फूलती है और कभी कभी खांसी भी हो जाती है। ऐसी दशा में पशु को सूखे स्थान में रखना चाहिए, जहाँ पर पशु स्वच्छ वायु तो मिले ही परंतु ठंडी हवा के झोंके ना लगें। पशु को पीठ तथा छाती पर मोटा कपड़ा लपेट कर उसे गर्म रखना चाहिए। पशु के शरीर पर तारपीन के तेल अथवा सरसों के तेल और पानी को गुनगुना गर्म करके मिश्रण तैयार करके उनके सीने पर मालिश करना चाहिए। डेढ़ घंटे के बाद इसे हटा देना चाहिए और पशु चिकित्सक को दिखाकर दवाई लेनी चाहिए। गर्भपात बकरियों का ये महत्वपूर्ण रोग है, जिसमें गर्भकाल के पूर्व ही बकरी बच्चे दे देती हैं। इसका कारण पशुओं का आपस में लड़ना, डर जाना, सदमा लगना, अधिक थक जाना या गलत भोजन खिलाना है। इन कारणों से पशु को चिकित्सक की देखरेख में उचित दवाई ही खिलानी चाहिए। अफारा ये बकरियों में अक्सर होता है। अधिक मात्रा में हरे चारे जैसे लूसर्न, बरसीम, ज्वार व चने के दाने खाने से बकरियों को अफारा हो जाता है। इसमें पशु के पेट में अधिक मात्रा में गैस इकट्ठी हो जाने से पेट का बायां हिस्सा फूल जाता है। ऐसे में रोगी को खाना बंद कर देना चाहिए और उसे दवा देनी चाहिए। सरसों का तेल आधा लीटर तथा तारपीन का तेल 25 मिलीलीटर के हिसाब से मिलाकर पशु को खिलाने से लाभ होता है। जुलामी नमक मैक्सेल्फ तथा सादा नमक 250 ग्राम, सौंठ 30 ग्राम तथा सीरा आधा किलो मिलाकर पशु को 2-3 दिन तक देना चाहिए। ये हल्के जुलाब का असर करती है।
1: हाँ भैया, देखो वार्ता सुनल गई बकरी पालन से लाभ, जानकारी देते हैं डॉक्टर विजय सिन्हा, तो भैया इनके दिल जहाँ धन्यवाद। भैया देखें जो अपने स्टूडियो के जौन घड़ी बा वो इशारा करतिया कि अपनी बैठकी के समय पूरा भइल तो चल जा। पंचो जय जवान जय किसान।

0: का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: नृत्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: आकाशवाणी का एक गोरखपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना। इम्तियाज अंसारी बताते हैं कि इनकी पुत्री नरगिस परवीन दिनांक 24/3/2026 से लापता हैं। इनके बारे में अगर किसी सज्जन को कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करें। ग्राम व पोस्ट नगरा, नगर पंचायत नगरा, वार्ड नंबर 9, थाना नगरा, जिला बलिया। जिलाजीत शर्मा बताते हैं कि उनकी पुत्री अंजलि शर्मा जो ग्राम बहुताचक से लापता हैं, इनके बारे में अगर किसी सज्जन को कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करें। ग्राम व पोस्ट बहुताचक, उपाध्याय, थाना उभाव, जिला बलिया। जावेद अहमद बताते हैं कि उनकी पुत्री रेशमा खातून उर्फ जूही दिनांक 22/3/2026 से लापता हैं। इनके बारे में अगर किसी सज्जन को कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करें। ग्राम मोलनापुर, पोस्ट रामपुर, कानूनगोयना, थाना उभाव, जिला बलिया। या आप इस मोबाइल नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9913510702। राजू बताते हैं कि इनकी पत्नी रेखा दिनांक 13/3/2026 से लापता हैं। इनके बारे में अगर किसी सज्जन को कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करें। ग्राम बेलौर, पोस्ट सहतवार, थाना सहतवार, जिला बलिया। या आप इस मोबाइल नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7355-733765। स्वामीनाथ चौहान बताते हैं कि इनकी पुत्री नीतू दिनांक 2/4/2026 से लापता हैं। इनके बारे में अगर किसी सज्जन को कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करें। ग्राम शाहपुर, पोस्ट बांसडीह, थाना बांसडीह, जिला बलिया। या आप इस मोबाइल नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8009571035। खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुए। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में लीजिए सुनिए रोजिद अली को।
0: साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंच

लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में अभी आप सुन रहे थे रोजिद अली को। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। भोजपुरी बोली के कार्यक्रम देश हमार में लीजिए सुनिए काव्य पाठ।

0: ही जो देख रहा है उसके लिए भी प्रयुक्त होता है और जो दिखाई दे रहा है उसके लिए भी प्रयुक्त होता है
1: जी।
0: देखने वाला भी लोक होता है
1: और दिखाई देने वाला
0: भी लोक होता है।
1: बिल्कुल सही,
0: जो हमको देख रहा है और जिसको हम देख रहे हैं। अब हमारी आंखों के सामने जो दुनिया का विस्तार है, जो पशु पक्षी हैं, जो वनस्पतियां हैं, जो हरियाली है, जो सूखा है, जो मनुष्य है, पूरा प्राणी जगत है, जो प्राकृतिक संपदा है, अपरंपार वैभव है, यह सब लोक के अंतर्गत आता है।
1: बिल्कुल सही।
0: और इसे यह क्या हुआ ना कि लोक को जब अंग्रेजी के माध्यम से हम लोगों ने चीजों को समझना शुरू किया
1: फोक
0: का अनुवाद, लोक को फोक के अनुवाद के रूप में देखा जाने लगा।
1: जी जी जी।
0: जो बुनियादी गलती हुई इस अध्ययन के क्रम में,
1: बिल्कुल
0: उस, और ये हमारी जो लोक की परंपरा है, मैं आपको बताऊं, थोड़ा बहुत विस्तार हो जाएगा।
1: नहीं नहीं, विस्तार करिए।
0: कि वाल्मीकि ने जो रामायण की कथा लिखी है, जब कहते हैं वाल्मीकि के उसमें रामायण में ये बात है कि वाल्मीकि को जब क्रौंच पक्षी का वध देखकर श्लोक उनके मन में आया और उन्होंने वो पहला आर्या छंद पढ़ा था, मानुषात प्रतिष्ठाम तमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनात् एकम वधि काम मोहितम्, उन्हें कविता की शक्ति मिली तो वो नारद के पास गए
1: जी।
0: उन्होंने पूछा कि अब मैं इसका क्या करूं, तो नारद ने उनसे कहा कि लोक में प्रचलित राम की कथा का गान करो
1: जी।
0: हमारा जो आदि काव्य है, पूरा भारतीय भाषाओं का जो आदि काव्य है, वह लोक में प्रचलित राम की कथा का गायन है। हमारा लोक वह है।
1: बिल्कुल सही। और इसी से मिलती जुलती एक जो बात सामने आती है कि उस उनकी रामचरित उन्होंने लिखा रामायण के माध्यम से, रामायण में, और उसके लिए उनको आशीर्वाद भी मिला ब्रह्मा का कि लोकेषु प्रचरिष्यति, यानी लोक में ये प्रचलित होगी कृति। तो लोक का अर्थ गवई या गांव नहीं है।
0: जब राम भवभूति में, सातवीं शताब्दी के कवि हैं
1: जी,
0: भवभूति ने जब राम से कहवाया, भवभूति के राम कहते हैं
1: जी,
0: कि स्नेहम दयाम च सौख्यम यदि वा जानकीम अपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। लोक के आराधन के लिए स्नेह दया मित्रता और सीता को छोड़ने में भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। तो लोक की यह महानता
1: जी
0: हमारी परंपरा में स्वीकृत रही है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र जी कि ये जो लोक की परंपरा है, लोक का जो सौंदर्य है, ये जो साहित्य है उसमें मुखरित होता है। जैसे सीता की बात चली तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस में वो कितना अच्छा प्रसंग है कि जब वनवास है, हो रहा है और वो लोग जा रहे हैं, तो जो गांव की स्त्रियां हैं वो सीता से पूछती हैं कि इन दोनों तापस कुमारों में कौन कौन है, तो लक्ष्मण का वो परिचय देती हैं, लेकिन संकेतों में बताती हैं राम के बारे में। ये हमारे मतलब तुलसीदास के
0: कवितावली में,
1: जी जी,
0: कवितावली का प्रसंग है।
1: अच्छा अच्छा, रामचरितमानस का नहीं जी। तो ये प्रसंग मतलब राम और सीता से,
0: पूछत ग्राम वधू सिय सो सखी सांवरे सो रावरे को है।
1: जी जी जी जी जी। तो वो जो
0: तिरछे कर नयन दिशाएं तिन्हें समझाए कछु मुस्काई चली
1: जी,
0: वो सीता जो उत्तर देती हैं कुछ कहती नहीं है।
1: हाँ, हाँ, बस संकेत से बता देती है कि
0: कर नयन दिशाएं इशारा करते हुए
1: जी
0: मुस्काई कछु समझाई चली
1: जी। तो वो जो एक लोक की सौंदर्य चेतना है जिसका वर्णन तुलसी करते हैं अपने,
0: जी जी, तुलसीदास ने भी मतलब लोक को बहुत महत्व दिया है। बल्कि उन्होंने कहा है कि कहब लोक मत साधु मत नृप नय निगम निचोरी। मानी लोक मत को उन्होंने साधु मत के बराबर, शास्त्र मत के समानांतर रखा है, राजनीति के ऊपर रखा है।
1: जी जी जी।
0: तो हमारा जो

0: मानस में भी ये प्रसंग आया है, बन जाते हुए स्त्रियों का पूछना। जी जी जी जी, तो हम फिर से लोक चेतना पर आते हैं कि हमें लगता है कि ये जो तथ्य है हमारे यहाँ प्रचलित कि जो लोक में नहीं है वो कहीं नहीं है, वेदों में भी नहीं है, वो सत्य है। और कई कई बार होता है कि लोक जो है वो वेदों से या पुराणों से बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एक छोटा सा लोक संस्कृति का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि गंगा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं से जुड़ती हैं, यानी विष्णुपद से निकलती हैं वो, फिर ब्रह्मा अपने कमंडल में उनको लेना चाहते हैं, वहां से भी वो निकलती हैं, फिर शिव अपनी जटाओं में बांधने की कोशिश करते हैं, गंगा वहां भी नहीं बंधती हैं और निकल पड़ती हैं। लेकिन उसी गंगा को, जो गंगा तीनों देवताओं से नहीं बंध पाती, उसी गंगा को हमारा लोक एक मूंज की रस्सी में कुछ फूल लगा के और आरपार की माला से बांधता है, बांधने की कोशिश करता है।
1: हमारा जो लोक का पूरा वितान है ना
0: जी,
1: तो अक्सर लोक और शास्त्र की चर्चा की जाती है और कुछ बहुत ज्यादा विद्वान लोग, बहुत ज्यादा पारंगत लोग, बहुत ज्यादा किताबी लोग मैं कहूँ
0: जी,
1: वो शास्त्र को प्रमाण मानते हैं
0: जी,
1: कि शास्त्र में यह है।
0: हाँ।
1: शास्त्र में यह है।
0: हाँ।
1: लेकिन खुद शास्त्र लोक को प्रमाण मानता है।
0: हाँ।
1: अक्सर शास्त्र जब कोई सिद्धांत, किसी सिद्धांत का निर्वचन करता है तो वो उसमें आता है कि यथा लोके।
0: हाँ।
1: दशक के कोई पंडित जी, कोई व्यवस्था है, संस्कारों से ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है और उन्होंने वो पहला आर्य
0: है लोक का जो सौंदर्य है। जी जी जी जी जी, तो वो जो
1: तिरछे करि नयन दिशाएं तिन्हें समझाए कछु मुस्काई चली
0: जी,
1: वो सीता जो उत्तर दे लोक का काशी के पंडित से।
0: तो हम है लोक का जो सौंदर्य, तो वो जो एक लोक की सौंदर्य चेतना है जिसका वर्णन तुलसी करते हैं अपने
1: जी, तुलसीदास ने भी मतलब लोक को बहुत महत्व दिया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि कहब लोक मत साधु मत नृप नय निगम निचोरी, माने लोक मत को उन्होंने साधु मत के बराबर, शास्त्र मत के समानांतर रखा है, राजनीति के ऊपर रखा है।
0: जी जी जी,
1: तो हमारा जो
0: मानस में भी ये प्रसंग आया है, बन जाते हुए स्त्रियों का पूछना। जी जी जी जी, तो हम फिर से लोक चेतना पर आते हैं कि हमें लगता है कि ये जो तथ्य है हमारे यहाँ प्रचलित कि जो लोक में नहीं है वो कहीं नहीं है, वेदों में भी नहीं है, वो सत्य है। और कई कई बार होता है कि लोक जो है वो वेदों से या पुराणों से बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एक छोटा सा लोक संस्कृति का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि गंगा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं से जुड़ती हैं, यानी विष्णुपद से निकलती हैं वो, फिर ब्रह्मा अपने कमंडल में उनको लेना चाहते हैं, वहां से भी वो निकलती हैं, फिर शिव अपनी जटाओं में बांधने की कोशिश करते हैं, गंगा वहां भी नहीं बंधती हैं और निकल पड़ती हैं। लेकिन उसी गंगा को, जो गंगा तीनों देवताओं से नहीं बंध पाती, उसी गंगा को हमारा लोक एक मूंज की रस्सी में कुछ फूल लगा के और आरपार की माला से बांधता है, बांधने की कोशिश करता है।
1: हमारा जो लोक का पूरा वितान है ना
0: जी,
1: तो अक्सर लोक और शास्त्र की चर्चा की जाती है और कुछ बहुत ज्यादा विद्वान लोग, बहुत ज्यादा पारंगत लोग, बहुत ज्यादा किताबी लोग मैं कहूँ
0: जी
1: वो शास्त्र को प्रमाण मानते हैं
0: जी,
1: कि शास्त्र में यह है।
0: हाँ।
1: शास्त्र में यह है।
0: हाँ।
1: लेकिन खुद शास्त्र लोक को प्रमाण मानता है।
0: हाँ।
1: अक्सर शास्त्र जब कोई सिद्धांत, किसी सिद्धांत का निर्वचन करता है तो वो उसमें आता है कि यथा लोके,
0: यथा लोके,
1: जैसा लोक में है।
0: हाँ।
1: तो यह क्या है
0: लोक?
1: पंडित जी का वो लोक और शास्त्र वाला जो महत्वपूर्ण निबंध है।
0: हाँ।
1: जो हिंदू धर्म जीवन में सनातन की खोज वाली किताब में है,
0: पंडित विद्यानिवास में।

0: जी जी
1: जी
0: तो उसमें उन्होंने तो बराबर ये इस बात पर बल दिया है ना कि शास्त्र जब तब लोक के हाथों पराजित होता रहा है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी कथा सुनाई है उसमें,
1: अच्छा,
0: जो उनका उन्होंने कहा कि ये किसी की सुनी हुई नहीं, मेरी

0: आजादी के आसपास की बात है। तो वो विवाह मंडप में विवाह कराने के लिए उपस्थित थे और ये बारात गई थी गोरखपुर जिले से ही, संजोग से देखिए, गोरखपुर जिले का एक ऐतिहासिक गांव है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह गांव दुनिया का प्राचीनतम गांव है जो अपनी जगह पर आज भी वैसे ही है। कार्बन डेटिंग से इतिहासकारों का कहना है 5000 साल से वो वहीं है।
1: ये गोरखपुर में है,
0: गोरखपुर जिले में है, सोहगौरा नाम का गांव।
1: सोहगौरा हमने पढ़ा है पंडित जी के निबंध में।
0: पंडित जी का ननिहाल है सोहगौरा में, पंडित जी का ननिहाल है। पंडित जी उस बारात में गए थे,
1: सोहगौरा के बारे में कुछ और भी लिखते हैं वो
0: जी। तो सोहगौरा की चर्चा बहुत करते हैं
1: जी।
0: तो वो सोहगौरा से बारात गई थी, उसमें काशी के विद्वान पंडित उपस्थित थे और यहां से बारात की ओर से टहल नाऊ गए थे। टहल नाम था उनका नाऊ का
1: जी जी।
0: तो टहल कोई पंडित जी कोई व्यवस्था देते थे, टहल उसमें कोई आपत्ति जताते थे तो बराबर पंडित जी कह देते थे कि नहीं, ऐसा शास्त्र में उल्लेख नहीं है। और एक हद हो गई जब पंडित जी, टहल ने कहा कि पंडित जी ये जो कलश रखा गया है इस पर आम का पल्लव नहीं है। तो पंडित जी ने कहा शास्त्र में ऐसा नहीं है। तो टहल, पंडित जी का वाक्य है कि टहल की संस्कृत वाग्धारा फूट पड़ी और टहल ने कहा कि सर्वत्रैव खड्ढलान, सर्वत्रैव खड्ढलानि,
1: खड्ढलानि।
0: हाँ, ये संस्कृत में, ये पंडित जी की ही बात से मुझे पता, उसी निबंध से पता चला कि पंडित जी ने कहा है कि संस्कृत में सर्वत्रैव खड्ढलानि मूर्खतापूर्ण उत्तर देने का के लिए प्रयुक्त मुहावरा है।
1: क्या बात।
0: और ये टहल ने काशी के पंडित से कहा और वो पंडित चकित, पंडित चुप, क्रोध से लाल चेहरा। तो टहल ने कहा कि पंडित जी घर भरा हो, धन धान्य से भरा हो, ज्ञान भी हो और हरियाली ना हो तो कैसा लगेगा।
1: क्या बात है।
0: तो यह जो, इसके बाद टहल ने कुछ कहा नहीं और पंडित जी ने मंगाकर आम का पल्लव उस पर रखवाया। पंडित जी ने लिखा कि मेरी जानकारी में लोक के हाथों शास्त्र की यह पहली पराजय थी।
1: बिल्कुल सही।
2: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर चितरंजन मिश्र को। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए गुलाम अली को।

अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली को। अगली गजल है जगजीत सिंह की आवाज में, लीजिए सुनिए ये गजल।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली व जगजीत सिंह को। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया।

0: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा, उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर आज सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इसी दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंह तोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया था।
1: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
2: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
0: इस बीच नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
3: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
3: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपेट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ सालों में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
0: कनाडा में खालिस्तानी समूहों के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि चरमपंथी और अलगाववादियों का कनाडा की जमीन को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करना चिंता का विषय है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में आज भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाए। कार्यक्रम में 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत को टीम का सामना चीन से होगा। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला बारिश के कारण रुका हुआ है। मैच रुकने तक लखनऊ ने 9 ओवर में बिना किसी नुकसान के 95 रन बना लिए थे। इससे पहले बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायल सीमा में कल तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरलम में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में

0: Countrywide.
1: नमस्कार, कंट्रीवाइड कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ल और आज हम चर्चा करेंगे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 के बारे में। और आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ एके भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले आपसे हम यही समझना चाहेंगे कि जो एक नया ऐलान कैबिनेट की बैठक में हुआ है, उसके मायने क्या लगाए जाए, सरकार ने 5.0 इस स्कीम की क्यों मंजूरी दी और इसका मुख्य उद्देश्य आप क्या देखते हैं?
2: ये जो आपने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0, इसका मतलब ये इसका पांचवा चरण है ये। और इससे पहले ये जब कोविड का जब प्रॉब्लम आया था हमें 2020 में, उसी समय इसका पहला चरण का इंट्रोडक्शन हुआ था। उसके बाद ऐसे 3-4 चरण आए हैं और हर बार क्या होता है कि हमारी जो इंडस्ट्री की क्रेडिट लेने की जो क्षमता जो है उसमें एक कम पहुंचता है जब भी कोई क्राइसिस आती है। और यही जो वेस्ट एशिया में जो युद्ध हो रहा है उससे जो तेलों के दाम बढ़ गए, उससे हमारे बहुत सारे जो इकाइयां हैं, बहुत सारे जो इंडस्ट्री हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ गई है और उनकी क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो होती है, वर्किंग कैपिटल नीड्स जो होती हैं, जरूरतें जो होती हैं, उसको पूरे करने के लिए दिक्कतें आ रही हैं। तो ये स्कीम जो है ये करीबन जो एमएसएमई सेक्टर है, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए है प्रधानतः, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एक जो एंटरप्राइजेस की जो क्रेडिट की जो एक गारंटी होती है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्रेडिट ले रहा है तो उस क्रेडिट लेने में अगर लॉस हो जाए उस लोन में या लोन को वापस ना कर सके, उसकी जो रिस्क जो होती है उसकी गारंटी होती है। तो समय की जो असुविधा जो है कि इस समय रिस्क बढ़ जाती हैं और उससे क्या होता है कि अगर ये गारंटी नहीं मिले तो इंटरेस्ट रेट में बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट उससे कॉस्ट बढ़ जाता है उससे। तो सरकार ने ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 का जो ऐलान किया है, उससे सारे जो एमएसएमई सेक्टर के यूनिट जो है, हमारे देश में करीबन 7 करोड़ ऐसे संस्थाएं हैं जिसे हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, और वो 7 करोड़ जो इकाइयां हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण ये है कि वो करीबन देश की जीडीपी जो है, आर्थिक जो साइज जो है, उसकी करीब 30% होती है और एमएसएमई करीबन 45% हमारे एक्सपोर्ट्स करता है। तो इसका महत्वपूर्ण बहुत चीज है और उसके लिए सरकार ने कहा कि 2.5 लाख करोड़ की जो लोन जो है उसकी गारंटी सरकार देगी। इसका मतलब अगर 2.5 लाख करोड़ की जो अगर लोन में कुछ वापस करने में कोई दिक्कतें आती है तो वो समस्या इस गारंटी से पूर्ण होगी। करीबन 18,000 करोड़ की जो लायबिलिटी है वो सरकार लेगी और 2.5 लाख करोड़ का जो लोन जो है वो लोन बैंकिंग व्यवस्था है, फाइनेंशियल सेक्टर है, वो उनको देंगे। तो मोटी मोटी बात यह है कि एक तरफ एमएसएमई सेक्टर को एक गारंटी मिलेगी उनके लोन के ऊपर, और ये गारंटी 5,000 करोड़ की ये गारंटी जो एयरलाइन सेक्टर है उनको भी दी गई है, क्योंकि इस वेस्ट एशिया के क्राइसिस में जो एविएशन सेक्टर है उसको भी काफी बहुत धक्का पहुंचा है, तो उनके लिए भी 5,000 करोड़ के लोन के ऊपर गारंटी देने की एक प्रावधान किया गया है। और बाकी बिजनेस को वो भी उनको ये प्रावधान है। एमएसएमई सेक्टर में 100% की जो लोन जो है उसको गारंटी मिलेगी, पर बाकी जो बिजनेसेस हैं उसमें सिर्फ 90% की गारंटी मिलेगी। एयरलाइन सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको अगर गारंटी दी जाएगी उनमें भी 90% की गारंटी मिलेगी। पूरी बात यह है कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस से कंपनियां को कॉस्ट में दिक्कतें आ रही है, नौकरी को बरकरार रखने में दिक्कतें आ रही है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक रिलीफ मेजर है। और इससे मैं समझता हूं कि जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है और नौकरी को बरकरार रखने की जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें नहीं आएंगी। 7 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स हैं इस देश के, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक सुविधा
1: जी और एक बहुत बड़ी राहत होगी, खासतौर पर छोटी और मझोली उद्योग जगत के लिए। और जिस हिसाब से वेस्ट एशिया क्राइसिस भारत पर एक छोटा असर देखने को जरूर मिल रहा था कि कंपनियों की वर्किंग कैपिटल की दिक्कतें आ रही थी, साथ ही साथ जो कच्चे माल के आयात की दिक्कतें होती थी वो बढ़ती जा रही थी, और इन जगहों पर जो एक निर्यात होता है वो भी उस मुकाबले नहीं हो पा रहा था। निर्यात हो रहा था जरूर, लेकिन उस मुकाबले नहीं हो रहा था। तो अब आपको क्या लगता है, एक सहारा मिलेगा और सहारा के बाद इंडस्ट्री जो है एक तरह से अपने पैरों पर दोबारा से

0: मजबूती से खड़े होने में कामयाब हो पाएगी?
1: इसमें सहारा तो जरूर मिलेगा, क्योंकि जैसे इस लोन की गारंटी के साथ साथ ये जो एक 7 साल की जो लोन दी जाएगी, इसमें ये कवरेज होगा उसका, ये एयरलाइन के लिए है। और जो एमएसएमई कंपनियां जो हैं, 7 करोड़ कंपनियां जो हैं, उनकी जो लोन की जो अवधि होगी वो 5 साल की होगी, और 5 साल के अंदर 1 साल की मॉरेटोरियम भी रहेगा। इसका मतलब अगर मान लीजिए वो पैसा वापस ना देते हैं, उसकी मॉरेटोरियम रहेगी, और एयरलाइन के लिए 2 साल की मॉरेटोरियम रहेगी। और ये व्यवस्था आज से मार्च 31, 2027 तक लागू रहेगी। इसका मतलब अगले 1 साल करीबन 11 महीने या 10 महीने तक ये व्यवस्था का उपयोग एमएसएमई कंपनियां, विमानन कंपनियां और बाकी बिजनेसेस कर सकते हैं, लेकर पूरी तरह से उनको बहुत बड़ा एक राहत जरूर मिलेगा
0: जी।
1: उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कह दूं, ये राहत तो मिलेगा, पर ऐसी 2.5 लाख करोड़ की राहत से बहुत लोग, इनका शंका होता है कि सरकार की जो खजाना जो है, खजाने में कितनी बहुत, पर क्रेडिट गारंटी स्कीम का जो एक बहुत बड़ी एक खूबी है ये कि 2.5 लाख करोड़ का लोन तो व्यवस्था की गई है, पर सरकार के खजाने में इसका इम्पैक्ट सिर्फ 18,000 करोड़ का ही होगा। और जिनको मॉरेटोरियम के बाद जरूरत होगा, 2 साल का मॉरेटोरियम जो विमानन कंपनी की होगी या बाकी कंपनी का 1 साल का मॉरेटोरियम है, उसके बाद अगर वो पैसा वापस दे देते हैं अच्छी बात है, और अगर गारंटी की जरूरत होगी उसके लिए इंश्योरेंस का भी व्यवस्था होता है। तो मैं समझता हूँ कितने कम रिस्क से 2.5 लाख करोड़ की जो एक वर्किंग कैपिटल की जो प्रावधान की गई है, इससे बहुत बड़ी एक राहत, नौकरी की व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात जिसकी जिक्र आपने की, निर्यात का एक प्रोत्साहन दिया जा सके।
0: जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे भट्टाचार्य, इसके जिस हिसाब से लगातार सरकार की कोशिश रही है कि कारोबार जगत को मुश्किलें उनकी जो है वो आसान की जाएं, तो ये मोरेटोरियम और जो क्रेडिट गारंटी का ड्यूरेशन, समय अवधि ये बढ़ाई गई है, ये स्थिरता किस हिसाब से देगी इस पूरे सेक्टर को इस कर्ज के दौरान?
1: देखिए, मोरेटोरियम जो होता है उससे क्या होता है कि जो कंपनी को लोन वापस देने का जो अवधि होती है उसमें जो उनकी अवधि बढ़ जाती है। जैसे कि अगर एयरलाइन कंपनी का 7 साल का लोन है, उसके अंदर 2 साल का मॉरेटोरियम भी है, इसका मतलब उनको उसी समय इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बाकी कंपनियों का 5 साल का अवधि है, पर उसके अंदर 1 साल का मॉरेटोरियम, उसका मतलब 1 साल तक कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि इससे जो क्रेडिट अवेलेबल होती है, पहली बात तो यह कि ऐसे समय में जब जो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखती हैं कि कंपनियां जरा दिक्कत में आ गई हैं, वो लोन देने में थोड़ा झिझकते हैं, कतराते हैं, जब ये स्कीम लागू होता है तब उनको एक आश्वासन मिलता है कि ये लोन देने से भी अगर लोन वापस ना कर सके, ये गारंटी मिलेगी और गारंटी सरकार दे रही है, तो ये बहुत बड़ा एक हौसला बढ़ाता है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। और दूसरी तरफ ये कंपनियों को एनकरेज करता है कि वो छटनी ना करे, लोगों को गांव ना वापस भेज दे कि भाई काम नहीं है, आप बंद कीजिए आप, उससे बड़ा एक हौसला भी बढ़ता है, इकोनॉमी का एक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार ने कुछ दिन पहले जो एक्साइज, जो डीजल एंड पेट्रोल में उन्होंने घटा दिया था टैक्स, और उस घटाने से जो तेल और तेलों के दाम जो रिटेल मार्केट में जो हर देशों में जो बढ़ गए हैं, वो हमारे जो एमएसएमई सेक्टर हैं, रिटेल कंज्यूमर्स जो हैं, उनके लिए अभी तक कोई एक्स्ट्रा बर्डन अभी तक नहीं आया है। हालांकि गैस में थोड़ा दाम बढ़ा है, बाकी चीजों में दाम बढ़ा है, पर पेट्रोल डीजल जो हर इंडस्ट्री का इस्तेमाल करना पड़ता है उसमें कोई दाम नहीं बढ़ा है। मैं समझता हूँ ये एक सार्वजनिक एक अप्रोच है, जिससे कि अगर ये क्राइसिस चले या ज्यादा दिन ना चले, उसके सामने ये टेम्पोररी मेजर्स हैं, वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद देखना पड़ेगा कि और क्या नीतियों की लागू करना होगा, वो देख सकते हैं।
0: बिल्कुल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो खासतौर पर 5,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि एविएशन सेक्टर के लिए अलग से रखी गई है, उसका क्या फायदा आप होते हुए देखते हैं? क्योंकि विमानन कंपनियों का लंबे समय से कहना रहा है कि ETF के बढ़ते दाम उनके लिए दिक्कत का सबब बनते जा रहे हैं, साथ ही जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसमें तमाम जगहों पे रूट्स बंद हो जाते हैं, तो उन्हें अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, तो जाहिर उनका खर्च बढ़ता है और किराया बढ़ाने की एक सीमा होती है। तो ऐसे में ये ओवरऑल एयरलाइन सेक्टर के लिए कितना फायदे का सौदा साबित हो सकता है, और वहां की नौकरियों के लिए और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक अमृत कहें या वरदान कहें बन सकता है?
1: जो विमानन कंपनियां हैं जो बाहर में अपना सेवा कर रहे हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम नहीं देगा। जो हमारे देश में जो अपना सर्विस कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा काम आएगा उनका, क्योंकि उनकी ATF की प्राइस एविएशन टर्बाइन फ्यूल के दाम तो बड़ी है, और

0: कि जो फेयर्स थोड़े बहुत फेयर भी बढ़े हैं, पर उसके बावजूद बाकी सारे ऐसे कॉस्ट हैं उनमें भी काफी इजाफा हुआ है। इसीलिए सरकार ने क्या किया है कि जो विमानन कंपनियां को, ये नहीं कि पैसा उनको दे रहे हैं, ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होगी उसके ऊपर सरकार गारंटी देगी। उससे क्या होगा कि जो फाइनेंशियल सेक्टर और या बैंकिंग व्यवस्था जो है एयरलाइन कंपनियों को लोन दे सके, कंटिन्यू कर सके, क्योंकि उनको आश्वासन मिलेगा कि ये लोन वापस करने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। हालांकि विमानन कंपनी को कठिनाई तो हो रही है, पर ये एक ऐसा समय है कि ये 2 साल का मॉरेटोरियम और 7 साल का लोन के ऊपर गारंटी, मैं समझता हूँ इसमें हौसला बढ़ाने का बात है, पर एयरलाइन को कठिनाई तो जरूर हो रही है, होती रहेगी जब तक ना तेलों के दाम नीचे ना आए।
1: आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन उद्योगों के लिए खास तौर पर ये राहत का ऐलान किया गया है, उससे जुड़े तमाम सेक्टर हैं जो इनसे प्रभावित होते होंगे, क्या आपको लगता है उन्हें भी और एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को भी इसका फायदा मिलता नजर आएगा?
0: देखिए, ऐसा होता है कि अगर 7 करोड़ कंपनियां हैं हमारे देश में, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो एमएसएमई सेक्टर में कंपनियां हैं, करीबन 99% जो कंपनियां जो हैं वो छोटी लघु उद्योग है, बहुत ही माइक्रो यूनिट्स हैं वो, और उसमें 5 से 10 लोग काम करते हैं, और यही एमएसएमई कंपनियां बड़े बड़े कंपनियों को सप्लाई करती हैं, करीबन 40% एक्सपोर्ट्स करती हैं, निर्यात करती हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इनमें ये गारंटी मिलेंगी, इनकी वर्किंग कैपिटल नीड्स में गारंटी मिलेगी, तो उनकी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है उसमें थोड़ी बहुत उनकी सहूलियत होगी, और उसका बेनिफिट जो जो कंपनियां उनके साथ बिजनेस कर रही हैं, रिलेशनशिप रख रही हैं, उनको भी एक सेकेंड ऑर्डर बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
1: घरेलू विमानन कंपनियों के लिए या विमानन कंपनियों के जो घरेलू ऑपरेशंस हैं उन पर फायदा पहुंचने की बात आपने कही, तो तमाम कंपनियों की एक विस्तार योजनाएं थी कि वो घरेलू स्तर पर नए रूट खोलें, तो वो एक तरह से ठंडे बस्ते में जाते हुए दिखाई दे रहे थे, या कंपनियों का जो बढ़ता खर्चा था उससे उन्हें आशंका थी कि अब आगे वो क्या करें, तो अब आपको लगता है वो तमाम चुनौतियां काफी हद तक हल हो रही हैं?
0: मैं ये समझता हूँ कि विमानन कंपनियों ने अपनी जो विदेश की जो उनके सर्विसेज जो हैं उनमें रोक लगा दी गई, और जो डोमेस्टिक हमारे देश के अंदर अंतर्देशीय जो सेवाएं जो हैं उसमें मैं समझता हूँ कि ज्यादा प्रसार नहीं होगा, पर जो अभी भी सर्विसेज चल रही हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा। ये जो स्टेप्स जो है वो स्टेप उसी लिए लिया गया है, इसमें जो एग्जिस्टिंग जो सर्विसेज हैं उसमें कोई हानि नहीं पहुंची, धक्का नहीं पहुंचेगा,
1: जी
0: पर विस्तार करना या प्रसारण करना और भी इसको बढ़ाना, उसमें मैं समझता हूँ कि ये चीज विमानन कंपनियां अब उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगी, क्योंकि ये समय ऐसा है जो इसको एसेस करने के लिए समय लगेगा, पर जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं सर्विसेज हैं उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। ये गारंटी स्कीम का यही एक बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा।
1: और सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो ये 2 साल का एक पूरा का पूरा फायदा मिलता नजर आ रहा है छोटी मझोली कंपनियों के लिए, क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस इतने दिनों से चल रहा है, 2 महीने के करीब का वक्त हो रहा है और उससे भी ज्यादा समय हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जितना एक असर था उस असर से निपटने के लिए मददगार होगा, या और भी आने वाले दिनों में चुनौतियां आएंगी तो उसके लिए नए कदम उठाने की भी जरूरत रहेगी?
0: मान लीजिए ये युद्ध विराम अभी हो जाता है या कोई पीस पैक्ट कल परसों तरसों में हो जाता है, तो उसके बाद भी कंपनियों की समस्याएं जो हैं वो करीबन 6 महीने 1 साल तक चलेगा। इसीलिए ये स्कीम को मार्च 31, 2027 तक लागू किया गया है, और इसीलिए 1 साल का मॉरेटोरियम दिया गया है कंपनियों को, और विमानन कंपनियों को 2 साल का मॉरेटोरियम दिया गया है, और ये लोन 7 साल के दिया गया है विमानन कंपनियों को, और कंपनी को 5 साल का विमानन दिया है। एमएसएमई कंपनियों को अपने 20% जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर बेस करके 100 करोड़ की जो लोन जो है वो देने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह विमानन कंपनियों को 1,500 करोड़ तक की लोन गारंटी की व्यवस्था की गई है। तो इसका कारण यही है कि जो वेस्ट एशिया का अगर कॉन्फ्लिक्ट आज भी अगर सुधर जाए तो मैं समझता हूं कि जो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट और इम्पैक्ट जो है वो अभी भी चलता रहेगा, 6 महीने तक चल सकता है, 7 महीने तक चलता सकता है, उसके बाद ही अवस्था साधारण में पहुंचेगी।
1: बिल्कुल भट्टाचार्य साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अहम जानकारी दी और काफी बेहतरीन सरल तरीके से इन बातों को समझाया।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Countrywide.

श्रोताओं, आइए आज के कार्यक्रम में आप सुनते हैं एक ऐसा गुजराती लोकगीत जिसमें बांसुरी की सुर लहरियों के साथ प्रेम और ग्रामीण जीवन की सरल भावपूर्ण झलक मिलती है। गीत के बोल है, रूड़ी ने रंगीली रे वाला तारी वहां सड़ी।

अब प्रस्तुत है श्री राजेश सोताधर की मधुर आवाज में एक भावपूर्ण गुजराती लोकगीत कृष्ण भगवान चाल्या द्वारिका, जिसमें श्री कृष्ण के द्वारका गमन की और भक्तिभाव की सुंदर झलक मिलती है।

कार्यक्रम के समापन पर राजेश अपनी मधुर प्रस्तुति में झवेरचंद मेघाणी रचित अमर लोकगीत कसुम्बिनो रंग सुनाएंगे, जो शौर्य और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है।

0: इसी के साथ अखिल भारतीय प्रादेशिक लोक संगीत एवं सुगम संगीत कार्यक्रम में गुजराती लोक संगीत संपन्न होता है। आज के कार्यक्रम में श्री राजेश सोढ़ातर के साथ संगत कर रहे थे तबला पर भूपेंद्र सोलंकी, देवांग पंचाल ढोलक पर, मंजीरा पर कांति भाई सोलंकी, बेंजो पर नरेंद्र सोयंतर, वायलिन पर विजय वाघेला। यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। कार्यक्रम के अगले भाग में आप सुनेंगे गजल।
1: ये आकाशवाणी है। आज के सुगम और लोक संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज की सभा में भारत के प्रसिद्ध गायक उस्ताद मोहम्मद वकील प्रस्तुत करेंगे गजल। उस्ताद मोहम्मद वकील एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक हैं। शास्त्रीय गजल गायकों के परिवार से आने वाले उस्ताद मोहम्मद वकील अपने परिवार की संगीत परंपरा से प्रेरित हैं। आपने 8 साल की छोटी उम्र में ही मंच पर अपनी पहली प्रस्तुति दी और एक गायक के रूप में अपनी पहचान बनाने का निश्चय कर लिया। गजल के उस्ताद मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन, जो आपके मामा हैं, से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उस्ताद मोहम्मद वकील ने स्वयं भी गजल के उस्ताद के रूप में शीघ्र ही अपनी कला को निखारा। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप आकाशवाणी के उच्च श्रेणी कलाकार हैं। प्रिंस ऑफ गजल पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। आपको लंदन के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सम्मानित किया गया। आज की सभा में आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आशीष झा, इलेक्ट्रिक गिटार पर अजय मिश्रा, कीबोर्ड पर अजहर हुसैन वारसी और सारंगी पर हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान। आप अपनी प्रस्तुति का आरंभ शाइदा अराई की गजल से कर रहे हैं। बोल हैं, दिल की जालिब दीवार मत रखना।
2: दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट द गजल रिसाइटल बाय उस्ताद मोहम्मद वकील, टुडेज रिनाउंड गजल सिंगर। उस्ताद मोहम्मद वकील इज अ वेल नोन प्लेबैक सिंगर। हेलिंग फ्रॉम अ फैमिली ऑफ क्लासिकल गजल सिंगर्स, उस्ताद मोहम्मद वकील वॉज इंस्पायर्ड बाई हिज फैमिलीज म्यूजिकल ट्रेडिशन। ही गेव हिज फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस एट द टेंडर एज ऑफ 8 एंड डिसाइडेड टू मेक हिज मार्क एज अ सिंगर। आफ्टर रिसीविंग ट्रेनिंग फ्रॉम द माएस्ट्रोज ऑफ गजल मोहम्मद हुसैन एंड अहमद हुसैन, हु आर हिज मैटरनल अंकल्स, मोहम्मद वकील सून पॉलिश्ड हिज आर्ट टू बिकम अ माएस्ट्रो ऑफ गजल हिमसेल्फ। Ustad Mohammad Wakil received many prestigious awards. He is a top-grade artist of Akashwani. Honored with the Prince of Ghazal Award, honored by the World Humanitarian Organization at the prestigious House of Lords in London. Tonight, Ustad Mohammad Wakil is accompanied by Ashish Jha on tabla and Ajay Mishra on electric guitar, Azhar Hussain Warsi on keyboard and Ustad Farooq Latif Khan on Sarangi. Ustad Mohammad Wakil begins his recital with a ghazal, Dil Ki Janib Diwar Mat Rakhna, written by Shaida Arai.

0: आप सुन रहे थे शाइदा राई की गजल, जिसे स्वरबद्ध किया था उस्ताद मोहम्मद वकील ने। आइए अब सुनते हैं मोमिन खान मोमिन की गजल, असर उसको जरा नहीं होता।
1: That was a gazal written by Shaida Arai and composed by Mohammad Wakil. Now he presents gazal Asar Usko Zara Nahi Hota, written by Momin Khan Momin.